मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.5 पर आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। आज दिन है शनिवार, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 जुलाई 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा। इस सभा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। श्रोताओं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील फिगरेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और

0: स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विम्बल्डन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विम्बल्डन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम खेती किसानी का, जिसमें आज आपको जानकारी मिलेगी फल वृक्षों की खेती। जानकारी दे रही है अनीता तिर्की।
2: आम, औला और लीची के लिए पौधा से पौधे के बीच की दूरी सामान्यतः 8 मीटर है और पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी भी 8 मीटर है, जबकि सघन रोपण प्रणाली के तहत आम और लीची 5 मीटर से 5 मीटर की दूरी पर करते हैं। अमरूद में सघन रोपण प्रणाली के तहत 2.5 मीटर पौधा से पौधा के बीच की दूरी और पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी भी 2.5 मीटर ही रखते हैं। पपीता में पौधों के बीच की दूरी 1.80 मीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी 1.80 मीटर रखते हैं। काजू में पौधा रोपण दूरी 8 मीटर पौधा से पौधा और 8 मीटर पंक्ति से पंक्ति अनुशंसित है। सघन बागवानी के अंतर्गत काजू का रोपण 10 मीटर पौधा से पौधा और 5 मीटर पंक्ति से पंक्ति रखते हैं। आम और लीची में पहले वर्ष 10 किलो गोबर की खाद, 90 ग्राम नेत्रजन, 25 ग्राम स्फुर और 60 ग्राम पोटास प्रति पौधा प्रति वर्ष देनी है। दूसरे वर्ष पहले वर्ष का 2 गुना, तीसरे वर्ष पहले वर्ष का 3 गुना और 10वें वर्ष पहले वर्ष का 10 गुना, यानी 900 ग्राम नेत्रजन, 250 ग्राम स्फूर और 700 ग्राम पोटास 100 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद के साथ मिलाकर और इसी मात्रा को 11वीं वर्ष भी देनी है। अमरूद के 1 वर्ष के पौधे के लिए गोबर की खाद 10 किलोग्राम, नेत्रजन 115 ग्राम, स्फूर 60 ग्राम और पोटास 60 ग्राम देना है। 5 वर्ष के बाद नेत्रजन 575 ग्राम, स्फूर 300 ग्राम और पोटास 300 ग्राम देनी है। इसी मात्रा को 5 वर्ष के बाद भी दें। पपीता में नेत्रजन 3 महीने के अंतराल पर 4 बराबर भागों में, स्फूर 190 ग्राम और पोटास 200 ग्राम प्रति पौधा देना है। किसान भाई, एक बार आप ध्यान से सुन लें। आम की अनुशंसित जो अगेती किस्म है, उसके पकने का समय 20 से

0: 30 मई है। इसके अंतर्गत बॉम्बे ग्रीन, जरदालू और गुलाब खस आता है। उसी तरह आम की 30 मई से 10 जून तक पकने वाली जो किस्म है उसमें हिम सागर और कृष्ण भोग है। 10 से लेकर 25 जून तक पकने वाले आम में मालदा, दशहरी और प्रभा शंकर है। 20 जून से लेकर 5 जुलाई तक पकने वाले आम में मल्लिका है। 25 जून से 25 जुलाई तक पकने वाले आम में आम्रपाली है। इसी तरह 15 जुलाई से 10 अगस्त तक पकने वाले आम की किस्मों में कदकी और लतरा ये सभी अनुशंसित किस्में हैं। लीची की अनुशंसित किस्मों में मई के प्रथम पक्ष में पकने वाली जो किस्म है उसमें देशी अरली बेदाना है। मई के द्वितीय पक्ष में पकने वाली किस्मों में शाही, स्वर्ण रूपा और मई के अंत तक में और जून में पकने वाली जो किस्म है उसमें पूर्वी और चाइना ये सभी अच्छी किस्में हैं। अमरूद की अनुशंसित किस्मों में इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ 49, आरका मृदुला और आरका अमूल्य अच्छी मानी गई है। पपीता की अनुशंसित किस्मों में पूसा ड्वार्फ, कुर्ग हनीड्यू ये अच्छी किस्म है। इसी तरह आंवला में कंचन कृष्णा और नरेंद्र आंवला साथ हैं। बेल की अनुशंसित किस्म में पंत अपर्णा, नरेंद्र बेल 5, नरेंद्र बेल 7 ये सभी अच्छी किस्में हैं।
1: फल वृक्षों की खेती इस विषय पर जानकारी दे रही थी अनिता तिर्की, कार्यक्रम खेती किसानी में। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। वक्त है चिंतन का। संकलन एवं वाचन है दिनेश कुमार लाल का।

0: आत्मविश्वास यानी भीतर का भरोसा, इसकी अलग ही ताकत होती है। अगर किसी को खुद पर भरोसा हो तो कोई भी कठिन काम आसानी से पूरा किया जा सकता है। रामायण में एक प्रसंग है कि वानर सेना माता सीता की तलाश में जब समुद्र तट पर पहुंची तो विशाल समुद्र को पार कर लंका जाना कठिन प्रतीत होने लगा। तब अंगद ने कहा कि मैं समंदर पार कर लंका तो जा सकता हूं, परंतु वहां से लौट आने की क्षमताओं पर मुझे संदेह है। तब जामवंत जी ने हनुमान को उनकी शक्ति का एहसास कराया और कहा कि आप जाकर सीता जी का पता करिए। उत्साहित हनुमान ने कहा कि मैं अभी लंका जाकर सभी राक्षसों का संहार करके माता सीता को वापस लेकर आता हूं। तब जामवंत ने कहा कि ये कार्य श्री राम स्वयं करेंगे, आप सिर्फ ये कार्य करके लौटिए। इस प्रकार तमाम बाधाओं को पार कर हनुमान जी अपने लक्ष्य को पूरा करके लौटे। इस प्रसंग से हमें सीखना चाहिए कि जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो मन में आशंकाएं और भय जरूर पनपते हैं, मगर हमें इनसे पार पाने के लिए अपने भीतर के भरोसे को कायम रखना चाहिए। उत्साह के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ने से भीतर का भरोसा भी मजबूत होता है। अगर हमें अपने अंतर से अपनी क्षमता पर यकीन हो जाए तो कोई भी लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आखिर आत्मविश्वास है क्या और इसे कैसे जागृत किया जाए? वास्तव में आत्मविश्वास भीतर की ऐसी शक्ति है जो अपार ऊर्जा के प्रवाह से हमें क्षमता को पहचानने और अपने मुकाम तक जाने के लिए संबल प्रदान करती है। प्रायः हम बहुत कुछ करने के सपने देखते हैं, मगर संदेह की भावना हमें डरा देती है। जब हमारी क्षमताओं और आकांक्षाओं पर हमें ही यकीन नहीं रहता, तब हम अंतस से दब्बू बन जाते हैं। अज्ञात भय से इच्छाएं मन में ही दफन हो जाती हैं। इन दबी इच्छाओं को जागृत करने के लिए ही भीतर का भरोसा पैदा करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा कि पर्वतारोही, खिलाड़ी आदि भी दूसरे लोगों की तरह ही होते हैं, फिर वो इतने कठिन लक्ष्य को इतनी आसानी से कैसे पा लेते हैं? तो इसका जवाब है आत्मविश्वास। विजेता और पराजित में सिर्फ इसका ही अंतर रह जाता है।
1: आप सुन रहे थे चिंतन संकलन एवं वाचन था दिनेश कुमार लाल का। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम आराधना का। आराधना में हमेशा की तरह सबसे पहले हम सुनेंगे देशभक्ति गीत। इस गीत को गाया है अनूप जलोटा ने।

और आराधना कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अब कुछ भक्ति रचनाएं। आज हम सुनेंगे माता रानी को समर्पित कुछ भजन। गीतकार हैं पंडित नरेंद्र शर्मा, संगीतकार हैं हृदयनाथ मंगेशकर और इन भजन को गाया है लता मंगेशकर ने। तो चलिए आराधना का आरंभ करते हैं माता रानी के इस भजन के साथ।

माता रानी आदि शक्ति का स्वरूप शक्ति, करुणा और साहस का प्रतीक है। उनसे जुड़ी जो भी बातें हैं वो हमें जीवन में विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करने और हर चुनौती को अवसर में बदलने की सीख देती हैं। माँ वो हैं जो हमेशा हमारे सर पर हाथ रखती हैं, हमारा साथ देती हैं और हमारे हर अच्छे कर्मों में हमारे साथ होती हैं।

माता रानी की भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है भाव। जब आप सच्ची श्रद्धा, निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण के साथ उन्हें पुकारते हैं, तो वे हर भक्त की प्रार्थना सुनती हैं। उनकी महिमा अपार है, उनके दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। भक्ति में भूल चूक होना स्वाभाविक है। माता रानी अपने हर भक्त की गलती माफ करती है, इसलिए माता के चरणों में शीश झुकाकर कोई भी कार्य हम जब करते हैं, तो यकीन मानिए हमें सफलता मिलती ही मिलती है।

ममता और करुणा का स्वरूप है माँ अम्बे। यद्यपि वे दुष्टों के लिए अत्यंत भयंकर हैं, फिर भी अपने भक्तों के लिए एक अत्यंत करुणामयी और वात्सल्यमयी माँ है। सच्चे मन से पुकारने पर वे अपने बच्चों की हर विपत्ति को दूर करती हैं।

माता रानी की कृपा हम सब पर यूं ही बरसती रहे, इसी कामना के साथ आज की आराधना संपन्न होती है। आकाशवाणी का एक रांची केंद्र है, प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का।

श्री राम के वनगमन पर अयोध्या वासियों का आर्तनाद सुना नहीं जाता। जब राजा दशरथ की मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने मंत्री सुमंत्र को बुलाकर कहा, श्री राम वन जा रहे हैं किंतु अब भी मेरे प्राण शरीर नहीं छोड़ रहे। ना जाने किस सुख की आशा में ये अब भी इस शरीर में टिके हुए हैं। फिर कठिनाई के साथ मन में धीरज धारण कर उन्होंने सुमंत्र से अनुरोध किया कि वे दोनों सुकुमारों और सुकुमारी जानकी को रथ में बिठा वन दिखाकर 4 दिनों में वापस लौट आवे। यदि दृढ़ प्रतिज्ञ दोनों कुमार ना भी लौटें तो उनसे आग्रह करना कि वे सुकुमारी सीता को लौटा दें। यदि सीता वन देखकर डरें तो उनसे कहना कि सास ससुर का ऐसा संदेश है कि पुत्री तुम लौट आओ। यदि वो लौट आई तो मेरे प्राणों को थोड़ा सहारा मिल जाएगा। इतना कहकर राजा एक बार फिर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। राजा की आज्ञा के अनुसार सुमंत रथ लेकर श्री राम सीता और लक्ष्मण के पास पहुंचे। हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर सिया समेत दोनों भाई रथ पर चढ़कर वन की ओर चले। व्याकुल अयोध्यावासी उनके रथ के पीछे दौड़ते चले। श्री राम उन्हें वापस चले जाने को कहते हैं तो वो लौटने लगते हैं किंतु प्रेमवश फिर रथ के पीछे दौड़ने लगते हैं। राम के विरह में शोकाकुल अयोध्यावासी चित्रलेखित से हो चले हैं।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। श्रोताओं, आइए आपको जानकारी दे दें कि आज हमारे केंद्र से दिन भर कौन से कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। 7:05 का वक्त होगा सेहत संबंधी कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का, जिसमें आज आप सुनेंगे गर्दन का दर्द, कारण और उपचार। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर शिवानी कुमारी, उनसे बातें करेंगे संजीव कुमार लाल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह सुरीली हम आपके लिए लेकर आते हैं 7:15 पर। कानून की बात ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 7:45 पर। आज इसमें आपको जानकारी मिलेगी निःशुल्क विधिक सहायता कैसे प्राप्त करें। भेंटवार्ताकार होंगे श्री दीपक कुमार साहू, अंडर सेक्रेटरी झालसा, और उनसे बातें करेंगे संजीव कुमार लाल। कार्यक्रम की प्रस्तुति है गौरव कुमार की। 8:45 पर वक्त होता है कार्यक्रम लोक रंग का। इसमें आज आप सुनेंगे कुर्माली भाषा में लोकगीत, कलाकार हैं किष्ट महतो और साथ ही रस रंजन। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं सुबह 9:00। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 9:30 पर। आज हमारे कलाकार हैं पंडित मोर मुकुट केडिया, जिनसे हम सुनेंगे सितार पर राग अहीर भैरव में आलाप, और जोड़ के बाद दो गते प्रस्तुत होंगी। दोनों ही गते 3 ताल में निबद्ध होंगी। गायक कलाकार हैं पंडित मोर मुकुट केडिया। तबले पर संगत करेंगे श्रीजीत चैटर्जी। कल्याणी ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सुबह 10:00, जिसमें आज चर्चा है आपका संस्कार, आपकी पहचान। साथ ही भेंटवार्ता आप सुनेंगे योग और आपका स्वास्थ्य। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर सरोज कुमारी, भेंट करता है संजीव कुमार लाल। साथ ही चर्चा होगी बच्चों को बचत की आदत डालें। सूत्रधार होंगे युवराज, और कार्यक्रम की प्रस्तुति है प्रभु शरण की। जोहार रांची का वक्त होता है दिन सुबह के 10:30। आपकी पसंद ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे 11:30 पर। महिलाओं के कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का वक्त होता है 12:00। आज इसमें आप सुनेंगे सुभाषिनी के गीत, साथ ही घरेलू नुस्खे की भी जानकारी आपको मिलेंगी। सूत्रधार होंगे सुभाषिनी। कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी गौरव।

कुमार पांडे की। शैक्षिक प्रसारण, इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा 12:30 पर। इसमें आज वार्ता आप सुनेंगे प्राकृतिक आपदाएं और उनका प्रबंधन। वार्ताकार होंगे जया मिश्रा। प्रस्तुति सहयोग है अवधेश कुमार का, प्रस्तुति है गौरव पांडे की। उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम मनोरंजनी का समय होता है 1:20 पर। हमारे आज के कलाकार हैं श्रीमती शोभा गुट्टू। सुगम संगीत आप सुन पाएंगे 1:45 पर। जय भारती का वक्त होता है 2:30 पर। 3:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 3:10 पर आप सुनेंगे पॉडकास्ट सीरीज पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। राजीव मेलोडीज का वक्त होगा आज 3:25 से। 4:02 पर कल्याणी का पुनः प्रसारण सुन पाएंगे। सांस सरगम का वक्त होगा शाम 4:35 पर। युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी का वक्त होता है 5:02 पर। आज चर्चा होगी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, इंटरनेशनल डे ऑफ कैम्बटिंग सैंड एंड डस्ट। साथ ही इतिहास में आज का दिन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। रोचक तथ्य आप जान पाएंगे। आज के कंपेयर होंगे शुभांगी कुमारी, प्रियंका राय। कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। श्रमिक लोक का प्रसारण होता है 5:30 पर। आज चर्चा है विश्व जनसंख्या दिवस, रेल और धूल भरी आंधी से निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, कार्यस्थल पर सुरक्षा जरूरी, उद्योग और प्रकृति का समन्वय। कंपेयर है श्वेता आर्य और आशीष कश्यप। कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। तो श्रोताओं, ये थी कुछ जानकारियां हमारे आज केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत और हिंदी समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। यह हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
0: प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड सरकार द्वारा मुक्त व्यापार समझौते की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे तथा उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर 30

0: जुलाई को मतदान होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 28वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है सेहत संबंधी कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का, जिसमें आज आपको जानकारी मिलेगी गर्दन का दर्द, कारण और उपचार। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शिवानी कुमारी, उनसे बातें कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
2: मित्रों नमस्कार। मित्रों, आजकल की जीवन शैली में एक बीमारी है गर्दन से जुड़ी हुई। गर्दन में दर्द होना, गर्दन को घुमाने में काफ़ी दर्द का एहसास होना आजकल ये बहुत कॉमन होता जा रहा है, क्योंकि हम लगातार बैठकर काम करते हैं, लैपटॉप या फिर मोबाइल देखते रहते हैं और एक ही पोजीशन में हम कार्य करते हैं, तो ये गर्दन से जुड़ी हुई बीमारी हम तक पहुंच जाती है और हम फिर दर्द से परेशान होने लग जाते हैं। आखिर ये गर्दन का दर्द क्यों हो जा रहा है, कारण क्या है और कौन कौन सी हम सावधानियां अपने कार्यस्थल पर रखें ताकि इस बीमारी से हम कोशों दूर रहें, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं डॉक्टर शिवानी। आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं। शिवानी जी, गर्दन का दर्द आजकल आम होता जा रहा है, चाहे वो हमारे बच्चे हों, युवा वर्ग हो या फिर बड़े बुजुर्ग हो, ये बहुत ही कॉमन सा बीमारी होता जा रहा है, क्या कारण मानते हैं आप?
3: गर्दन दर्द एक ऐसा दर्द है जिसमें आपके सिर के नीचे रीढ़ की हड्डी, जिसे सर्वाइकल स्पाइन के नाम से जाना जाता है, या उसके आसपास दर्द या डिस्कम्फर्ट जैसा महसूस होता है। आमतौर पर देखा जाए तो गर्दन का दर्द कई अलग अलग चोटों और चिकित्सा स्थितियों का एक आम लक्षण है। गर्दन में दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें मांसपेशियों में खिंचाव, खराब मुद्रा, चोटें और कुछ बीमारियां शामिल हैं। अगर इसे थोड़ा विस्तार से देखा जाए तो खराब मुद्रा, यानी कि बहुत देर तक एक ही स्थिति में बैठना, जैसे कंप्यूटर या स्मार्टफोन पर झुककर काम करना, गर्दन की मांसपेशियों पर तनाव डालता है। शारीरिक तनाव की बात करें तो बार बार या जोरदार गतिविधियों के दौरान अपनी गर्दन की मांसपेशियों का अधिक उपयोग करने से अकड़न या दर्द हो सकता है। चोट के बारे में बात की जाए तो गर्दन में चोटें, जैसे सिर का अचानक झटका देना या गिरने या दुर्घटना के कारण होने वाली चोटें, गर्दन में दर्द का कारण बन सकती है। मांसपेशियों में खिंचाव की बात करें तो भारी वजन उठाना या गर्दन की मांसपेशियों का अधिक उपयोग में लाना मांसपेशियों में खिंचाव का कारण बन सकता है। और अन्य कई बीमारियां हैं जिनके कारण भी आपको गर्दन के दर्द का सामना करना पड़ सकता है।
2: ये गर्दन का दर्द आम होता जा रहा है आज के जिंदगी में, ये बीमारी ना हो हम अपनी जीवन शैली को कैसे सुधारें, क्योंकि हम अपने वर्क प्लेस पर लगातार काम करते हैं और एक ही पोजीशन पर बैठे रह जाते हैं और ये बीमारियां हो जाती हैं।
3: इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे अच्छे मुद्रा का अभ्यास करना, इट मीन्स कि अच्छे पोजीशंस में आपको काम करना है। इसमें कंप्यूटर या फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इस तरह रखें कि आपको उनका उपयोग करते समय झुकना ना पड़े या अपनी गर्दन पर दबाव ना डालना पड़े। बैठते समय अपने कंधों को सीधा रखें और अपनी पीठ को सीधा रखें ताकि आप अपनी गर्दन पर दबाव ना डालें। यात्रा करते समय अपनी कार की सीटों को सही मुद्रा में रखें। साथ ही साथ अपनी नींद की स्थिति को समयोजित करें। सोते समय सही मुद्रा बनाए रखें। यदि आप अपनी पीठ या करवट के बल सोते हैं तो अपने सिर को सहारा देने के लिए तकिए का उपयोग करें, ताकि आपका सिर और गर्दन आपके शरीर के बाकी हिस्सों के साथ संरेखित हो। यदि आप अपनी पीठ के बल सोते हैं तो अपनी पीठ के निचले हिस्से पर अतिरिक्त दबाव कम करने के लिए अपने घुटनों के नीचे तकिया रखें।

0: अपने सिर को मोड़कर पेट के बल सोने से बचें, साथ ही साथ सक्रिय रहें। गर्दन दर्द से राहत पाने के लिए आप कई तरह के व्यायाम कर सकते हैं। अगर आप ऐसी नौकरी करते हैं जिसमें लंबे समय तक बैठना पड़ सकता है, तो बीच बीच में ब्रेक लेकर घूमें और गर्दन की मांसपेशियों सहित अपने पूरे शरीर को स्ट्रेच करें। अपने कंधों पर भारी वजन न उठाएं। अपनी पीठ के ऊपरी हिस्से की एक्सटेंसर मांसपेशियों का व्यायाम करें। साथ ही साथ अपने काम के बीच बीच में 20 से 30 मिनट के अंतराल पर एक छोटा सा ब्रेक लें।
1: जी, ये बीमारियां लोगों में बढ़ती जा रही है और जब हम कार्य करते हैं तो करते जाते हैं, हम ये सोचने लग जाते हैं कि बस थोड़ी देर और कार्य कर लें, फिर ये गर्दन का मूवमेंट या गर्दन को हम बाएं दाएं हिलाएंगे जैसा आप बता रही हैं, और ये सोचते सोचते काफ़ी वक्त हो जाता है और फिर बीमारियाँ होने लग जाती हैं। वहीं बैठे बैठे यदि हम कुछ छोटे छोटे एक्सरसाइज कर लेते हैं अपने कार्यस्थल पर, तो इस बीमारी से, इस दर्द से हम छुटकारा पा सकते हैं। इस तरह की बीमारियों को शिवानी जी हम लोग इग्नोर कर जाते हैं, हल्का दर्द होता है सह लेते हैं, फिर ये बीमारी विकराल रूप धारण कर लेता है। तो क्या हो सकता है कि इस बीमारियों को हम इग्नोर करने लग जाएं, हल्की दर्द को हम सहते रहें?
0: जैसे क्या होता है कि शुरुआती दौर में अगर आपको गर्दन का दर्द में कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि गर्दन में आपको चुभन जैसी दर्द आना या अपने गर्दन के मूवमेंट्स में दर्द आने लगना, आप अपने गर्दन को दाएं बाएं घुमा नहीं पाते हैं, तो ये छोटा सा स्टार्टिंग का बेसिक लक्षण है। पर जैसे जैसे ये समस्या आगे बढ़ती है तो आपको क्या होने लग जाता है कि आपको गर्दन का जो दर्द है वो बाजुओं में या हाथों में आने लग जाता है, जैसे झंझनाहट के रूप में भी जाना जा सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन से बचने हेतु सबसे पहले जब आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शुरुआती तौर पर आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखें, जैसे अपने अर्गोनॉमिक्स का, अपने पोजीशनिंग का, साथ ही साथ बीच बीच में ब्रेक लेने का। जब आपको लगने लगे कि ये परेशानी आपको ज़्यादा परेशान कर रही है, तो फिर आप किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, जहां वो आपको अलग अलग तरीके के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बताएंगे, साथ ही साथ आरओएम एक्सरसाइजेस बताएंगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताएंगे। जब आप काम कर रहे हो तो थोड़ा सा ब्रेक लेके वो सारे एक्सरसाइजेस को आप दोहरा सकते हैं और फिर अपने जो भी आपका दिनशैली है उसको बिना दर्द रहित कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ये जो परेशानी है वो सिर्फ शारीरिक परेशानी नहीं है, अपितु एक मानसिक परेशानी के वजह से भी आपके जो गर्दन के आसपास मांसपेशियां होते हैं उसमें आपको दर्द का एहसास होता है। तो आपको अपने वर्क प्लेस पर भी आपको बहुत काम, बहुत रिलैक्स होने की ज़रूरत है, जिसके लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और अलग अलग टाइप के डिफरेंट एक्सरसाइजेस होते हैं जो आपके माइंड बॉडी दोनों को काम करते हैं, तो आपको वो भी करने चाहिए।
1: शिवानी जी, वर्क प्लेस पे थोड़े देर पर, थोड़े अंतराल पर हम कौन से ऐसे एक्सरसाइज करें जो आप यहाँ शब्दों के माध्यम से हमें बता सकती हैं?
0: उसमें आप शामिल कर सकते हैं आरओएम एक्सरसाइजेस फॉर नेक, यानी कि एक रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस होता है गर्दन का, जिसमें आप अलग अलग डायरेक्शंस, अलग अलग दिशाओं में अपने गर्दन को घुमा सकते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहले आप जैसे सीधा बैठ जाएं, अपने स्पाइन को स्ट्रेट कर लें, गर्दन को ऊपरी दिशा की तरफ ले जाएं और 5 सेकंड के लिए रोक के रखें, फिर सामने की डायरेक्शन को देखें और फिर नीचे की तरफ झुककर देखें। 5 सेकंड रोकने के बाद फिर इस जो ये जो आपको मैंने बताया इसको आप कम से कम 10 बार रिपीट करें। उसके बाद दूसरे एक्सरसाइज में आप अपने लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन में अपने गर्दन को घुमाएं, 5 सेकंड तक उसे होल्ड करके रखें, फिर सीधा देखें, फिर अपने राइट में अपने गर्दन को घुमाएं, फिर 5 सेकंड होल्ड करें। इसे भी आप 10 रिपीटेशन करें। फिर तीसरे अगर एक्सरसाइज में देखें तो अपने कान को सीधे बैठे बैठे अपने शोल्डर के साथ साइड में ऐसे घुमाएं और फिर उसे 5 सेकंड तक होल्ड करके रखें। सेम चीज़ को दूसरी तरफ भी करना है। इस सारे एक्सरसाइज को 5 सेकंड के होल्ड पर 10 रिपीटेशंस आपको करना है। इसको बोलेंगे हम आरओएम एक्सरसाइजेस नेक के लिए। दूसरी तरफ मुड़े तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिसमें आपको सीधे पोजीशन में बैठना है, अपने स्पाइन को स्ट्रेट करके अपने राइट हैंड जो है आपकी उसको अपने अपोजिट कान के साइड रख करके नेक को स्ट्रेच करने का कोशिश करना है। सेम अपने लेफ्ट हैंड से भी इसी जो आपको स्ट्रेचिंग है उसको दोहराना है। इसे भी 5 सेकंड होल्ड करके 10 रिपीटेशन तक आपको करना है। साथ ही साथ आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, शोल्डर गर्डल एक्सरसाइजेस, और साथ में अगर आपकी परेशानियां थोड़ी और बढ़ जाती हैं और अगर आप फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करते हैं तो वो फिर अलग अलग डिफरेंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स, सॉफ्ट टिश्यूज रिलीज टेक्निक्स के उपयोग करके आपके जो नेक का पेन है उसको रिलैक्स करने

0: का वो काम करते हैं।
1: डॉक्टर शिवानी क्या कहेंगे हमारे आज के युवा वर्ग को जो लगातार कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट ये कहना चाहूँगी कि आज हम अपने काम को बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं। आज के रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें हम ये भूल जा रहे हैं कि हमारे काम के साथ साथ हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारा जो हेल्थ है, वो बहुत बहुमूल्य है। हम उसे ऐसे खो नहीं सकते हैं। एज अ लाइक अ वर्किंग एज अ स्टूडेंट्स हम खो भूल जा रहे हैं कि हमें अपना हेल्थ के ऊपर कितना ध्यान देने की ज़रूरत है। एज अ स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप जब पढ़ रहे होते हैं तो हर एक घंटे के अंतराल में अपने पोजिशंस को चेंज करें, थोड़ा सा वॉक ले लें, जिससे कि आपका माइंड आपका बॉडी दोनों काम हो। साथ ही साथ जो जेंटल एक्सरसाइजेज है उसे आप रेगुलर बेसिस पे करें। साथ ही साथ आपका जो मॉइस्टिट है यानी कि गर्म पानी का सेक, अगर कहीं किसी गर्दन के किसी मांसपेशियों में आपको अकड़न या जकड़न जैसा महसूस हो रहा है तो आप उसे सेक ले लें 15 मिनट का, जिससे आपको बहुत राहत हो जाएगा। साथ ही साथ जो वर्किंग है उनके लिए मैं कहूँगी कि आप अपने अर्गोनॉमिक्स का एक छोटा सा सेशन ले लें। जितने भी वर्क प्लेस वाले लोग हैं, जो भी लैपटॉप पर काम करते हैं, वो अर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं उस पर एक छोटा सा सेशन ले ज़रूर लें, ताकि आपको पता चले कि आपको अपने लैपटॉप्स को अपने कंप्यूटर्स को कैसे यूज़ करना है, ताकि आपके नेक पे आपके बैक पे स्ट्रेन कम पड़े। साथ ही साथ अपने टेबल्स को उस हाइट पे रखें कि आपके नेक में जकड़न या नेक को झुकाने का नौबत बार बार ना आए। साथ में जो ओल्ड एज में जा रहे हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि एज के साथ साथ, बढ़ते एज के साथ साथ कभी कभी नेक की भी जो हड्डियां हैं उसमें भी खिसाव आ जाता है, जिससे कि नेक के मांसपेशियां जो है कमजोर हो जाती हैं और दर्द होने लग जाता है। तो उन्हें भी रेगुलर बेसिस पे अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे तो आप हमेशा हेल्दी एंड हैप्पी रहेंगे।
1: तो डॉक्टर शिवानी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अच्छी आपने बातचीत की कि आज के समय में हम यदि लगातार बैठकर एक पोजीशन पे काम करते हैं तो फिर गर्दन की बीमारी होना शुरू हो जाती है। तो थोड़े थोड़े अंतराल पर आप थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए और जैसा आपने कुछ सुझाव दिए हैं वो आप करते रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो आसपास का माहौल भी बहुत ही खुशनुमा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, कल फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।
2: गर्दन का दर्द कारण और उपचार, इस विषय पे अभी आप डॉक्टर शिवानी कुमारी से संजीव कुमार लाल की बातचीत सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम सुबह सुरेली का। सुबह सुरेली कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह इस वक्त सभी आप काम करते हुए हमारा कार्यक्रम भी सुनते रहते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि इस कार्यक्रम में हम कुछ अच्छे प्यारे प्यारे मीठे से गीत आपके लिए लेकर आए। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म दो दिलों की दास्तान के इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर ने गीत के बोल लिखे हैं अनजान ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं सुबह सुरीली कार्यक्रम। अगला गीत हमने लिया है फिल्म राजकुमार से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने, गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

सुबह सुरेली कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म आए दिन बहार से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर ने गीत के बोल लिखे हैं, आनंद बख्शी ने धुन बनाई है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

बैराग। इस फिल्म का गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

सुबह सुरीली कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म लैला मजनू से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, गीत के बोल लिखे हैं जयदेव ने, धुन बनाई है मदन मोहन ने।

आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। कानून की बात, आप ये कार्यक्रम अब सुनेंगे। इसमें आज चर्चा होगी निशुल्क विधिक सहायता कैसे प्राप्त करें। भेंटवार्ताकार हैं श्री दीपक कुमार साहू, अंडर सेक्रेटरी झालसा। उनसे बातें करेंगे संजीव कुमार लाल। कार्यक्रम की प्रस्तुति है प्रभु शरण की।

0: मित्रों जोहार नमस्कार। मित्रों कानूनी अधिकार हर व्यक्ति को दिया हुआ है और वो अपनी बात सक्षम पदाधिकारी तक रख सकता है। जब वो कानूनी सहायता लेता है तो उसके लिए अलग अलग तरीके भी हैं और खासकर यदि हम बात करें महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के साथियों के लिए, उनके लिए निःशुल्क विधिक सहायता या निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। तो ये निःशुल्क कानूनी सहायता, जिसे हम निःशुल्क विधिक सहायता भी कहते हैं, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, क्या तरीका है और इस पर कैसे कार्रवाई की जाती है और कौन कौन से लोग पात्र हैं इसके, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं झालसा के अंडर सेक्रेटरी श्री दीपक कुमार साहू जी। दीपक जी स्वागत है।
1: नमस्कार
0: दीपक जी। भारत के संविधान के अंतर्गत हर व्यक्ति को समान अधिकार दिया हुआ है और वो अपनी बात, चाहे वो कानून समस्या में पड़ जाता हो, कानूनी समस्या में उलझ जाता हो, तो अपनी बात रखने के लिए उसे विधिक सहायता की जरूरत पड़ती है। तो निःशुल्क विधिक सहायता कैसे प्राप्त करें और कौन कौन से लोग इसके लिए योग्य हैं?
1: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे निःशुल्क विधिक सहायता के लिए हम लोग जो है, हमारे लीगल सर्विसेज एक्ट है उसके सेक्शन 12 पर अगर हम जाएंगे तो बताते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो निःशुल्क विधिक सहायता मिल सकता है और मदद मिल सकती है। एक होता है एडवाइस, लीगल एडवाइस, और एक होता है लीगल एड। लाइक लीगल एड में कि अगर वो केस लड़ना चाहते हैं तो उनको मुफ्त की जो भी है अधिवक्ता मिले, जिसमें अधिवक्ता रखेंगे तो उनको किसी भी तरह का कोई पैसा या कॉस्ट पैसा उसमें नहीं लगता है। और जहाँ तक बात है कि उसको लीगल सहायता के रूप में जानकारी चाहिए, तो जानकारी हर कोई भी व्यक्ति हो, वो नालसा के जो टोल फ्री नंबर है 1500 पे कॉल करके, या नालसा का अपना एक वेबसाइट का जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें भी जाके अपना आवेदन दे सकते हैं और जहाँ से अपना वो निःशुल्क जानकारी या किसी तरह का कोई सहायता ले सकते हैं। देखिए जहाँ तक बात है कि अधिवक्ता मुहैया कराने की, अगर किसी का कोई केस चल रहा हो और केस मतलब पैसे के अभाव की वजह से, अगर आर्थिक अभाव की वजह से वो नहीं लड़ पा रहे, तो वैसी स्थिति में उनको जो है मुफ्त जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एडवाइस के लिए एडवोकेट प्रोवाइड किया जाता है। ये नीचे स्तर पे जो डालसा हैं झालसा हैं उनके मदद से दी जाती है। तो सेक्शन 12 जो लीगल सर्विसेज एक्ट है, उस एक्ट में जैसे जो जो पात्रताएं, जैसे महिलाएं, 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उसके अलावा आपके लाइक जो भी मानव तस्करी से संबंधित जो भी विक्टिम हैं, उसके अलावा जो आपके जो पर्संस इन कस्टडी जो जेल में हैं और ऑब्जर्वेशन होम में हैं और किसी कारणवश वो अपना केस को आगे बढ़ा पाने में, अधिवक्ता नहीं रख पाने, मदद नहीं

0: नहीं सशक्त हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो है उनको लीगल सर्विस एक्ट के तहत जो भी है उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एडवोकेट प्रोवाइड करते हैं, उनका जो कॉस्ट है वो सरकार उसका वहन करती है। उसके अलावे भी हर कोई व्यक्ति, जो भी व्यक्ति हैं जिनका सालाना इनकम 3 लाख से कम का है, वैसे व्यक्ति भी जो है लीगल एड के लिए, एडवाइस के लिए और कानूनी मदद के लिए उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम लोग लीगल एड प्रोवाइड करते हैं,
1: चाहे वो किसी भी वर्ग के हो।
0: उनकी जो वार्षिक आमदनी जो है 3 लाख से नीचे का होना चाहिए।
1: जी जी, तो कौन कौन से लोग, जैसे हम बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं, तो महिलाओं के लिए क्या इसमें निर्धारित किया गया है मापदंड?
0: जैसे जो भी महिलाएं का है, कोई भी महिलाएं इरेस्पेक्टिव ऑफ हर इनकम, जरूरी नहीं है कि उनका इनकम 3 लाख से ऊपर हो या 3 लाख से कम हो, हर महिलाएं वो एलिजिबल है सेक्शन 12 के अंतर्गत जो लीगल सर्विस एक्ट में, कि फ्री लीगल एंड एडवाइस उनको दिया जाएगा, विधिक सहायता जो दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिलेगा, चाहे उनको एडवोकेट करना,
1: उनके आय की
0: प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता उनको नहीं है। उनके अलावे जैसे हैं जो भी ST/SC कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं तो उनको भी फ्री लीगल एड दिया जाएगा। उसके अलावे बच्चे हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको भी जो भी है फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड प्रोवाइड करने की है। उसके अलावे मानव तस्करी संबंधित विक्टिम्स हैं, या फिर मैंने भी जैसे बताया कि कोई भी व्यक्ति अगर जेल में है या ऑब्जर्वेशन होम में है, या इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं जो इंडस्ट्री वगैरह में काम करने जो वर्कर्स होते हैं, उन लोग भी जो है इसके अंदर इंटाइटल्ड है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। नालसा की तरफ से भी दिया जाता है, और झालसा जो हमारे हैं निश्चित स्तर पर जो डालसा है जिला विधिक सेवा प्राधिकार, तो हम इस तरह से उनको कानूनी मदद फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे सकते हैं।
1: जिस व्यक्ति का सालाना इनकम 3 लाख से कम है वो निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का हकदार है।
0: बिल्कुल
1: जी, और महिलाओं के लिए ये निर्धारण नहीं किया गया है, महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता,
0: कोई आय का निर्धारण नहीं
1: जी,
0: है।
1: जी, अभी निःशुल्क कानूनी सहायता वो प्राप्त करना चाहता है तो वो कैसे संपर्क करे, कैसे आवेदन करे, कहाँ वो पहुंचे?
0: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। आज के डेट में ये देखा जाता है सर कि जनरली बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कोर्ट में जाना है, केस करना है, आर्थिक रूप से मतलब मजबूत नहीं है, सामाजिक रूप से पीछे हैं, तो चाहते हम कहाँ जाएं, किससे मिलें, कैसे हम आगे बढ़े, ये क्वेश्चन मार्क्स जो है ना, प्रश्न चिन्ह हमेशा मन मस्तिष्क में लोगों का चलता रहता है। तो उन सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके मतलब ये लीगल सर्विसेज की जो पहुंच है आपके ग्रामीण स्तर तक, मतलब पंचायती स्तर तक पहुंचाया गया है। पंचायत में जो बैठे जो भी आपके PLVs हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं जिनको लोग अधिकार मित्र के नाम से जानते हैं, उसके अलावे पूरे राज्य में हम लोगों ने लीगल लिटरेसी क्लब्स के माध्यम से, चाहे वो कॉलेजेस हों, स्कूल्स हों, ग्रामीण क्षेत्रों हों, सभी जगह एक लीगल लिटरेसी क्लब्स के माध्यम से अवेयर भी करते हैं, और वहाँ पर हर जगहों पर हमारा एक PLVs है, आप PLVs के पास जाएँ और आप अपना जो भी हैं बातें रखें। अगर आप आवेदन नहीं लिख पाते तो वो ड्राफ्ट करने में मदद करते हैं, उस आवेदन को आप उनको दें, संबंधित जो भी नियरेस्ट आपका जिला विधिक सेवा प्राधिकार है वहाँ जाकर आवेदन दें कि मैं, हमारा ऐसा ऐसा केस है, मैंने एक ऐसा केस करना चाहता हूँ या हमने कर रखा है और मुझे इसमें एडवोकेट की आवश्यकता है, अधिवक्ता की आवश्यकता है, तो जो संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकार हैं वो आपको पूर्ण रूप से जो है आपको वहाँ पर मदद करते हैं, आपको अधिवक्ता भी प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा आपको जितनी भी तरह की जो कानूनी सलाह होता है, विचार होता है, विमर्श होता है, उसके लिए भी आपको वहाँ पर सारी सेवाएं जो हैं मुफ्त रूप से प्रदान की जाती है। यही चीज़ अगर राज्य स्तर पे है तो जैसे झालसा है हमारा झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, वहाँ के भी कार्यालय में आकर आप सेम अपना आवेदन देकर भी अपना जो भी है ये कानूनी सलाह या कानूनी मदद का जो भी मुफ्त मदद होती है, मुफ्त सेवाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावे हमारा नालसा का एक टोल फ्री नंबर है जो मैंने पहले भी बताया आपको, 15100, मैं पुनः उसको रिपीट करता हूँ, 15100, इसमें भी कॉल कर आप अपनी कोई भी कानूनी समस्याओं को रख सकते हैं, कानूनी समस्याएं से संबंधित जो भी जानकारी है, सलाह है, मुफ्त ले सकते हैं, और आपको लगता है कि नहीं मुझे उस मामले में अधिवक्ता की आवश्यकता है, तो आपको जो संबंधित जो भी लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको मदद करती हैं अधिवक्ता प्रोवाइड करने के लिए, और आप उस अधिवक्ता के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने केस का आगे का बढ़ावा कर सकते हैं।
1: जी, एक सरकार की ओर से बड़ी अच्छी सुविधा दी गई है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है,
0: बिल्कुल,
1: या फिर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के हैं, या महिलाएं हैं, या बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं और मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्ति भी निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, और खास

0: सर, जेल में जो हमारे साथी हैं वो कानूनी कैसे सहायता लें, तो उनके लिए भी एक व्यवस्था की गई है निःशुल्क विधिक सहायता, उन्हें भी निःशुल्क एडवोकेट मुहैया कराया जाता है। और हर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का ऑफिस है, कार्यालय है, आप वहां जा सकते हैं, सादे कागज पर भी आप आवेदन दे सकते हैं और उस पर त्वरित गति से कार्यवाही की जाती है और आपकी बात सक्षम अधिकारी तक पहुंचती है। जी, मन में ये आशंका आप नहीं रखें कि यदि निःशुल्क है तो कार्यवाही होगी नहीं होगी, ये मन से बात निकाल देने की आवश्यकता है। क्या कहेंगे कि आप निःशुल्क कानूनी सहायता को आप जरूर प्राप्त करिए, इधर उधर के आप बहकावों में नहीं आए, आपके लिए निःशुल्क विधिक सहायता सरकार ने दे रखी है।
1: बिल्कुल, देखिए ये जो एक्ट है या जो कानून है, बिल्कुल आपके मदद के लिए, आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंच पाए, इसके लिए लाया गया है। और इसमें जो मुफ्त जो कानूनी मदद दी जाती हैं, सेवाएँ दी जाती हैं, इसमें अच्छे अच्छे अधिवक्ता होते हैं, लोग होते हैं और कानून परामर्शी के जो दल होते हैं, पूरी तरह से टीम भावना के साथ आप लोग की मदद के लिए तत्पर हैं वो लोग। आप कभी भी इस तरह का हो, आपको लगे आपको भी विचार लीगल सहायता विचार विमर्श करना है, तो इन माध्यमों से आप जा सकते हैं। और मतलब बहुत ही त्वरित गति से जो होता है इन सबों का निपटारा किया जाता है, केसेस को तुरंत उसमें अलॉट किया जाते हैं, संबंधित अधिवक्ता को दी जाती है और आपके केस को बहुत ही प्रभावी ढंग से जहां सक्षम पदाधिकारी के पास में रखा जाता है।
0: जी, थोड़ी सी जानकारी के अभाव में, अज्ञानता के कारण, सजगता नहीं होने के कारण हम फिर इधर उधर भटकते रह जाते हैं, तो यदि आप थोड़े से जागरूक बनते हैं और प्रचार प्रसार भी इसके लिए किया जाता रहता है, समय समय पर कैंप भी लगाए जाते रहते हैं और जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है कि आपके लिए निःशुल्क विधिक सहायता है, आप इसका भरपूर लाभ लीजिए, तो क्या कहेंगे दीपक जी हमारे सुनने वाले साथियों को कि आप इस निःशुल्क विधिक सहायता का भरपूर लाभ उठाइए। और यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आपके लिए टोल फ्री नंबर भी है, वहां से प्राप्त करके भी आप बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आप लोगों के लिए ये कानून प्रदत्त जो शक्तियां हैं उसका आप लोग भरपूर लाभ उठाएं। जो भी निशुल्क हम लोग विधिक सहायता के लिए जो भी इंस्टीट्यूशंस तत्पर हैं और आप तक पहुंच रही हैं, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें, अपने जो भी कानूनी मदद के लिए आगे आएँ। जो जिसको जानकारी नहीं है और इस मंच के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं कि हमें क्या क्या मुफ्त कानून सहायता मिल सकती है, आप औरों को भी बताएं, लोगों को जागरूक करें, क्योंकि जितना हम जगेंगे जागरूक होंगे उतना ज़्यादा हम मजबूती कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे। और मैं आपसे यही कहूँगा कि इस तरह की जो सेवाएँ हैं उसका ज़्यादा ज़्यादा आप लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, इसमें भाग लेना चाहिए और इसके इसका जितना भी आप लोगों का लाभ मिल सके इसका आप लेने की कोशिश करनी चाहिए।
0: बस थोड़ी सी आपको जागरूक होने की
1: आवश्यकता है।
0: आप थोड़ा सा जागरूक होइए, अपनी नॉलेज को थोड़ा सा विस्तार कीजिए और निःशुल्क कानूनी सहायता का आप लाभ लीजिए। आवश्यकता इस बात की है कि आप उस जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय है या आप सुदूर अंचल गांव देहातों में रहते हैं तो वहां भी पीएलबी या अधिकार मित्र है, उससे भी आप उनकी मदद कर सकते हैं, वहां वो रहते हैं,
1: बिल्कुल हाँ,
0: पीएलबी तो वो भी आपको भरपूर मदद करेंगे और आपको निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। आप आश्वस्त रहें, आपकी बात सक्षम अधिकारी तक पहुंचती है और आपको न्याय मिल पाता है।
1: बिल्कुल
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्री दीपक कुमार साहू जी, बड़ी अच्छी आपने बातचीत की। निःशुल्क विधिक सहायता कैसे प्राप्त करें, आज आप इस कार्यक्रम में बड़ी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, ये कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं, अगले दिन इसी चैनल पर इसी समय एक नई जानकारी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार।

निःशुल्क विधिक सहायता कैसे प्राप्त करें, इस विषय पर अभी श्री दीपक कुमार साहू अंडर सेक्रेटरी झालसा से संजीव कुमार लाल की बातचीत सुन रहे थे कार्यक्रम कानून की बात में। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

0: एक बूंद को हमें बचाना है तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरे आज नौसेना में शामिल होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
4: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
2: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
4: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
2: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि

0: सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
1: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
2: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक जोन है, हमारे आईलैंड टेरिटरी है, और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है, और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। इस स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुस जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,700

0: 40 लोग घायल हुए हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
1: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
2: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वीं मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थीं। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायार मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेसी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नोस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। India and New Zealand signed 5 MOUs in key areas including defence, disaster management and animal husbandry to boost economic and strategic cooperation. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon in Auckland, says India and New Zealand can play important role in strengthening peace and security in Indo-Pacific region. Indian Navy to commission indigenous stealth frigate Mahendragiri in Vishakhapatnam today. Home Minister Amit Shah reviews progress in rollout of Bureau of Port Security, directs stronger coastal security measures. In FIFA World Cup, Spain books spot in semi-finals, defeating Belgium 2-1, Norway to face England in third quarter-final tonight. And in Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchová to face compatriot Linda Noskova in women's singles final today. And now the news in detail. India and New Zealand today signed 5 key memorandums of understanding, MOUs, covering defence, animal husbandry and dairy, tourism, sports and disaster management, marking a new chapter in bilateral ties between the two nations. The deals were inked following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart, Christopher Luxon, in Auckland. We have more from our correspondent.
5: The two countries signed a memorandum of arrangement between the Ministry of Defence and the New Zealand Defence Force to enhance maritime cooperation aimed at strengthening security in the Indo-Pacific region. The agreement on animal husbandry and dairy will promote research, innovation and exchange of best practices. The tourism pact is expected to boost visitor exchanges and strengthen cooperation in the travel sector. Both sides also adopted a joint action plan on sport to deepen collaboration in sports development and athlete exchanges. An MOU on disaster management will enhance cooperation in disaster preparedness, emergency response and resilience. The 5 agreements reflect the growing India-New Zealand partnership and the shared commitment to expand cooperation across strategic, economic and people-to-people sectors. With Manju Meena's report from Auckland, this is Jigyasa Pandey for Akashwani News.
4: Earlier, speaking during delegation-level talks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give a fresh momentum to ties between the two countries. Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and security in the Indo-Pacific region.
6: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
4: Speaking on the occasion, the New Zealand Prime Minister described Mr. Modi's visit as a historic milestone, marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. Welcoming Prime Minister Modi, Mr. Luxon said, "It was a pleasure and an honour to host him," adding that the visit reflects the growing strength of bilateral ties.
7: This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity, and I'm therefore delighted to welcome you here. Thank you for the relationship and thank you for what you've put into it personally. I think we've made tremendous progress in a very short period of time on the trade agenda, but today's focus is about more than just the FTA. It's about where we go to next in this relationship and how we broaden that out. Very proud to announce that we will be forming a strategic partnership, which will give the relationship more framework and breadth for us to continue to expand as we go forward from here.
4: Prime Minister Modi and his New Zealand counterpart participated in the India-New Zealand Business Engagement 2026 event in Auckland, where both leaders reaffirmed their commitment to strengthening economic ties between the two countries. We have more from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
8: Highlighting the growing economic partnership between the two countries, Prime Minister Narendra Modi said the free trade agreement was concluded in a

0: Venezuelan Parliament Chief Jorge Rodriguez wrote on social media platform that at least 4,118 people were killed and 16,740 were injured in back-to-back 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes which hit the South American country on the 24th of June, flattening entire districts in the coastal state of La Guajira. Thousands more are listed as missing. Back home, the India Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for very heavy rainfall over Bihar, Uttar Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 3 days. The weather agency has forecast very heavy rainfall condition over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Arunachal Pradesh, Gangetic West Bengal, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Ladakh and Jammu and Kashmir during the next 5 days. In Delhi, IMD predicted very light to light rainfall condition accompanied with thunderstorm and lightning during the day. In the FIFA World Cup, Spain has booked its place in the semi-finals, defeating Belgium 2-1 in the second quarter-final at Los Angeles Stadium in Inglewood, United States last night. Earlier, France advanced to the semi-finals with a comfortable 2-0 victory over Morocco in the first quarter-final in Boston. In the remaining quarter-finals, Norway will face England at Miami Gardens tonight. The match will begin at 2:30 a.m. Indian Standard Time. Defending champions Argentina will take on Switzerland in the fourth quarter-final at Kansas City tomorrow. In Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchová will face compatriot Linda Noskova in the women's singles final in London today. Both players are chasing their maiden Wimbledon crown. Muchová, who will be appearing in her first Wimbledon final, will rely on her all-court game and experience, while the hard-hitting Noskova will be aiming to win her first Grand Slam title. 9th seed Noskova outclassed 12th seed Ukrainian Marta Kostyuk 6-4, 6-4, while 10th seed Muchová beat 7th seed American Coco Gauff 6-2, 1-6, 7-6 in the last four matches to reach the final. The stage is all set for men's singles final tomorrow, where world number one Jannik Sinner will face Germany's Alexander Zverev. And in women's cricket, England will resume their first inning play at the overnight score of 21 for 1 on day 2 of inaugural women's test at Lord's in London today, in reply to India's total of 285. The play is scheduled to commence at 3:30 p.m. Indian Standard Time. On the opening day, England batted for 11 overs in the final session before stumps were drawn. And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
1: Thank you, Anuja. All the dailies have covered the Prime Minister's visit to Australia and New Zealand. The dailies have also mentioned the announcement of cricket diplomacy with Australia. The Times of India writes, "Good day, Chennai. Australia's Big Bash League opener to be held in Tamil Nadu this December, becoming the first instance of a foreign cricket league playing in India." The dailies have also mentioned the Prime Minister's historic visit to New Zealand on first bilateral visit in 40 years, focusing on trade and eco links. Kerala birth rate has reached an all-time low, states the Indian Express, dropping into single digit for the first time. A Sena team planned Bangladesh return in December, willing to face arrest or even death, states the Tribune. And finally, the Statesman cites a major milestone for breed conservation and preservation of two Himalayan Gaddi dogs who are integral to the culture and pastoral heritage of the Western Himalayas, getting official Kennel Club recognition. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and New Zealand signed 5 MOUs in key areas including defence, disaster management and animal husbandry to boost economic and strategic cooperation. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon in Auckland, says India and New Zealand can play important role in strengthening peace and security in Indo-Pacific region. Indian Navy to commission indigenous stealth frigate Mahendragiri in Vishakhapatnam today. Home Minister Amit Shah reviews progress in rollout of Bureau of Port Security, directs stronger coastal security measures. In FIFA World Cup, Spain books spot in semi-finals, defeating Belgium 2-1. Norway to face England in third quarter-final tonight. And in Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchová to face compatriot Linda Noskova in women's singles final today. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में झारखंड सरकार के दो दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स का समापन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य में जल्द दिखेंगे सार्थक परिणाम। धनबाद की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने बहुचर्चित मटकुरिया गोलीकांड में पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक समेत सभी 30 आरोपियों को सुनाई 3-3 साल की सजा। रांची में पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित उद्यमों के लिए आउटरीच कार्यक्रम आयोजित। ईसीएलजीएच योजना के तहत वितरित किए गए ऋण स्वीकृति पत्र। जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की 4 खिलाड़ियों का चयन। सलीमा टेटे संभालेंगी टीम का कमान, मुख्यमंत्री ने दी बधाई। और झारखंड रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश जारी। मौसम केंद्र ने 40 से 50 किलोमीटर रफ्तार की हवाओं का जारी किया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आयोजित झारखंड सरकार के दो दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स के समापन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके जल्द ही सार्थक परिणाम सामने आने की उम्मीद जताई है। नई दिल्ली में आयोजित इस समापन समारोह और सांस्कृतिक संध्या में विभिन्न देशों के राजनयिक, केंद्र व राज्य सरकारों के अधिकारी तथा नीति विशेषज्ञ शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राष्ट्रीय परामर्श से राज्य में निवेश और जन कल्याणकारी योजनाओं को नई दिशा मिलेगी। धनबाद में कांग्रेस पार्टी ने राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र मरावी और सह प्रभारी शकील अहमद खान शामिल हुए। बूथ लेवल एजेंटों ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन और सत्यापन में आ रही चुनौतियों को रखा। भूपेंद्र मरावी ने कहा कि पार्टी हर पात्र मतदाता का नाम जोड़ने और उनका अधिकार सुरक्षित रखने पर नजर बनाए हुए है।
3: एआईसीसी द्वारा जो सह प्रभारी है झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, वो आज धनबाद लोकसभा तो ऑर्गेनाइजेशन की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सभी प्रखंड अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, क्या क्या जिनकी कमेटी है, पूरी है अधूरी है, उस पर पूरा विचार विमर्श हो रहा है। वैसे आयर पे कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, जो आम जनता पर सहयोग कर रहे हैं, उस पर समीक्षा कर रहे हैं।
2: धनबाद की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने बहुचर्चित मटकुरिया गोलीकांड मामले में पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक समेत 30 आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि यह मामला वर्ष 2011 में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसक झड़प से जुड़ा है।
4: बीसीसीएफ के क्वार्टर को अतिक्रमण खाली कराने में वहाँ के स्थानीय समुदाय के लोग, प्रशासन के ऊपर गोली और बम से हमला भी किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के हमले में 4 लोग मर गए। इसमें तत्कालीन एसपी जख्मी हो गए और भी पदाधिकारियों को चोट लगी। कुल 30 आरोपियों को इसमें दोषी पाया गया, जिसमें 302 और 307 में उन लोगों को बरी कर दिया गया।
2: हजारीबाग परिसदन में झारखंड विधानसभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई, जिसमें लंबित विधानसभा प्रश्नों और विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। समिति के सभापति और देवघर विधायक सुरेश पासवान ने बैठक की कमान संभाली। सभापति ने जनहित योजनाओं की पारदर्शिता के साथ साथ समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में खूंटी के विधायक रामसूर्य मुंडा समेत कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया। वे देवराहा बाबा के पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए और समाज की सुख शांति की कामना की। उन्होंने भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में आयोजित बृहत पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेकर पौधा लगाया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। रांची की डॉक्टर मेघा रानी ने मात्र 120 मिनट में 120 पन्ने लिखकर हिंदी लेखन में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस अनूठी उपलब्धि को आधिकारिक मान्यता दे दी है। इस सफलता के साथ ही वे दुनिया की सबसे तेज हिंदी लिखने वाली महिला बन गई हैं। डॉक्टर मेघा पिछले 7 वर्षों से नारी विमर्श और सामाजिक विषयों पर लगातार लिख रही हैं। रांची में पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित

0: उद्योगों के लिए आयोजित आउटरीच कार्यक्रम में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0 के तहत ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। इसी वर्ष 8 मई से प्रभावी यह योजना एमएसएमई और विमानन क्षेत्र को कार्यशील पूंजी सहायक प्रदान करती है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.aar.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद में पुलिस की मासिक अपराध समीक्षा बैठक में एसएसपी प्रभात कुमार ने दावा किया कि जिले में अपराध के मामलों में करीब 30% की कमी आई है। जून माह में 409 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 460 पुराने लंबित मामलों का निष्पादन किया गया। एसएसपी ने बताया कि लगातार प्रयासों से पहली बार लंबित मामलों की संख्या घटकर 1800 से नीचे पहुंच गई है।
1: समीक्षा बैठक की गई है और जिसके फलस्वरूप हमारा जो पेंडेंसी है वो आज के डेट में 1794 1800 से नीचे आ गया है। सिमिलरली हम लोग इस माह अभी जो एक सप्ताह के लिए एक मुहिम चलाने का निर्देश दिया गया है, वो निर्देश है कि जितने भी अपराधियों को कुर्की जब्ती करने के बाद फिरारी दिखा करके चार्जशीट किया गया था, वो सभी अपराधियों को धरपकड़ करने के लिए एक विशेष मुहिम चलाने का निर्देश दिया गया है जो एक सप्ताह चलेगा।
0: हजारीबाग में पुलिस ने जब्त किए 1452 किलोग्राम डोडा, 307 किलोग्राम गांजा और 5 लीटर कफ सिरप को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। यह कार्यवाही बरही, चौपारण, चरही और कटमदाग थाने में लंबे समय से रखे नशीले पदार्थों पर की गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डीएसपी सीसीआर के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। सभी नशीले पदार्थों को लोहरदगा के बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट ले जाकर सरकारी मानकों के अनुसार नष्ट किया गया। गिरिडीह जिला प्रशासन ने सरिया थाना क्षेत्र के जंगलों में अवैध पत्थर खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से 123 पीस जिलेटिन, एक जेसीबी मशीन और कई ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। इस संयुक्त छापेमारी अभियान में अनुमंडल पदाधिकारी संतोष गुप्ता और एसडीपीओ धनंजय राम शामिल थे। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि अभियान आगे भी जारी रहेगा।
2: बहुत दिनों से जो सूचना प्राप्त हो रही थी इलीगल माइनिंग जो है सरिया क्षेत्र में किया जा रहा है, आज उसी पर जो है टीम बना करके संयुक्त रूप से जो है छापेमारी की गई। उस छापेमारी में जो है सो मशीनें वगैरह जब्त हुए हों, लोगों के लोग हिरासत में लेकर आगे कार्रवाई की जा रही।
0: रांची रेल मंडल से गुजरने वाली कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें आज आंशिक रूप से रद्द और शॉर्ट टर्मिनल रहेंगे। वर्धमान हटिया मेमू आज गोमो तक ही चलेगी, जबकि खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस आद्रा और आसनसोल रांची पैसेंजर मूड़ी स्टेशन तक ही जाएगी। हटिया और सांकी के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों के सभी फेरे आज पूरी तरह से रद्द रहेंगे। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल रात से जारी रुक रुक कर बारिश के बीच मौसम केंद्र ने आज हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार आज राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए आम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह जारी की है। झारखंड की 4 महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन जापान में होने वाले 20वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम में हुआ है। सिमडेगा की सलीमा टेटे भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी संभालेंगी। टीम में ओलंपियन निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेन को भी स्थान मिला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चारों खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। दुमका का विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ श्रावणी मेला महोत्सव 28 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसकी सुरक्षा के लिए 600 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अनुमंडल पदाधिकारी कौशल किशोर ने बताया कि पूरा मेला क्षेत्र 24 घंटे नियंत्रण कक्ष की निगरानी में रहेगा। मंदिर परिसर, गर्भगृह, कांवरिया कतार और शिवगंगा जैसे प्रमुख स्थानों पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगेंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी अखबारों ने मटकुरिया गोलीकांड में 15 साल बाद फैसला आने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है पूर्व मंत्री मन्नान समेत 28 को 3-3 साल की कैद।

उछलका नहीं भरने पर मन्नान रांची में गिरफ्तार। प्रभात की सुर्खी है, दो अपराधी होटल पार्क रिट्रीट में ठहरे, रात में 80 लाख की जगुआर से चोरी करने पहुंचे। हिंदुस्तान ने झारखंड हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है, टीजीटी 21 वालों को भी दें वरीयता का लाभ। दैनिक जागरण के शब्द हैं, सरकारी गाड़ी छोड़ अपनी कार पर बैठे वित्त मंत्री, चर्चाओं का बाजार रहा गर्म। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में झारखंड सरकार के दो दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स का समापन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य में जल्द दिखेंगे सार्थक परिणाम। धनबाद की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने बहुचर्चित मटकुरिया गोलीकांड में पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक समेत सभी 30 आरोपियों को सुनाई 3-3 साल की सजा। रांची में पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित उद्यमों के लिए आउटरीच कार्यक्रम आयोजित। ईसीएलजीएस योजना के तहत वितरित किए गए ऋण स्वीकृति पत्र। जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की 4 खिलाड़ियों का चयन। सलीमा टेटे संभालेंगी टीम की कमान, मुख्यमंत्री ने दी बधाई। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश जारी। मौसम केंद्र ने 40 से 50 किलोमीटर रफ्तार की हवाओं से का जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.5 पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची का प्रसारण सुनीता के साथ।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम लोक रंग का, जिसमें आज आप सुनेंगे कुर्माली भाषा में लोकगीत। कलाकार होंगे किस्टो महतो और साथी।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक प्रकार से

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: रसरंजन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। दूर की आवाज इस फिल्म में अभी आप सुनेंगे मोहम्मद रफी को। गीत के बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने और धुन बनाई है रवि ने।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन सनम तेरी कसम। इस फिल्म का गीत आप सुनेंगे किशोर कुमार आशा भोसले के जुगल स्वरों में। गीत के बोल लिखे हैं गुलशन वाबरा ने, धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

झूठा सच। इस फिल्म का गीत आप सुनेंगे किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

ठोकर इस फिल्म का गीत अभी आप सुनेंगे मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं सज्जन दहलवी ने, धुन बनाई है श्यामजी घनश्याम जी ने।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म खानदान से नक्शलालपुरी के बोल खयाम का संगीत लता मंगेशकर की आवाज।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का रसरंजन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम से सुनीता आपसे लेती है विदा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। हमारे आज के कलाकार हैं पंडित मोर मुकुट केरिया, जिनसे हम सुनेंगे सितार पर राग अहीर भैरव में आलाप, और जोड़ के बाद दो गते प्रस्तुत होंगी। दोनों ही गते तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर साथ दे रहे हैं श्रीजीत चटर्जी। ये कार्यक्रम हम सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

पंडित मोर मुकुट केडिया से अभी आप सुन रहे थे सितार पर राग अहीर भैरव में आलाप और जोड़ के बाद दो गते प्रस्तुत थी। दोनों ही गते तीन ताल में निबद्ध थी। तबले पर साथ दे रहे थे श्रीजीत चटर्जी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यही सम्पन्न होता है।

आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कल्याणी, जिसमें आज चर्चा होगी आपका संस्कार, आपकी पहचान। साथ ही भेंटवार्ता आप सुनेंगे योग और आपका स्वास्थ्य। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर सरोज कुमारी, उनसे बातें करेंगे संजीव कुमार लाल।

और प्रेरणा से भरपूर एक शानदार कार्यक्रम लेकर। तो दोस्तों तैयार हो जाइए कुछ नए विचारों, रोचक चर्चाओं और मन को छू लेने वाले मधुर गीतों के सफर पर। आने वाले कुछ पलों में हम साथ साथ सीखेंगे, मुस्कुराएंगे और गीत संगीत का आनंद भी उठाएंगे। तो दोस्तों अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक विशेष चर्चा के साथ। दोस्तों जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है, विनम्रता और अच्छे संस्कार होते हैं, वहाँ के बच्चे भी आदर करना सीखते हैं। इंसान की असली पहचान उनके शब्दों से नहीं बल्कि उसके संस्कारों से होती है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों की संगति चुनना चाहिए जहाँ सम्मान और संस्कारों का कद्र हो। तो मित्रों आइए हम विस्तार पूर्वक एक खास विषय पर चर्चा करते हैं, आपका संस्कार आपकी पहचान। प्रिय श्रोताओं आज के समय में लोग किसी व्यक्ति की पहचान उसके पहनावे, धन दौलत, पद या प्रतिष्ठा से करने लगे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी इंसान की वास्तविक पहचान उसके संस्कारों से होती है। अच्छे संस्कार ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को ऊंचा बनाते हैं और समाज में उसे सम्मान दिलाते हैं। संस्कार वह अमूल्य धरोहर है जो हमें हमारे परिवार, माता पिता, गुरुजनों और समाज से प्राप्त होती है। बचपन में जो शिक्षा, व्यवहार और जीवन मूल्य हमें सिखाते जाते हैं वही आगे चलकर हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। एक संस्कारी व्यक्ति हर परिस्थिति में विनम्र रहता है, बड़ों का सम्मान करता है, छोटों से प्रेम करता है और दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है। दोस्तों धन, सौंदर्य और शक्ति समय के साथ कम हो सकते हैं, लेकिन अच्छे संस्कार जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास अपार धन हो लेकिन संस्कार ना हो तो वह कभी भी लोगों को दिल में स्थान नहीं बना सकता। इसके विपरीत सीमित संसाधनों वाला एक संस्कारी व्यक्ति अपने व्यवहार से सभी का प्रिय बन जाता है। आज के आधुनिकता और तकनीक के इस दौर में जीवन बहुत तेज हो गया है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमारी दुनिया को छोटा बना दिया है, लेकिन कई बार इनकी वजह से परिवार के बीच संवाद कम होने लगे हैं। ऐसे समय में अपने संस्कारों को बचाए रखना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। माता पिता बच्चों से पहले गुरु होते हैं। यदि घर में प्रेम, सम्मान, अनुशासन, सत्य, ईमानदारी और सेवा की भावना का वातावरण होगा तो बच्चे भी वही सीखेंगे। इसलिए बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार भी देना आवश्यक है। मित्रों हमारे देश की संस्कृति अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव और वासुदेव कुटुंबकम जैसे महान आदर्शों का आधारित है। यह केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा है। जब हम इन मूल्यों को अपने व्यवहार में अपनाते हैं तभी हमारा व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है। संस्कार हमें सिखाते हैं कि सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करना चाहिए और असफलता मिलने पर धैर्य नहीं खोना चाहिए। वो हमें क्षमा करना, दूसरों के प्रति संवेदनशील होना और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाते हैं। यही गुण एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देते हैं। प्रिय श्रोताओं यदि हम चाहते हैं कि हमारे परिवार खुशहाल रहे, समाज में भाईचारा बना रहे और आने वाली पीढ़ियां नैतिक मूल्यों से समृद्ध हो तो हमें स्वयं अपने जीवन में अच्छे संस्कारों को अपनाने होंगे। याद रखिए बच्चे हमारी बातों को कम और हमारे व्यवहार से अधिक सीखते हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारा नाम, पद या संपत्ति नहीं बल्कि हमारे संस्कार होते हैं। अच्छे संस्कार जीवन को सफल, सम्मानित और सार्थक बनाते हैं। आइए हम संकल्प लें कि सत्य, ईमानदारी, विनम्रता, करुणा और सम्मान जैसे मूल्यों को अपने जीवन का आधार बनाएंगे और आने वाली पीढ़ी को भी यही अमूल्य विरासत देंगे। साथियों आज का जीवन भागदौड़, प्रतिस्पर्धा और चिंताओं से भरा हुआ है। पढ़ाई, नौकरी,
परिवार और भविष्य की चिंता के कारण लोग मानसिक तनाव के शिकार हो रहे हैं। ऐसे समय में

0: योग एक ऐसा सरल और प्रभावी उपाय है जो मनुष्य को तनावमुक्त जीवन जीने का प्रेरणा देता है। तो मित्रों, आइए हम जानकारी करते हैं हमारे खास आमंत्रित मेहमान सरोज कुमारी जी से, जो कि बताएंगे योग और आपकी स्वास्थ्य विषय पर। और इनसे बातचीत कर रहे हैं श्री संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों जोहार, नमस्कार। मित्रों, आजकल की बदलती जीवन शैली में योग का बड़ा ही महत्व है, और प्रायः हम ये कहते हैं कि आज हमारे पास समय नहीं है और बहुत तनाव है, बहुत सारा काम हमें आज निपटाने हैं। तो इस भागम भाग जिंदगी में काम के बोझ के तले हम दबे जा रहे हैं, और प्रायः यही सुनने को मिलता है कि आज तो समय नहीं है हमें योग करने का। दोस्तों, योग में एक बहुत बड़ी शक्ति है। कहा भी जाता है कि योग एक साधना है और योग में एक चमत्कार है। यदि हम अपने व्यस्त समय से कुछ समय यूं कहें कि चुरा लेते हैं और 10 मिनट भी यदि हम योग कर लेते हैं, तो सारा दिन हमारा तरोताजा बीतता है और हम तनाव से दूरियां बना बैठते हैं। तो योग कम समय में कौन कौन सी योग क्रियाएं करें, योग का कितना महत्व है आज के बदलती लाइफस्टाइल में, इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए आमंत्रित हैं योग प्रशिक्षक सरोज कुमारी। सरोज जी, स्वागत है। सरोज जी, आजकल की बदलती लाइफस्टाइल में बहुत तेजी से लाइफस्टाइल हमारा बदल रहा है, इसमें योग का कितना महत्व है? लोग प्रायः यही कहते हैं कि तनाव से हम घिरे हुए हैं, और तनाव तो हर जगह है, कहते हैं यत्र तत्र सर्वत्र तनाव व्याप्त है। तो योग कितना कारगर है आज के संदर्भ में?
2: योग हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखें तो योग मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ शारीरिक व्यायाम, ये नहीं बोल सकते हैं। योग मतलब होता है कि हमारे शरीर, मन और श्वास, ये तीनों को जोड़ता है। ये हमारा ये एक लयबद्ध में आ जाए तो हमारा जीवन बहुत ही स्मूथ चलेगा। जैसे हमें हमारा जीवन कैसा भी तनाव है, क्रोध हो जाता है और हमें चिंता बहुत होती है, तो ये जो योग करते हैं तो हमारी ये सब चिंताएं दूर होती है। इससे
1: योग से चिंताएं दूर होती है, योग से तनाव में कमी आती है।
2: यस
1: सरोज जी, अपने व्यस्त समय से ऐसे कौन सा समय हम निकालें, 10 मिनट भी यदि हम निकाल लेते हैं, तो ऐसे कौन से योग क्रियाएं हम करें? और कार्यस्थल पर लगातार हम काम करते हैं, लैपटॉप के सहारे डेस्कटॉप पर हम लगातार काम करते हैं, हमारी आंखें थक जाती हैं और फिर बहुत सारी तकलीफें नज़र आने लगती हैं, तो कम समय में कौन कौन सी योग क्रियाएँ किया जाए?
2: बहुत सारी है क्रियाएं जो हम लोग बैठे बैठे भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग लैपटॉप में वर्क करते हैं, हमारी आंखें थक जाती है, तो हम आंखों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? जैसे हम लोग गर्दन सीधा रखें और आंखों को ऊपर की ओर ले जाएं, फिर नीचे देखें, फिर लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, एटलीस्ट 3-4 बार करेंगे। फिर सर्कल बनाएं, आंखों की जो रेटिना होती है उसे सर्कल बनाएंगे, ऊपर राइट नीचे लेफ्ट, ऊपर राइट नीचे लेफ्ट से, तो इस तरह से सर्कल बनाएंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी इस तरह से हम लोग सर्कल बनाते हैं। तो एक आँखों की एक्सरसाइज हो गई उस, और फिर आँखों को बंद करें, टाइट से बंद करना है, फिर खोलना है, फिर टाइट से बंद करना है, खोलना है, तो आँखों में जो जलन होती है वो नहीं होती है। उसके बाद एक एक्सरसाइज और कर सकते हैं जो गर्दन के लिए होती है, अपनी गर्दन से जैसे ऊपर की ओर ले जाएं गर्दन को, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर ले जाना है, फिर नीचे की ओर, फिर अपने बाएं साइड, दाहिने साइड, फिर बाएं साइड, फिर दाहिने साइड, फिर इसी तरह सर्कल बनाना है क्लॉकवाइज, नीचे से फिर बाएं दाहिने साइड, फिर पीछे, फिर नीचे, जैसे सर्कल बनाना है क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज करके बनाना है, तो आपके गर्दन में जो भी पेन हो आपका चला जाता है। तो ये एक एक्सरसाइज वो कर सकते हैं हम लोग। दूसरा, हम लोग कमर का एक्सरसाइज कर सकते हैं। कमर का एक्सरसाइज में हम लोग क्या करते हैं, बैठे बैठे ही हम लोग पैरों को, दोनों पैरों को खींचना है, फिर छोड़ना है, पैरों को खींचना है आगे की ओर, फिर छोड़ना है। तो इसे पैर से, कमर से लेकर आपके पैर तक का जो पेन होगा वो आपको दूर होगा। फिर सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे हमें बैठे बैठे भी हम लोग काम भी करते रहे और वो एक्सरसाइज भी हो सकता है
1: जी। और ये कितने कितने अंतराल पर किया जाए?

0: आप
1: क्योंकि लगातार हम काम करते हैं और आजकल हमारे युवा साथी पर काम का बहुत ज़्यादा बोझ है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो या फिर अन्य कोई भी गतिविधियाँ हो करते हैं, तो बैठे बैठे कितने अंतरालों पर हम थोड़ा सा ब्रेक दे दें।
0: आपको लगता है एक घंटा दो घंटा के बाद हमें लग रहा है कि एक दो घंटा में हमें थकान फील हो रही है, तो आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए इस तरह से बैठे बैठे
1: जी।
0: या फिर थोड़ा हाथों को सेक करें, हाथों को इस तरह झटके ऊपर ले जाए, नीचे लाए, ऊपर लाना है, नीचे लाना है, और इस तरह से पूरा इस तरह से इतना सेक सेक कर रहे हैं, झटकना है हाथों को कि आपकी अंगुली भी छूट जाए, इस तरह से करें
1: जी।
0: ठीक है, तो आपको देखना आपके बॉडी में काफ़ी एनर्जी फील होगा
1: जी। ये कार्य स्थल पर हम बैठे बैठे भी ये कार्य
0: कर सकते हैं हम लोग
1: जी। हाँ। हमें आराम मिलेगा,
0: आराम मिलेगा, और ये हर एक एक दो दो घंटा में भी आप कर सकते हैं। जिस तरह जैसे आपको थकान फील होता है आप वापस ये चालू कर सकते हैं
1: जी। हम जब प्रातः काल उठते हैं, शयन कक्ष से हम जागते हैं, तो हमें काम का ही टेंशन नजर आता है और फिर ये लगता है कि ये काम हमारा संपन्न हो जाए, तो इस दरमियान हम यदि कुछ योग क्रियाएं कर लेते हैं, थोड़े से समय निकाल सकते हैं, तो कितना समय कम से कम हम निकाल लें, कम समय में भी हम कौन कौन से ऐसी योगा कर लें प्रातःकाल, ताकि बाकी जो दिन है वो बढ़िया बीते, खुशनुमा बीते।
0: हमारे पास हम लोग बोलते हैं कि समय नहीं है, पर जब लोग सुबह उठते हैं ना तो मोबाइल देखते हैं सर, और मोबाइल जब देखते हैं तो हमारा घंटों निकल जाता है, हमें पता नहीं चलता है।
1: यदि फिर कहते हैं समय नहीं है
0: तो हमें क्या करना चाहिए, उस एक घंटा को हमें यूटिलाइज करना चाहिए। सुबह उठते हैं अपना भगवान को याद करते ही हैं, सबको याद करना भी चाहिए, याद करके आप थोड़ा फ्रेश हो जाइए, जो वॉशरूम जाना है वो नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए, आपको उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यदि अभी सुबह में ये कार्य कर लेते हैं तो उठने से पहले उठ लिए, पानी वानी पिए, गर्म पानी पीना चाहिए, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह में चाय के जगह में आप गर्म पानी पिए, फिर आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, जैसे ताड़ासन, वो आपको पेट साफ करने बहुत सहयोगी है, सहयोग करता है ताड़ासन, तो वो आप करते हैं तो आपका देखिए अभी का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। तीन जगह अब जैसे आप कैसे बताऊँ मैं एक बार कि आप हाथों को लॉक कर ले, अपने दोनों पांचों अंगुलियों से लॉक कर ले और हाथों को ऊपर ले जाए और अपने एड़ी को भी ऊपर उठा ले,
1: दोनों पैरों की एड़ियों को
0: ऊपर उठा ले, फिर नीचे लाएं हाथों को, फिर नीचे लाएं, फिर ऊपर ले जाए, फिर नीचे लाएं, इस तरह से आप करें, इस तरह से आप करते हैं और आप जाइए वो टॉयलेट जाइए, आपके लिए ये बहुत रामबाण योगा है, ये आपका तुरंत आपका पेट क्लियर होगा इससे सर। दूसरा उसके बाद आप थोड़ा प्राणायाम कर ले, थोड़ा ध्यान कर ले, एक्सरसाइज में जैसे सूर्य नमस्कार सब बेस्ट एक्सरसाइज होता है, सूर्य नमस्कार में सारी एक्सरसाइज आ जाते हैं। वो करने के बाद थोड़ा प्राणायाम, जैसे प्राणायाम में आपका भस्त्रिका प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम हुआ, वो कर लेते हैं। अभी सबको पता है ये सब, मुझे लगता है इसके दिन लोगों को, तो ये आप करने के बाद आप थोड़ा ध्यान करिए, 10 मिनट का, सिर्फ 10 मिनट का ध्यान करिए, तो आपको इतना बेनिफिट होगा, आप फुल डे एनर्जेटिक फील करेंगे। ये जैसे हमें थकान फील होती है तो वो आप अच्छा फील करेंगे, वो थकान फील नहीं करेंगे, आप सुबह से शाम बहुत अच्छे से एनर्जेटिक रहेंगे। तो ये ज़रूरी है हमारे लाइफ में, एक्सरसाइज तो ज़रूरी है ही, उसके साथ में प्राणायाम और ध्यान जोड़ते हैं तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसमें टाइम सिर्फ आधा घंटा लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो सिर्फ आधा घंटा, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है सर।
1: जो समय आप प्रातःकाल मोबाइल देखने में आप खराब कर देते हैं, उस समय का सदुपयोग आप योगा में कर सकते हैं, और आधे घंटे आप सिर्फ योगा में दें, कम से कम आधा घंटा आप देते हैं, ताड़ासन करते हैं और भी जो आप अन्य क्रियाएं बता रहे हैं वो करते हैं, तो पूरे समय आप ऊर्जावान रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, मन खुश रहेगा और आपको काम में भी दिलचस्पी आएगी। आजकल की भागम भाग वाली जिंदगी में खासकर हमारे युवा साथी को क्या कहेंगे कि सिर्फ काम पर ही फोकस ना करें, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, समय निकालिए, समय के बहाना मत बनाइए, समय निकालने से निकल जाता है, तो योगा कीजिए और खुश रहिए, क्या कहेंगे?
0: योगा करने से हमें क्या होता है वो एक बेनिफिट बताती हूँ। सिर्फ काम काम से हमारा मन पूरा थक जाता है, योग से हमारा क्या होता है, हमारे वर्तमान क्षण में जीने का कला सिखाती है योगा। दूसरा है हमारे मन और श्वास का एक गहरा संबंध होता है। जैसे हमारा हमेशा क्या होता है, हमारा मन पास्ट और फ्यूचर में फंसा हुआ रहता है, या तो हमारा मन कभी पास्ट के बारे में चिंता करती रहती है, सोचती रहती है, और दूसरा है फ्यूचर के बारे में चिंता करते रहती क्या होगा क्या होगा। यदि आप योग करते हो तो आपको हमेशा ये प्रेजेंट मोमेंट में आपको रहोगे योग करने से। और दूसरा है कि हमारा श्वास और मन एक गहरा संबंध है, ये करने से तनाव से दूर होते हैं, क्रोध और चिंता कम होती है। इससे कि योग एक व्यायाम नहीं है, ये हमारा मन और श्वास और शारीरिक तीनों को जोड़ता है, और इससे हमारा मन की चिंता जो होती है वो दूर होती है, और हमारा मन शांत होता है, तो हम इस मन शांत मन से हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं।
1: दोस्तों, यदि योग को आप एक संस्कार के रूप में अपनाते हैं तो फिर आप चुस्त और दुरुस्त रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे और पूरा दिन आपका बढ़िया बीतेगा। और दोस्तों, यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा और हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे, और तभी हमारा देश तरक्की का नया सोपान तय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद योग प्रशिक्षिका सरोज कुमारी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और कम समय में योग किस प्रकार करें, कौन कौन सी योग क्रियाएं अपने कार्यस्थल पर करें, इस पर आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आज का दिन आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो। कल फिर एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।
2: दोस्तों, आज के तनावपूर्ण जीवन में योग अपनाना समय की आवश्यकता बन गया है। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय योग और ध्यान के लिए निकालें तो हम तनाव मुक्त, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने सुना श्रीमती सरोज कुमारी जी को, और इनसे वार्तालाप कर रहे थे श्री संजीव कुमार लाल। तो मित्रों, बातें और विशेष चर्चाएं का सिलसिला आगे और भी चलते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों अभी आपने सुना एक सदाबहार गीत जो अपने समय काफ़ी लोकप्रिय हुआ करता था और हर युवाओं की जुबान पर यही गीत रहती थी। यह गीत फिल्म एक दूजे के लिए से था और इसे गाई थी लता मंगेशकर और एसबी बाला सुब्रमण्यम ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह गीत आपको खूब पसंद आया होगा। दोस्तों एक बेहतरीन गीत के बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक बार फिर एक खास विषय पर चर्चा करते हैं, बच्चों को बचत की आदत डालें। दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय पर बातें करेंगे जो बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रख सकता है। विषय है बच्चों को बचत की आदत डालें। मित्रों कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यही बात बचत पर भी पूरी तरह लागू होती है। बचत केवल पैसा जमा करना नहीं है बल्कि यह अनुशासन, धैर्य, दूरदर्शिता और जिम्मेदारी का पाठ भी सिखाती है। यदि बचपन से ही बच्चे में बचत की आदत विकसित कर दी जाए तो वह बड़े होकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, जिम्मेदार और समझदार नागरिक बनते हैं। आज का समय उपभोक्तावाद का समय है। बाजार में हर दिन नए नए खिलौने, मोबाइल, कपड़े और आकर्षक वस्तुओं का बच्चों को लुभाती है। ऐसे माहौल में यदि बच्चों को यह नहीं सिखाया गया कि हर इच्छा को तुरंत पूरा करना आवश्यक नहीं है तो उसमें अनावश्यक खर्च करने की आदत विकसित हो सकती है। इसलिए माता पिता और शिक्षकों का दायित्व है कि बच्चों को बचत का महत्व समय रहते ही समझाएं। साथियों बचत की शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है। बच्चों को गुल्लक देकर उसमें रोज या सप्ताह में थोड़ी थोड़ी राशि डालने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। जब बच्चे अपनी बचत से कोई किताब, खेल सामग्री या अपनी पसंद की उपयोग की वस्तु खरीदते हैं तो उन्हें आत्मविश्वास और संतोष दोनों प्राप्त होते हैं। इसमें उन्हें यह भी समझ में आता है कि मेहनत और धैर्य का फल मीठा होता है। बचत केवल पैसों तक सीमित नहीं है, बच्चों को समय, पानी, बिजली, भोजन और अन्य संसाधन

साधनों की बचत का महत्व भी सिखाना चाहिए। जो बच्चा आज पानी की एक एक बूंद का मूल्य समझता है वह भविष्य में प्रकृति और समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनता है। भोजन की बर्बादी रोकना, अनावश्यक बिजली का बंद करना और समय का सही उपयोग करना भी बचत का ही एक रूप है। माता पिता स्वयं बच्चों के लिए सबसे बड़े आदर्श होते हैं। यदि घर के बड़े लोग सोच समझ कर खर्च करेंगे, अनावश्यक दिखावे से दूर बचेंगे और नियमित बचत करेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। केवल उपदेश देना से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से बच्चों को प्रेरित करना अधिक प्रभावी होता है। मित्रों, विद्यालयों की भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि स्कूलों में वित्तीय साक्षरता, बचत और जिम्मेदारी खर्च का जानकारी दी जाए तो बच्चे छोटी उम्र में ही धन का सही उपयोग करना सीख सकते हैं। विभिन्न प्रतियोगिताओं, गतिविधियों और कहानियों के माध्यम से भी बचत का संदेश सरलता से बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है। बचत का अर्थ कंजूसी नहीं है, इसका मतलब है आवश्यकता और इच्छा के अंतर समझना, सोच समझ कर खर्च करना और भविष्य के लिए कुछ सुरक्षित पैसा बचा कर रखना। संतुलित जीवन जीने का यह एक कला बच्चों को जीवन भर लाभ पहुंचाती है। प्रिय श्रोताओं, बच्चों को बचत की आदत सिखाना उन्हें केवल पैसा बचाना नहीं बल्कि जिम्मेदारी, आत्मसंयम, धैर्य और भविष्य की योजना बनाना भी सिखाता है। आज की छोटी छोटी बचतें ही कल उनके बड़े सपनों को पूरा करने में सहायता बनती है। आइए हम सभी मिलकर अपने बच्चों को बचत का संस्कार दें ताकि वो आर्थिक रूप से सशक्त, जिम्मेदार और सफल नागरिक बन सके। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा साप्ताहिकी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज की प्रस्तुतियाँ, बातें और गीत संगीत का यह कार्यक्रम आपको खूब पसंद आया होगा। तो मित्रों, अब दीजिए अनुमति अपने मित्र युवराज को और फिर से होगी मुलाकात अगले सप्ताह नए विषयों, नई जानकारियों और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे और मुस्कुराते रहे। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल्याणी। सूत्रधार थे युवराज। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। अगला कार्यक्रम जो हाल रांची लेकर आएंगे हम बस थोड़ी ही देर में।
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही श्रोताओं, आप हमारा ये कार्यक्रम सुन पा रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर भी। दिन के 10:30 हुए हैं और इस वक्त आप सब बेसब्री से इंतजार करते हैं कार्यक्रम जोहार रांची का। तो लीजिए, जोहार रांची के साथ मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त कार्यक्रम की होस्ट राजश्री,
0: और मैं हूँ आपके साथ सुनीता।

0: तो जोहार रांची कार्यक्रम लेकर मैं हूं आपके साथ राजश्री, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: और मैं हूं सुनीता, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जोहार।
0: और सुनीता, आपको भी मेरा प्यार भरा, बहुत ही प्यार भरा नमस्कार है।
1: राजश्री, आपको भी मेरा बहुत ही बहुत ज्यादा वाला प्यार भरा नमस्कार। जोहार आपको।
0: चलो चलो, लगता है बहुत
1: सुन रहे होंगे ना, बोल रहे होंगे क्या बात है, नमस्कार खत्म ही नहीं हो रहा
0: है। नहीं, श्रोताओं को बता दें कि आज बहुत अच्छे मूड में हमारी जो सुनीता है वो दिखाई दे रही है।
1: आप भी
0: चलिए। तो फिर जब मूड अच्छा होता है तो फिर हम इस कार्यक्रम की शुरुआत भी कुछ ऐसे लाइन से करते हैं या ऐसे संदेश के साथ करते हैं जो हमें मोटिवेट करे। तो आज हम क्या कहने वाले हैं?
1: आज हम क्यों ना बातें कर ले कि हौसलों की उड़ान से ही मंजिलें आसान होती है, तूफानों से लड़ने वालों की ही अलग पहचान होती है, जो गिरकर हर बार संभल जाए असल जीत उसी इंसान की होती है।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही अच्छी पंक्तियों के साथ आपने शुरू किया है। तो श्रोताओं, ये बात बिल्कुल सही है कि जीवन में सफलता केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि अटूट हौसले, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास से मिलती है। और जब हौसले बुलंद होते हैं तो फिर कठिन से कठिन राह भी आसान लगने लगती है।
1: बिल्कुल सही।
0: और आज का ये अवसर उसी अदम्य साहस, आत्मविश्वास और प्रेरणा का उत्सव है जो हमें हर चुनौती से आगे बढ़ना सिखा रहा है। तो बातें तो बहुत सारी हमने कर ली है।
1: बिल्कुल।
0: एक ऐसे ही एक ऐसा ही मोटिवेशनल सॉन्ग है जो मेरे अभी दिल जहन
1: में आया,
0: जहन में आया है।
1: बिल्कुल, मैं समझ
0: गई थी। चलो अब हम भी सुनते हैं और अपने श्रोताओं को भी सुनाते हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: तो चलिए, हम हैं आपके साथ में और आज कुछ बातें ऐसे करेंगी कि भाई हवा में आज कुछ रवानी सी दिखाई दे रही है ना
2: सुनीता? मुझे आप और जा रही है, सब पता है मुझे।
1: और बादलों की भी अपनी एक कहानी नजर आ रही है। लेकिन सुनीता, मौसम चाहे जैसा भी हो, या हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं, आपसे भी यही बातें करनी है कि मौसम चाहे जैसा भी हो, हर नई सुबह हमें साथ जो लाती है वो एक नई जिंदगानी दे जाती है, और इसे हमें बिल्कुल धूप और छांव की तरह जैसे हम जिंदगी अपनी गुजारते हैं, तो उसी में हमारे जीवन की जो खूबसूरती है वो नजर आती है। तो आप इशारा तो समझ गई होगी,
2: बिल्कुल समझ गई कि मौसम की बातें आप कर रहे हैं। तो मौसम की बात जब हो ही रही है तो हम अपने श्रोताओं को बता दें कि राज्य में आज हल्की बारिश होगी और कल से मॉनसून सक्रिय रहेगा।
1: हाँ बिल्कुल, और हल्की हल्की जो बारिश है वो तो अभी तो लगातार हो ही रही है। बारिश के बीच ही हम अभी आए हैं आपसे बातें करने के लिए भी, लेकिन फिर भी बता दें कि रांची समेत राज्य में आंशिक बादल छाए रहेंगे और साथ साथ कहीं कहीं हल्की बारिश भी होगी या हो रही है, ये कह सकते हैं। शनिवार से राज्य में फिर मानसून सक्रिय होना, ऐसा मौसम विभाग से सूचना मिली है हमें, और 2 दिन पूरे राज्य में वर्षा होगी। और राज्य में आज से लेकर जो आंशिक बादल जो छाए रहेंगे, हल्की बारिश होगी और कल से बादल कुछ और घना हो जाएगा। सुनीता, अधिकांश भागों में बारिश होगी और इस दौरान कहीं कहीं भी वज्रपात होने की भी संभावना है।
2: हाँ, आपने जैसे बताया ना कि आज से मौसम सक्रिय हो गया है, तो सुबह जब मैं आ रही थी ना तो उस समय भी बारिश हो रही थी और रांची में 1 से 10 मिलीमीटर तक बारिश हुई है और पड़ोसी राज्य में भी बारिश हो रही है और राज्य में 37 और राज्य में 15%, लेकिन बारिश कम भी हुई है। इस बार अल नीनो का प्रभाव है तो थोड़ी बारिश कम भी होगी, लेकिन आज से मानसून सक्रिय है तो जब भी बाहर निकले तो बारिश से बचने के पूरे सावधानी के साथ निकले। और फिलहाल मौसम की बात हो रही हो तो
1: मौसम की बात हो रही है, सावधानी की बात आपने कर ही दी है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना ये जो मौसम है काफी रोमांटिक सा,
2: बिल्कुल बिल्कुल हाँ, समझ
1: सुहाना रोमांटिक, इसको जैसे भी हम कहें, बिल्कुल आशिकाना।

0: राजश्री, मौसम आशिकाना है, बिल्कुल सही बात है। और इस मौसम में हम बातें कर रहे हैं बहुत सारी, तो आज के दिन पे भी एक नजर डालना जरूरी है, क्योंकि इतिहास के पन्नों को अगर हम ना जाने तो फिर आने वाला समय हमारे लिए मुश्किल होगा। क्यों?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पिछले जो भी बातें होती हैं, जो भी घटनाक्रम होते हैं, उनसे हमें सीख लेना है और आगे के लिए जो है वो बिल्कुल आसान हो हमारा रास्ता।
0: इतिहास हमें ये सिखाता है ना कि अगर कुछ अच्छा हुआ है तो उसमें कुछ और अच्छा कर सकते हैं, और अगर कुछ गलत हुआ है तो उससे हमें बचने की जरूरत होती
1: है। बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो शुरुआत करते हैं आज के दिन की घटनाओं से। तो 11 जुलाई की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि आज ही के दिन 1922 में हॉलीवुड बाउल की शुरुआत हुई थी, और साथ ही 1979 में आज ही के दिन अमेरिकी अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्काईलैब विखंडित होकर ऑस्ट्रिया के पश्चिमी तट के समीप समुद्र में गिरी थी।
1: बिल्कुल। और आज ही के दिन यानी 11 जुलाई 2002 में चांग शांग दक्षिण कोरिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। 2003 में आज ही के दिन लाहौर में दोस्ती बस और दिल्ली से सदाई सरहद बस का परिचालन हुआ था।
0: और आज ही के दिन 2004 में HIV एड्स पर एशियाई मंत्रियों का सम्मेलन बैंकॉक में हुआ था। मुंबई उपनगरीय में 7 रेल बम विस्फोट आज ही के दिन हुए थे। और

0: 2007 में चर्चित चित्रकार एम एफ हुसैन ने न्यूयॉर्क की कला प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था।
1: और 2008 में पाकिस्तान के वजीरिस्तान प्रांत में हुए एक अमेरिकी हवाई हमले में 11 लोग घायल हो गए थे आज ही के दिन। और सुनीता, अगर हम बात करते हैं आज के दिन जन्मे व्यक्तियों की,
0: बिल्कुल, जिन्होंने आज इस धरती पर जन्म लिया उनके बारे में भी जानना जरूरी है। और आज ही के दिन यानी 11 जुलाई 1956 को अमिताभ घोष अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार थे, उनका जन्म हुआ था। पी वी आर नेदुन चेजियन 3 बार तमिलनाडु के राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे, उनका जन्म भी आज के दिन 1920 में हुआ था।
1: और आज ही के दिन सरदार बलदेव सिंह भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और प्रथम रक्षा मंत्री थे, उनका भी जन्म 11 जुलाई को 1902 में हुआ था। 1899 में सी एस वेंकटाचार्य, जो कि राजस्थान के भूतपूर्व दूसरे मुख्यमंत्री थे, उनका जन्म हुआ था। और 1857 में सी शंकरन नायर भारतीय न्यायाधीश और राजनेता थे।
0: और आज बात कर लेते हैं उनकी जो आज हमारे बीच नहीं रहे, यानी 11 जुलाई को जिनका निधन हुआ था। तो सबसे पहले हम बताएं अपने श्रोताओं को कि 11 जुलाई 1957 को आगा खान तृतीय शियाओं के निजारे इस्माइली मत के आध्यात्मिक नेता थे, उनका निधन हुआ था। और 2011 में सेकेंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक थे, उनका भी निधन हुआ था।
1: और 11 जुलाई 1957 में आगा खान तृतीय शियाओं के जो निजारी इस्माइली मत के आध्यात्मिक नेता थे, उनका निधन हुआ था। और 1912 में 11 जुलाई को ही फर्डिनांड मोनेयर, प्रसिद्ध फ्रांसीसी नेत्र रोग विशेषज्ञ थे, उनका निधन हुआ था।
0: आज ही के दिन 2003 में भीष्म साहनी, जो भारतीय लेखक थे, उनका निधन हुआ था। और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, लेख लिखे, जो आज भी मील का पत्थर साबित होते हैं। तो इतनी सारी बातें हो गई हैं, और कितनी बातें आप करेंगी या अपने श्रोताओं को कुछ सुनाएंगी, बताएंगी?
1: बिल्कुल, अरे बातें तो बातें ही हैं, मतलब इतनी बातें हैं कि शायद समय भी कम पड़ जाएगा हमारा।
0: फिर गाना सुनाऊंगी,
1: और ऐसा गाना सुनाऊंगी जिससे ना सुनीता आपको भी कुछ इशारा मिलेगा, हमारे श्रोताओं को भी कुछ इशारा मिलेगा।
0: पता है मुझे, आप इशारे बहुत करती हैं और इशारों में इतनी बातें समझा जाती हैं कि श्रोता भी आप समझ गए कि रास्ते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंक तो चलता रहेगा।
1: तो 11 जुलाई को हम ये बताते चलें केवल कि हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं।
0: अब
1: हमारे बिल्कुल हमारे श्रोता समझदार हैं और समझ जाएंगे कि हमारा इशारा किस तरफ है। लेकिन फिलहाल एक बहुत ही बढ़िया सा गाना हम सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को।
0: पहले गाना सुनाते हैं।

0: राष्ट्रीय, आपने इशारा किया था कि हम बातें करेंगे जनसंख्या पे, तो आपको पता है कि हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है वैश्विक जनसंख्या संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
1: बिल्कुल।
0: और इस आयोजन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शासी परिषद द्वारा 1889 में की गई थी। यह 11 जुलाई 1987 को मनाए जाने वाले 5 अरब दिवस में लोगों की रुचि से प्रेरित था। जिस दिन विश्व की जनसंख्या लगभग 5 अरब तक पहुंच गई थी, विश्व जनसंख्या उद्देश्य दिवस का पता है इस दिन का उद्देश्य क्या है? परिवार नियोजन का महत्व, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानवाधिकार जैसे विभिन्न जनसंख्या संबंधी मुद्दों पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना। तो आप क्या कहेंगी?
1: बिल्कुल,
0: बहुत से आप कुछ देख रही
1: हैं। मैं क्या कहूंगी, मतलब मैं ये सोच रही थी कि मैंने जो ये अभी गाना बजाया था इशारों,
0: तो इशारा आप
1: बिल्कुल आप इशारा समझ गए हैं और हमारे श्रोता भी समझ गए हैं। तो अब जब इशारे समझ ही गए हैं तो एक और गाना सुनाते हैं इसी मौसम में।
0: इस पर कुछ तो बोल दीजिए, जनसंख्या दिवस पे जो इतनी भीड़ भाड़ बढ़ रही है उसमें थोड़ी तो कमी आनी चाहिए,
1: मतलब कि लोगों को सीख देना ही है।
0: हाँ, देना ही है, बिना दिए जा नहीं सकती आप।
1: बिल्कुल,
0: रेडियो हमारा काम ही यही करता है।
1: ये जागरूकता तो अब लोगों के अंदर आ ही गई है कि हमारा जो परिवार है वो बिल्कुल सीमित रहे, तो हर तरह से जो बच्चों का जो बच्चों की जो पढ़ाई है उनका विकास है, सर्वांगीण विकास जिसे हम कहते हैं, वो बिल्कुल अच्छी तरह से हो सकता है। कहीं भी जब हमारे समाज में आप देख रहे हैं, सब श्रोता हमारे समझ रहे हैं कि जो कुपोषण है या फिर बढ़ती जनसंख्या के कारण हर तरह से विपरीत असर पड़ रहा है, उसका जो असर हो रहा है उसे समझना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, और थोड़ी जनसंख्या पर नियंत्रण रहेगा ना तो सारी सुविधाएं सबको आराम से मिलेंगी। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि जो जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है उसमें आप भी सहभागी बनिए और अपने देश, समाज और विकास में योगदान।
1: बिल्कुल, और ये जो हम संकल्प लेते हैं दिवस बनाकर, ये सिर्फ एक दिवस तक ही सीमित नहीं रहे, इसे अपने जीवन में इसे आत्मसात करना होगा और इस पर बिल्कुल विचार करना होगा।
0: बिल्कुल, अभी विचार कुछ और भी कर लीजिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे विचार अभी कर रहे होंगे हमारे श्रोता, लेकिन थोड़ा मनोरंजन भी उनका करना जरूरी है।
0: बिल्कुल जरूरी है।

0: की ही बात हम कर रहे हैं सुनीता, तो कुछ खबरें अगर रांची की हैं जो हमें हमारे श्रोताओं को जानना जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है।
0: वैसी बातें भी बताना चाहिए,
1: तो बता दीजिए ना।
0: तो सबसे पहले तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार जो हम देने वाले हैं, बिजली की तो आप बिचौली जो है,
1: अरे ऐसे
0: ऐसे बिल्कुल मत हंसो भाई, बिजली विभाग
1: ये आप बिचौली है, कभी कभी मजबूरी हो जाती है,
0: मजबूरी
1: जब कड़कती है तो काटना भी जरूरी।
0: लेकिन ये बता दे कि राजधानी रांची में आज के दिन यानी 11 जुलाई को 11 केवी सिंह मोड फीडर में पेड़ों की डाली कटने का कार्य सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा और इस दौरान बिजली बंद रहेगी। इससे लटमार रोड है, हनुमान नगर, प्रेम नगर, विकास नगर, चोरिया टोली, न्यूज ऊर्जा नगर सहित आसपास का इलाका जो है वो प्रभावित रहेगा। दूसरी ओर शुक्रवार को शहर के कई इलाकों में दोपहर में बिजली आती जाती रही, जो हम अभी बातें कर ही रहे थे। हाँ बिल्कुल, जानकारी के अनुसार अपर बाजार के बड़े इलाके में दोपहर और शाम में बिजली कटने से परेशानी हुई है लोगों को, और वहीं अरगोड़ा इलाके में भी बिजली कटने की शिकायत लोगों ने की है, और ये शिकायत तो अभी हम भी कर ही रहे हैं।
1: लेकिन ये शिकायत कहीं कहीं पर जायज भी है,
0: जायज
1: कि अगर
0: भी है।
1: बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, वज्रपात, बिजली कड़क रही है, ऐसे में लाइट अगर रहे ऑन तो खतरा ज्यादा
0: खतरा होता है, और ऐसे में कई जो पेड़ होते हैं ना उनके गिरने की संभावना होती है, जो पुराने पेड़ है, सूखे पेड़ है, अच्छी बात है।
1: तार गिर
0: जाते, तो आज जो बिजली कटने की जो खबर हम बता रहे हैं ये उसका कारण वही है कि पेड़ों को काटा जा रहा है, जो जो खतरा जो पैदा कर सकते हैं
1: और आगे खतरनाक ना हो, इसलिए उनको काटना भी जरूरी है। चलिए अब रांची की बात कर रही है ना, तो एक अच्छी खबर हम श्रोताओं को दे, रांची में खुलेगा कला प्रशिक्षण संस्थान।
0: अच्छा,
1: भारत के गवैया संगठन ने कांके रोड स्थित कार्यालय में इंडियन लेगेसी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की घोषणा की है, जिसके संस्थापक जितेंद्र कुमार ने शुक्रवार को बताया कि पहले चरण में यहां भारतीय शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, वाद्य यंत्रों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद फिल्म निर्माण, फोटोग्राफी और अभिनय जैसी विधाएं शुरू होंगी। BHU के अनुभवी संगीतज्ञ अजय सिंह संस्थान के पहले फैकल्टी इंचार्ज बनाए गए हैं, तो ये अच्छी खबर है उनके लिए जो इन सब चीजों में रुचि रखते हैं और सीखना चाहते हैं, तो इस संस्थान से उन्हें बहुत फायदा मिलेगा। और एक बहुत अच्छी जानकारी,
0: बिल्कुल ये बहुत अच्छी जानकारी है और ये याद रखने वाली जानकारी है कि अब हमें नंबर जो है वो
1: याद नहीं रखने पड़ेगा।
0: क्या है, क्या नंबर है सुनीता बताइए।
1: देखिए ऐसा है ना कि पहले हम बहुत सारे नंबर याद रखते थे, जैसे कि पुलिस के लिए
0: अलग अलग अलग अलग,
1: अग्निशमन के लिए 101, फिर 108, 104, बहुत सारे ऐसे नंबर थे जो हमें याद रखने पड़ते थे। लेकिन अब सरकार ने ऐसी सुविधा दे दी है, झारखंड में संचालित विभिन्न आपातकालीन हेल्पलाइन के लिए अब अलग अलग नंबरों को याद रखने की जरूरत नहीं है। पता है कौन सा नंबर है, बताइए जल्दी हमारे श्रोताओं को, फटाफट याद भी कर लीजिए।
0: नंबर है 112।
1: अरे बहुत ही सिंपल सा नंबर है, 112
0: 112 नंबर को बस हमें याद रखना है। और पुलिस हेल्पलाइन तो
1: हमने बताया,
0: और बिल्कुल आपने सारा नंबर बता दिया है,
1: सब एक ही नंबर है 112।
0: बिल्कुल, और कुछ से संबंधित कुछ जानकारी आप देना चाहते हैं क्या?
1: बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन सभी हेल्पलाइन सेवाओं के एकीकरण और प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए पुलिस महानिरीक्षक प्रोविजन झारखंड रांची को नोडल पदाधिकारी नामित किए जाने की अनुशंसा की गई है। और सबसे अच्छी बात है ना कि इतने सारे नंबर जब हम याद नहीं रख पाएंगे तो एक नंबर 112 बिल्कुल याद रहेगा, और ये सभी हेल्पलाइन के लिए है, इसको याद रखिए और जब भी जरूरत पड़े इस नंबर पर कॉल करके उससे संबंधित जो भी आपकी शिकायत है, जो भी जरूरत है उसको आप बता सकते
0: हैं। तो फिर से एक बार हम सभी को, सभी श्रोताओं को याद दिला देते हैं कि सभी प्रमुख हेल्पलाइन के लिए झारखंड में अब एकीकृत नंबर पर ही आपको सुविधा मिलने जा रही है,
1: और
0: वो नंबर है
1: 112।
0: तो बिल्कुल इसे याद रखना है और अपना बना लेना है।
1: और अभी फिलहाल अपने श्रोताओं को अपना बनाइए, उन्हें गाना सुनवाइए, उन्हें इंतजार है गाने का।
0: हाँ हाँ,

0: और जब हम बातें कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, तो एक जानकारी हम अपने श्रोताओं को और देना चाहेंगे कि अब जन गण मन से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। तो हम अपने श्रोताओं को बताएं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जन गण मन के गायन एवं वादन से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को उनका कड़ाई से पालन करने और सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही कहा गया है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के सही स्वरूप, गरिमा और निर्धारित प्रोटोकॉल के प्रति व्यापक जन जागरूकता बढ़ाई जाए और इसके लिए कुछ अवसर भी तय किए हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब कुछ ये बताना जरूरी है कि ये सब इसलिए तय किए गए हैं ताकि हर किसी के अंदर, खास करके जो हमारी जो नई पीढ़ी है, उसके अंदर देशभक्ति की भावना जो है वो कूट कूट कर भर जाए और हम देश के लिए हमेशा अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार रहें। यही इसका जो मकसद है और इसमें इसके लिए बहुत सारे अवसर तय किए गए हैं, वो धीरे धीरे हम सब अभी जान जाएंगे और इसका पालन भी हम सभी करेंगे।
0: बिल्कुल। और वैसे भी जब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत बजता है ना, तो अपने अंदर जो अजीब सा भाव आता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रभक्ति की भावना है,
0: गर्व महसूस होता है। तो फिलहाल बातें कर रहे हैं देशभक्ति की, तो एक गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा देते हैं।

0: बिल्कुल, एक जान है एक प्राण है और हम सभी अपने अपने देश के लिए बिल्कुल निछावर रहेंगे। तो ऐसे
1: देखते
0: ही
1: देखते कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया, इसके बाद एक स्पेशल प्रोग्राम आ गया हमारे पास। तो आज के इस कार्यक्रम से सुनीता
0: और राजश्री को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार,
0: जोहार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार रांची। अब आइए आपको सुनवाते हैं पासपोर्ट सेवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम पर एक रेडियो रिपोर्ट। संकलन एवं वाचन है हिमांशु शेखर का, प्रस्तुति है प्रभु शरण की।

0: आकाशवाणी रांची है, प्रस्तुत है 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस पर बाह्य ध्वनांकन पर आधारित एक रेडियो रिपोर्ट। विदेश मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय रांची के द्वारा 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर जयपवन कैंपस दोरंडा रांची के शौर्य सभागार में एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और सभी गणमान्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। अपने स्वागत भाषण में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी मिस मनीता के ने कहा,
1: इट इज माई प्रिविलेज टू वेलकम यू ऑल टू दिस ब्यूटीफुल आफ्टरनून वेयर वी आर कमेमोरेटिंग द 14th पासपोर्ट सेवा दिवस। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू अनाउंस दैट दिस पासपोर्ट सेवा दिवस इज स्पेशल इन इट्स ओन बिकॉज दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस रांची दैट दिस डे इज बींग सेलिब्रेटेड जॉइंटली विद आवर स्टेक होल्डर्स झारखंड पुलिस एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट झारखंड सरकार। अंडर द गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रीजनल पासपोर्ट ऑफिस रांची इज स्ट्राइविंग टू मेक पासपोर्ट सर्विसेज मोर एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड एफिशियंट। Today, citizens across the state have access to passport services through our Passport Seva Kendra Ranchi and 15 post office Passport Seva Kendra which cover all the 16 Lok Sabha constituency. During the year 2025, RPO Ranchi delivered more than 1,25,000 passports to citizens across the state. While the expanding network does help people to have access to passport services at their doorstep, but it is not possible without the support that we get from our partners, especially the Police Department and the Department of Post. Timely police verification by Jharkhand Police, it has been instrumental in ensuring timely and efficient passport services. It is worth mentioning that since the launch of the Digital Passport Seva Project in 2012, Ministry of External Affairs has transmitted more than 18 crore rupees to Jharkhand Police as passport police verification fee. And I hope this amount will go towards digitalization of the police department. To further strengthen this partnership, between 2003 and 2025, RPO Ranchi organized 9 training workshops in which more than 2,900 police personnel were trained. They were trained on various aspects of police passport-related verification, the use of M-Passport Police App, document scrutiny, and the latest passport-related process. I would also like to mention that as of today, out of 488 police stations which are mentioned on our Passport Seva portal, 437 are digitally integrated with our Passport Seva project, and out of that, 307 police stations are using the M-Passport Police App. Thus, this is advancing the vision of Digital India by bringing transparency and speed in police-related passport verification. I would like to take this opportunity to express my sincere appreciation and gratitude to Jharkhand Police for their unwavering support, close coordination, and commitment to strengthen our service delivery. Equally significant has been the contribution of Department of Post through the extensive network of 15 post office passport seva kendras. Till date, we have delivered more than 374,000 passport applications and 11,800 police clearance certificate. As a matter of fact, when the post office passport seva kendra was started in the year 2018, only 551 applications were processed through the POPSK network, while in 2025, 85,169 applications were processed through the POPSK network. To further enhance this quality, RPO Ranchi keeps organizing training for the DOP officials. Till date, we have organized 13 training programs covering 90 officials who have been trained in passport application processing. So the success of this entire Passport Seva project and with the launch of Passport Seva Project 2.0 in the year 2025, the spirit of collaborative governance could be seen, because none of this would have been possible without the support we get from these two departments.
0: इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद झारखंड पुलिस की महानिदेशक श्रीमती तदाशा मिश्रा ने अपने उद्गार व्यक्त किए।
2: नॉर्मली वी जस्ट गो टू द पासपोर्ट ऑफिस रिक्वेस्ट फॉर अ पासपोर्ट बट देयर इज सो मच ऑफ नेटिग्रिटी इन्वॉल्वड इंक्लूडिंग द पोस्टल डिपार्टमेंट वी वर अवेयर ऑफ द पुलिस वेरिफिकेशन साइट बट देयर इज सो मच ऑफ अदर फैक्टर्स इन्वॉल्वड इट इज ओनली आफ्टर आई केम अक्रॉस मनीता दैट आई केम टू नो एंड आई एम हैप्पी दैट आई time knowing all this today, the tremendous contributions that different departments have put into the Passport Seva Karyakram, in which so much of service is being done to ordinary citizens. Passport is just not a document for travel, it has become a part of our identity. And given the cyber security situation, we really need to be very, very careful when it comes to police verification and giving a passport to someone. It is a very vital document for our identification as well as a great security document. So I'm happy to be a part of all this, and I wish a great future to all this event.
0: वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल झारखंड सर्किल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल श्री संजीव रंजन ने कहा,
3: नो विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंडिया पोस्ट एंड एमईए द पासपोर्ट एक्सेसिबिलिटी हैज बीन प्रूवन इमेंसली एंड इट इज बीइंग नाउ एक्सेस्ड बाय एवरी सिटीजन. इट इज ओपन टू एवरी सिटीजन. इंडिया पोस्ट is trying its level best not only to serve the citizens in passport making but also propagating the idea of oneness. I once again thanks the RPO to organize such program, and I would also request her to launch retraining program for the staff so that very dexterously our staff can provide this citizen-centric service which is very much needed in our country.
0: समारोह में ICCR क्षेत्रीय केंद्र पटना के सहयोग से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें पद्मश्री मुकुंद नायक एवं उनकी टीम ने अपनी प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को जीवंत बनाए रखा. जन जागरूकता के लिए पासपोर्ट पर आधारित गीत भी प्रस्तुत किए गए.

0: दौरान पद्मश्री मुकुंद नायक ने अपने विचार साझा किए।
1: ऐसा है कि पासपोर्ट का हमारे देश में हम झारखंड भारतवासियों के लिए बहुत बड़ा महत्व है। मुझे लगता है कि गांव घर में तो चल जाएगा, लेकिन जो ही अपना सरजमी से बाहर का सपना आप संजोते हैं अपने दिल दिमाग में, तो उसके लिए पासपोर्ट जरूरी है। और एक समय था जब हम लोग को इसकी जरूरत पड़ी, उस समय यहाँ पासपोर्ट ऑफिस नहीं था
0: जी।
1: उस समय हमने पासपोर्ट पहले हम पटना से बनवाए थे, ये 1988 की बात है। और बहुत खुशी की बात है कि 2002 में यहाँ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस रांची में खुल गया है। और अभी 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस जो मनाया गया, इसमें बहुत सारी बातें, नई बातें जानने को मिली कि बहुत सारी सुविधाएं अभी यहाँ बहाल हो गई है। आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन पैसा जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन पूछताछ का साक्षात्कार भी दे सकते हैं और ऑनलाइन इंस्पेक्शन भी हो सकता है और आपको सुलभ होगा। मैंने बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत सुविधाजनक आज हो गया है। इसलिए मैं विदेश सेवा विभाग को, यहाँ के पासपोर्ट पदाधिकारियों को, स्टाफ्स को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।
0: कार्यक्रम में पधारे आईजी स्पेशल ब्रांच श्री प्रभात कुमार ने हमसे बातचीत में कहा,
2: सबसे पहले तो 14वें पासपोर्ट दिवस पे आरपीओ को और आरपीओ की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इधर हाल के दिनों में अगर आप देखें तो झारखंड राज्य बनने के पश्चात पिछले 4 सालों में जो प्रगति पुलिस वेरिफिकेशन में और इंटायर पासपोर्ट बनाने के प्रोसीजर्स में हुई है वो ऐतिहासिक है। और अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो पिछले 3 साल में रिकॉर्ड वेरिफिकेशन हुए हैं पुलिस के द्वारा, और पूरी टीम जो इसमें लगी हुई है वो सभी लोग अपने अथक प्रयास से बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया है उन्होंने। पर अभी भी हम अगर पैन इंडिया बात करें तो देश में और अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिए हम प्रयासरत हैं। उसमें कुछ चीजें हैं जिसपे हम लोगों को काम करना है, हमारे इक्विपमेंट्स धीरे धीरे और नए लेने की आवश्यकता है, उसके लिए हम आगे प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो नए टेक्निक्स आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं नए, उसके लिए हम लोग लगातार ट्रेनिंग भी दिलवा रहे हैं और

0: प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इंटायर पुलिस फोर्स जो इस काम में लगा है, जो वेरिफिकेशन करता है, वो 100% ट्रेन हो जाए। उससे न सिर्फ इसमें समय भी बचेगा आने वाले दिनों में, और बल्कि साथ साथ जो पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया है वो और भी सुचारू रूप से हो।
1: पूर्व की तुलना में आज के डिजिटल युग में आम नागरिकों को इस प्रक्रिया में कितनी फायदा हो रही है,
0: ये तो आंकड़े ही बता रहे हैं। हम लोग जो काम पहले महीनों में करते थे वो हम अब दिनों में करते हैं, और 7 दिनों का हमारा टारगेट है जो, और उसमें झारखंड पुलिस ने बहुत ही शानदार काम किया है, और इसका गवाह है ये पूरा प्रोसेस। जब हम लिमिटेड टाइम पीरियड में, जो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है, उसमें जब हम कोई काम करके देते हैं तो उस काम करने का हम लोगों को रिवॉर्ड भी मिलता है, और पिछले 3 साल में झारखंड पुलिस को इतना रिवॉर्ड मिला है जितना पिछले 10 साल में भी नहीं मिला।
1: इस मौके पर हमसे बातचीत करते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी मिस मनीता के ने अपनी बातों को रखा।
2: पासपोर्ट सेवा दिवस हर वर्ष 24 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष भी 14वां पासपोर्ट दिवस 24 जून को मनाया गया। उसी के उपलक्ष्य में ये छोटी सी सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हमने ICCR पटना की मदद से किया। इसका मेन एम जो गोल था वो ये था कि हमारे जो पार्टनर है यहाँ पर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट झारखंड सर्कल और झारखंड पुलिस, उनके साथ हम पासपोर्ट सेवा दिवस को मना सके और झारखंड में पासपोर्ट सेवाओं को और भी बेहतर बनाने की कोशिश कर सके।
1: आम नागरिकों को आज के समय में डिजिटल युग में पासपोर्ट की सेवा सर्व सुलभ हो, इस दिशा में क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, अब तक क्या कुछ हासिल हुआ है?
2: देखिए, पासपोर्ट ही एक ऐसा सेवा है जो पूरी तरह ऑनलाइन है। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं, फी भी ऑनलाइन पे करते हैं, अपॉइंटमेंट भी खुद से ऑनलाइन लेते हैं। आपको बस निर्धारित दिन और समय पे हमारे सेंटर आना पड़ता है। इसको और भी सरल बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने डीजी इंडिया डीजी लॉकर का इस्तेमाल शुरू करवा दिया है। जब आप आवेदन भरते हैं, अगर आप हमें डिजी लॉकर एक्सेस देंगे तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर हमारे सेंटर पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दिन पर दिन हम पासपोर्ट सेवा को और भी सरल बनाते जा रहे हैं।
1: अंत में धन्यवाद ज्ञापन क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के सीनियर सुपरिटेंडेंट सुधीर कुमार ने दिया।
3: क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से मुख्य अतिथि महोदया, हमारे तहे दिल से मुख्य अतिथि महोदया, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। समय जिन्होंने अपना आप समय में दिया, महोदया आपकी प्रेरक उपस्थिति और त्वरित पुलिस वेरिफिकेशन पुलिस का सुनिश्चित करने में सहयोग, राज्य पुलिस का निरंतर हर व्यक्त सहयोग रहा है। आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मास्टर जनरल आदरणीय और डाक पोस्ट मास्टर जनरल सर का टीम का, और डाक जिन्होंने पूरी पोस्ट टीम का, पासपोर्ट जिन्होंने केंद्रों के माध्यम से, पासपोर्ट सेवा केंद्रों के माध्यम से सेवाओं के विस्तार में, पासपोर्ट सेवाओं के विस्तार में मुख्य भूमिका अवसर पर निभाई। मैं धन्यवाद आज के इस अवसर पर मैं धन्यवाद सर ब्रांच व्यक्त करता हूँ श्री स्पेशल ब्रांच के आईजी जिन्होंने प्रभात कुमार सर का सत्य, जिन्होंने कार्य को पासपोर्ट नई सत्यापन के कार्य को एक नई दिशा दी। क्षेत्रीय पासपोर्ट आभार व्यक्त करता अधिकारी, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय अधिकारी साहब को और निर्देशन के मार्गदर्शन सेवा के निर्देशन में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र और उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। दूर दराज इस पहल के कारण पासपोर्ट सेवा क्षेत्रों में पासपोर्ट सेवा का विस्तार संभव हुआ है। धन्यवाद हमारी पूरी धन्यवाद टीम को, हमारी पूरी सांस्कृतिक टीम को श्री एवं मुकुंद नायक पदम श्री जी को, जिन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुति की शाम को से आज जीवंत बनाया, की शाम को धन्यवाद जीवंत बनाया। उपस्थित साथी धन्यवाद, सभी उपस्थित अतिथियों के, सभी गणमान्य जगत के अतिथियों, मीडिया जगत के प्रतिभागियों साथियों जिन्होंने और सभी प्रतिभागियों का सफल जिन्होंने
1: इस कार्यक्रम को सम्पन्न हुआ 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस पर हुआ। बाह्य ध्वनांकन पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट, संकलन एवं वाचन ये हिमांशु शेखर, प्रस्तुति प्रभु शरण।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पासपोर्ट सेवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम पर रेडियो रिपोर्ट। संकलन एवं वाचन था हिमांशु शेखर का और प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी पसंद। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी दोस्त, कार्यक्रम की होस्ट राजश्री। पहली पसंद

आप सबकी। आप सब हैं इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम नूरजहां, वलीउल्लाह नूरजहां। इसी गाने को सुनना चाहते हैं राजनांद गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से इसी गाने की फरमाइश भेजी है रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी ने। आप सब सुनना चाहते हैं ये गाना जिसे गाया है किशोर कुमार ने, संगीत एसडी बर्मन का है और इसे कलमबद्ध किया है साहिर ने। तो लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद का ये प्यारा सा नगमा।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

अॼु समुझे।

ठीक के हैं।

इस गाने को हमने लिया था फिल्म काला पानी से। आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की। संगीत एस डी बर्मन का था और इसे लिखा था मजरूह ने। इस गीत को पसंद किया था आप सब श्रोताओं ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक, इसी नगमे को पसंद किया था। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं आप सबकी फरमाइश पर। आप हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर राही, सरिता गवाड़कर, सिद्धांत गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर। आकार हाइट्स बहादुरा नगर से इसी नगमे को सुनना चाहते हैं शैलेश गवाड़कर, वैशाली गवाड़कर, श्वेत सुमित गवाड़कर और कुमारी ध्वनि गवाड़कर परी। तो आप सब सुनना चाहते हैं ये प्यारा सा नगमा जिसे हमने लिया है फिल्म प्रेम पुजारी से। आवाज किशोर कुमार की है और इस संगीत दिया है एस डी बर्मन ने और इसे लिखा है नीरज ने। तो लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद का ये नगमा।

आप सभी श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। अगला गाना है आप सबकी पसंद पर। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख और चांदनी नाज। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म निकाह का ये प्यारा सा नगमा, जिसे गाया है सलमा आगा ने, संगीत रवि का है और इसे लिखा है हसन कमाल ने। तो लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद का ये नगमा।

देश प्रदेश का गाना भी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, और इस गाने को पसंद किया था कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, साथ ही दुबिहा निवेदा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। तो इसी गाने के साथ आपकी पसंद कार्यक्रम यही सम्पन्न होता है। दीजिए इजाजत अपनी दोस्त कार्यक्रम की होस्ट राजश्री को। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दिन के 12 बज रहे हैं और इस वक्त आप सब इंतजार करते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

नया दिन नई रोशनी नया विश्वास हो, नया दिन नई रोशनी नया विश्वास हो, हर कदम पर खुशियाँ आपके साथ हो। नमस्कार सखियो, मुस्कुराइए क्योंकि हंसी हमारे जीवन की सबसे अच्छी दवा है और आपके मनोरंजन की सबसे अच्छी दवा है आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, जिसे लेकर हाजिर है आपकी रेडियो सखी सुभाषिनी। तो बहनों, समय है गृहलक्ष्मी कार्यक्रम का और साथ ही बरसात का भी। बरसात से कहीं आप ये तो नहीं समझ रही कि अब बातें होंगी बरसाती बीमारियों की, मच्छरों से बचाव की, बरसात में सावधानियां, रख रखाव। नहीं नहीं, हम इन सारी बातों पर चर्चा बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। आज हम चलेंगे एक ऐसे सफर में जहां बरसात तो होगी लेकिन बरसात की परेशानियां नहीं। बहनों, बारिश महज एक मौसम की घटना नहीं है बल्कि यह भावनाओं को जगाने का अनूठा तरीका है। आसमान से गिरता पानी सिर्फ बूंद नहीं है बहनों, बल्कि कुदरत की लिखी एक खूबसूरत नज्म है जिसकी हर बूंद में छिपा है एक नया

छत पर टप टप की आवाज, खिड़की पर बूंदों की लकीरें। बहनों, आपने नोटिस किया होगा, जब बरसात की बूंदें धरती पर गिरने लगती हैं, तो पूरा शहर एकदम धीमा हो जाता है, ट्रैफिक कम हो जाता है, काम थम जाता है और टेंशन छूमंतर हो जाता है। प्रकृति का रिचार्ज बटन अगर कोई है तो वो है बरसात, जो सूखा था उसे हरा कर देता है और जो थका था उसे ठंडक देता है। मानो या ना मानो बहनों, बरसात के आते ही सब शायर बन जाते हैं। आखिर बरसात का मौसम है ही ऐसा। तभी तो मशहूर शायर गुलजार साहब ने लिखा है, आपसे इतनी सी गुजारिश है, आपसे इतनी सी गुजारिश है, आइए भींग ले की बारिश है। हमने कब आपसे कहा मिलिए, हमने कब आपसे कहा मिलिए, सिर्फ मौसम की ये सिफारिश है।

बहनों, आसमान में जब बादल छाते हैं तो सिर्फ पानी नहीं बरसता, किसी की उम्मीदें भी बरसती हैं। उनके लिए बरसात किसी उत्सव से कम नहीं। हमारे लिए बारिश का मतलब शायद कड़क चाय और पकौड़े हो सकते हैं, लेकिन देश के अन्नदाता के लिए बरसात उसकी साल भर की मेहनत, घर परिवार की जरूरतें और खुशहाली का फैसला भी करती हैं। वह इंसान और कोई नहीं, हमारे देश के किसान हैं, जिनके पैर फटी हुई जमीन पर हैं, लेकिन उनकी उम्मीदें बादलों पर टिकी हैं। फिर मुझे गुलजार साहब की वो पंक्तियां याद आ रही हैं बहनों, जिसमें एक किसान के जीवन की झलक मिलती है। छत टपकती है उस कच्चे घर की, छत टपकती है उस कच्चे घर की, वो किसान फिर भी बारिश की दुआ करता है।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी बहनों का स्वागत है। तो बहनों, बरसात के बारे में हमने बहुत सारी बातें की, बारिश में भीगने की भी बातें हुई। तो लेकिन बहनों, बरसात में ज्यादा भीगना तो सही नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। तो उसके लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना होगा, तो उसी के लिए हम लेकर आए हैं कुछ घरेलू नुस्खे। बरसात के मौसम में बढ़ी हुई नमी और तापमान में बदलाव इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है। तो संक्रमण से बचाव के लिए कुछ घरेलू नुस्खे हम आपसे साझा कर रहे हैं। जैसे कि बहुत ही कॉमन है हल्दी वाला दूध, जिसे गोल्डन मिल्क के नाम से भी जाना जाता है। मॉनसून की बीमारियों के लिए ये एक शक्तिशाली उपाय है। एक कप गर्म पानी हल्दी वाला दूध पीने से गले की खराश को शांत करने में मदद मिलती है और इससे सूजन भी कम होती है। आप इसे गरम गरम दूध के साथ भी ले सकती हैं, लेकिन बहनों अगर कच्चा हल्दी हो तो वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसी तरह मुलेठी भी बरसात के मौसम में सर्दी के लिए बेहतरीन घरेलू उपाय है। इसी प्रकार लहसुन एक शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीबायोटिक है, जो मानसून की विभिन्न बीमारियों को रोकने और उसका इलाज करने में मदद करता है। तो लहसुन को आप या तो कच्चा या फिर सब्जियों में शामिल कर सकती हैं। बरसात में डेंगू मलेरिया का भी बड़ा ही खतरा रहता है बहनों। पपीते के पत्ते का अर्क जो होता है वो ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ाने और डेंगू बुखार के इलाज के लिए एक प्रसिद्ध उपाय है। इसी तरह तुलसी, जो कि हमारे हर घर में पाई जाती है, ये अपने औषधीय गुणों से भरपूर होती है और साथ ही पूजनीय भी है। बरसात के मौसम में घरेलू उपचार के लिए इसका प्रमुख स्थान है बहनों। आप इसे बिल्कुल पत्ते भी आप इसके चबा सकते हैं या इसकी चाय बना सकते हैं। इसके पत्तों में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और

0: एंटी फंगल गुण होते हैं और ये श्वसन में संक्रमण के इलाज के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी प्रसिद्ध है बहनों। तो बहनों ये बहुत सारे इसके अलावा और भी हमारे जो रसोई में बहुत सारे चीज़ें हैं जिसका आप सेवन करके आप घरेलू जो उपचार है वो कर सकती हैं बहनों। और बस आप जैसे बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम के अनुसार अपना खान पान रखें और ये ज़रूरी है कि जिस तरह जब मौसम बदलता है ना तभी बीमारियां या संक्रमण हमें परेशान करते हैं, तो उस समय थोड़ी सावधानी बरतें, अपने खान पान का ध्यान रखें और जितने भी आप ज़रूरी काम है जैसे कि बरसात का मौसम है तो जब भी बरसात में आप बाहर निकलें तो अपने साथ रेनकोट या छतरी अपने साथ जरूर रखें और ये जरूर कोशिश करें कि पानी में बिल्कुल भी ना भीगे। और जब आप गर्मी का मौसम आता है तो उस समय भी हम आपको यही बताते हैं कि इसी तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, तो आए दिन हम आपके लिए ऐसे ही घरेलू नुस्खे लेकर आते हैं। तो अब बहनों इस जानकारी के साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव पांडे की। आपके सखी सुभाषिनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: गृहलक्ष्मी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम में 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही आप हमारा ये कार्यक्रम सुन पा रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर भी। इस समय आपके लिए लेकर आए हैं हम शैक्षिक प्रसारण। आइए सुनते हैं शैक्षिक प्रसारण।

0: प्रस्तुत है शैक्षिक प्रसारण। इसके अंतर्गत सुनेंगे वार्ता प्राकृतिक आपदाएं और उनका प्रबंधन। वार्ताकार हैं जया मिश्रा।
1: प्राकृतिक आपदाएं और उनका प्रबंधन। प्राकृतिक आपदा को समझने से पहले यह समझना होगा कि आपदा क्या होती है। आपदा वह अचानक घटित होने वाली गंभीर घटना होती है जिसके कारण मनुष्य के जीवन, संपत्ति, पशु पक्षियों तथा पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। आपदा के समय सामान्य जीवन पूर्णतया अस्त व्यस्त हो जाता है और लोगों को भोजन, पानी, आवास, कपड़े तथा चिकित्सकीय सहायता की अत्यधिक आवश्यकता होती है। भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन, आग लगना और महामारी जैसी घटनाएं प्रमुख आपदाएं हैं। आपदाएं दो प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक आपदा व मानव निर्मित आपदा। प्रकृति के कारण होने वाली ऐसी घटनाएं जो जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं, प्राकृतिक आपदा कहलाती है। प्राकृतिक आपदा का मुख्य कारण होता है पृथ्वी की आंतरिक हलचल, मौसम में असंतुलन, प्राकृतिक परिवर्तन। उदाहरण के तौर पर भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि प्रकृति द्वारा उत्पन्न विनाशकारी घटना प्राकृतिक आपदा कहलाती है। वहीं मनुष्य की लापरवाही, गलती या तकनीकी असफलताओं के कारण उत्पन्न आपदा को मानव निर्मित आपदा कहते हैं, जैसे रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, बम विस्फोट, रासायनिक व नाभिकीय आपदाएं। आपदा चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, इनसे न केवल भौतिक क्षति अर्थात मकान, सड़क, पुल, फसल, वाहन आदि को नुकसान पहुंचता है, बल्कि मानसिक व सामाजिक प्रभाव भी लंबे समय तक बना रहता है। अब हम समझेंगे प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार और उनके प्रबंधन के विषय में। प्रबंधन का अर्थ होता है किसी काम या समस्या को सही तरीके से संभालना, योजना बनाना और उसे ठीक से पूरा करना। भूकंप, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, आकाशीय बिजली गिरना, ये सब प्राकृतिक आपदा के प्रकार हैं। भूकंप पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण आता है। जब धरती की प्लेटें आपस में टकराती हैं या खिसकती हैं, तब भूमि कांपने लगती है। भूकंप के झटके बिना किसी अग्रिम चेतावनी के आते हैं और इनसे इमारतें गिर जाती हैं, सड़कें टूट जाती हैं और कई बार जान माल की भारी क्षति होती है। भूकंप के समय झुककर किसी मेज के नीचे जाकर अपने सिर को ढक लेना चाहिए। लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खुले स्थान में जाना चाहिए और अगर गाड़ी में है तो गाड़ी रोककर झटके समाप्त होने तक अंदर ही रहना चाहिए। भूकंप रोधी भवनों का निर्माण करना चाहिए। तो दूसरा है बाढ़, प्राकृतिक आपदा। अत्यधिक वर्षा, नदी का जल स्तर बढ़ना या बांध टूटने से किसी क्षेत्र में अस्थायी रूप से पानी की मात्रा बढ़ जाने को बाढ़ कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य जीवन प्रभावित होता है। बाढ़ से बचने के लिए ऊंचे स्थानों पर शरण लेना चाहिए, आपदा किट तैयार रखना चाहिए और संपर्क में बने रहने के लिए मोबाइल चार्ज रखना चाहिए। मवेशियों व पशुओं को सुरक्षित स्थलों पर ले जाना चाहिए। जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखना चाहिए। सरकारी चेतावनियों का पालन करना चाहिए। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक सामान्य से कम वर्षा होती है और पानी की उपलब्धता बहुत कम हो जाती है, तब इस स्थिति को सूखा पड़ना कहते हैं। इसके कारण नदियां, तालाब और कुएं सूखने लगते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं और लोगों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। सूखा कई कारणों से पड़ सकता है। मुख्यतः मानसून का समय पर ना आना सूखे का मुख्य कारण है। पेड़ों की कटाई से वर्षा प्रभावित होती है, क्योंकि वनों की कटाई से बादल बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ता तापमान भी सूखे को बढ़ावा देता है। भूजल का अत्यधिक दोहन अर्थात भूमिगत जल का आवश्यकता से अधिक प्रयोग करना स्थिति को गंभीर बना देता है। सूखे से बचाव के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं। नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत नदियों से नहरें निकालकर गांवों और खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है। इससे किसानों को फसल सिंचाई के लिए पानी मिलता है। सरकार गांवों में छोटे जलाशय, तालाब और कुएं बनवाती है जिसमें बारिश का पानी जमा होता है। यह पानी न केवल सूखे के समय काम आता है बल्कि इससे भूजल स्तर भी बढ़ता है। सरकार आधुनिक सिंचाई तरीकों को भी बढ़ावा देती है। टपक सिंचाई और छिड़काव सिंचाई से कम पानी में खेतों की सिंचाई होती है। टपक सिंचाई में पानी सीधे पौधों की जड़ों तक धीरे धीरे बूंदों के रूप में पहुंचाया जाता है जिससे पानी की बचत होती है। कुछ परिस्थितियों में वैज्ञानिक तरीके से कृत्रिम वर्षा भी करवाई जाती है जिससे पानी की कमी कुछ हद तक पूरी हो सके। सूखे इलाकों में सरकार पानी बचाने, पानी बढ़ाने और जमीन की उर्वरता बढ़ाने के उपाय करती है जैसे पेड़ लगाना, मिट्टी सुधारना ताकि खेती अच्छी हो सके और किसानों को ज्यादा उपज मिले। किसानों की सहायता के लिए सरकार फसल बीमा योजनाएं चलाती है। यदि सूखे से फसल खराब हो जाती है तो किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है। तूफान, जब पृथ्वी के वायुमंडल में उत्तेजना की स्थिति उत्पन्न हो जाती है अर्थात हवा का दबाव, तापमान और नमी अचानक असंतुलित हो जाते हैं तब उसे तूफान कहते हैं। इस अवस्था में वायुमंडल अशांत हो जाता है जिसके फलस्वरूप तेज हवाएं चलती हैं, बिजली कड़कती है, जोरदार बारिश होती है और कभी कभी ओले भी गिरते हैं। तेज हवाओं के कारण पेड़, मकान और बिजली के खंभे गिर सकते हैं। परिणाम स्वरूप जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और जान माल की हानि होती है। तूफान के समय मौसम विभाग की चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए।

0: बच्चों और पालतू पशु जानवरों को सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। खिड़की, दरवाजे और बिजली के उपकरण बंद कर देना चाहिए। पेड़ों, बिजली के खंभों के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। रेडियो, टीवी या मोबाइल के माध्यम से सरकारी निर्देशों और नई सूचनाओं पर लगातार ध्यान देना चाहिए। भूस्खलन, जब ढलान या पहाड़ वाली जगह से मिट्टी, पत्थर और चट्टाने अचानक नीचे की ओर खिसक जाती हैं, तो उसे भूस्खलन कहते हैं। यह अधिकतर तेज बारिश, भूकंप, वनों की कटाई और सड़क या खनन कार्यों के कारण होता है। भूस्खलन के समय किसी भी तरह की असामान्य आवाज, जैसे पत्थरों के गिरने या मिट्टी के खिसकने की आवाज सुनाई दे, तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। ढलान और पहाड़ियों के पास खड़े नहीं रहना चाहिए। प्रशासन द्वारा दी गई चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बादल फटना, जब किसी छोटे क्षेत्र में बहुत कम समय में बहुत तेज बारिश होती है, तो उसे बादल फटना कहते हैं। जब ज्यादा नमी वाले बादल एक जगह रुक जाते हैं, तब उनमें पानी अचानक नीचे गिर जाता है। इसमें थोड़ी देर में ही बहुत अधिक पानी गिरता है। जून 2013 में केदारनाथ और 2021 में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना हुई थी। इस आपदा में हजारों लोगों की जान गई थी। यह घटना भारत की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक मानी जाती है। यह आपदा पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत खतरनाक होती है। इससे बचाव के लिए मौसम की चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए और सुरक्षित स्थान पर जाना जरूरी होता है। चक्रवात और सुनामी। चक्रवात एक तेज घूमने वाला समुद्री तूफान होता है। जब समुद्र की सतह बहुत गर्म हो जाती है और हवा का दबाव कम हो जाता है, तब यह तूफान आता है। सुनामी समुद्र में होने वाली बहुत ऊंची और तेज लहरें होती हैं। यह समुद्र के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी फटने या भूस्खलन से पैदा होती है। चक्रवात में बहुत तेज हवा और बारिश होती है, जिससे बाढ़ आ सकती है। तेज हवा से पेड़, खंभे, बिजली और फोन लाइनें टूट जाती हैं। सुनामी में समुद्र के किनारे के घर, नाव और जहाज बह जाते हैं। लहरें 30 मीटर तक ऊंची हो सकती हैं। सुनामी से पूरा गांव या शहर नष्ट हो सकता है। चक्रवात और सुनामी के समय समुद्र से दूर रहना चाहिए। सरकार की चेतावनी को ध्यान में रखना चाहिए। सुरक्षित जगह या राहत शिविर में जाना चाहिए। मोबाइल चार्ज रखना चाहिए और रेडियो से खबरें सुनते रहना चाहिए। तो ये सब हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं और जिसमें हमें क्या क्या करना है, यह था। अब आपदा के समय क्या प्रबंधन होना चाहिए, उस पर बात करते हैं। आपदा के समय होने वाले नुकसान व लोगों की मदद करने के लिए जो योजनाबद्ध काम किए जाते हैं, उन्हें आपदा प्रबंधन कहते हैं। इसमें सरकार और गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर लोगों की सहायता करती हैं। आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया में आपदा से पहले तैयारी, आपदा के समय त्वरित सहायता, आपदा से प्रभावित लोगों की मदद, नष्ट हुई संपत्ति का पुनर्निर्माण और आपदा के खतरे की रोकथाम शामिल है। आपदा के समय लोग अकेले संकट से नहीं निपट सकते, इसलिए सही योजना, समय पर मदद और पुनर्निर्माण के लिए आपदा प्रबंधन बहुत जरूरी है। आपदा प्रबंधन के मुख्य काम हैं: आपदा प्रभावित क्षेत्र में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना, घायल लोगों के इलाज की सही व्यवस्था करना, पीड़ित लोगों के लिए भोजन, पानी और अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था करना, आपदा से बेघर हुए लोगों, गांवों और बस्तियों को दोबारा बसाने में मदद करना। कुछ आपदाएं जैसे बाढ़ और तूफान का अनुमान पहले ही लगाया जा सकता है, इसलिए ऐसी स्थिति में पहले से तैयारी करना जरूरी है। सही तैयारी से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सकता है और नुकसान को कम किया जा सकता है। आपदा से निपटने के लिए जरूरी कागजात जरूरी सामान और आपातकालीन किट पहले से तैयार रखना चाहिए। अफवाहों से बचना चाहिए। केवल सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा रेडियो, टीवी और घोषणाओं से मिलने वाली जानकारी का पालन करना चाहिए। संपर्क में बने रहने के लिए मोबाइल चार्ज रखना चाहिए। अधिकारियों से सहायता पाने के लिए उनका फोन नंबर अपने पास रखना चाहिए और आपात स्थिति में परिवार से बिछड़ जाने पर मिलने की जगह पहले से तय कर लेना चाहिए। सही तैयारी से आपदा के समय जान मान की रक्षा की जा सकती है। भारत सरकार ने आपदाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का गठन किया है। राज्य और जिला स्तर पर भी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यरत हैं। सरकार द्वारा समय समय पर चेतावनी प्रणाली, मौसम पूर्वानुमान, राहत शिविरों की व्यवस्था, भोजन और चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है। सेना, पुलिस, होमगार्ड, NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस और स्वयंसेवी संस्थाएं आपदा के समय लोगों की मदद करती हैं। प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्निर्माण की योजनाएं भी सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन का एक कठोर सत्य है, इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन सही योजना, जन जागरूकता और सरकारी आपदा प्रबंधन द्वारा इनसे होने वाली क्षति को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
1: शैक्षिक प्रसारण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता प्राकृतिक आपदाएं और उनका प्रबंधन। वार्ताकार थी जया मिश्रा, प्रस्तुति नूतन प्रसाद की थी और प्रस्तुति सहयोग था अवधेश कुमार का।

अभी आप सुन रहे थे शैक्षिक प्रसारण। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त कार्यक्रम की होस्ट राजश्री। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं फिल्म साहब बीबी और गुलाम का ये प्यारा सा नगमा, जिसे गाया है गीता दत्त ने और संगीत है हेमंत कुमार का, लिखा है शकील बदायूनी ने। लीजिए सुनिए।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को सुन रहे थे अभी आप फिल्म कश्मीर की कली में। संगीतकार थे ओपी नैयर और गीतकार एसएच बिहारी। अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है प्रोफेसर। संगीतकार शंकर जयकिशन और गीतकार हसरत जय।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इसी गीत के साथ अपने दोस्त कार्यक्रम की होस्ट राजश्री को दीजिए इजाजत। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: सुरक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
1: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में भी श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरि को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि INS महेंद्रगिरि में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है और इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
3: INS महेंद्रगिरि में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। तमाम चीजें INS महेंद्रगिरि को महेंद्रगिरि पर्वत

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान प्रभावी तरीके से जारी। 14 जुलाई को बीएलओ और चुनाव पाठशाला की दूसरी समीक्षा बैठक। मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने पर जोर। कोयला मंत्रालय ने खोली कमर्शियल कोल ब्लॉकों की नीलामी के नए चरण की बोलियां। 23 में से 8 ब्लॉकों के लिए 16 कंपनियों ने लगाई 21 बोलियां। नई दिल्ली कंसल्टेंट्स को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर निशाना। कहा, राज्य में खराब कानून व्यवस्था के कारण निवेश की संभावना नहीं के बराबर। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में 14 और 15 जुलाई को तेज बारिश का अनुमान। मौसम केंद्र ने जारी किया येलो अलर्ट। और रांची के जिम्नास्ट पृथ्वी देव भट्टाचार्य ने दिल्ली में जीता स्वर्ण। चोट के बावजूद ऑल इंडिया जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में झारखंड का नाम किया रोशन। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 के तहत 14 जुलाई को बीएलओ बीएलए2 और चुनाव पाठशाला की दूसरी बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार इस बैठक का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और त्रुटिहीन बनाना है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभियान के तहत सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूटे नहीं और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम इसमें न जुड़ सके। कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और पुराने चरणों के दूसरे प्रयास की बोलियां खोल दी है। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए कुल 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। इस प्रक्रिया में उद्योग जगत की मजबूत भागीदारी दर्शाते हुए 16 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य में मौजूदा खराब कानून व्यवस्था के कारण यहां निवेश आने की संभावना नहीं के बराबर है।
1: कि राज्य में जो कानून व्यवस्था है वो काफी खराब है। आए दिन आप देखते होंगे कि अपहरण हो रहा है, चोरी, डकैती, हत्या, पूरे झारखंड में स्थिति है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार के वातावरण में भय का माहौल हो तो फिर वहां कोई इन्वेस्ट करेगा, इसकी हमें संभावनाएं बहुत कम दिख रहा है।
0: राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सरकारी वाहन लौटाने और मुख्यमंत्री से किसी भी तरह की नाराजगी की अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। रांची में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार या मुख्यमंत्री से उन्हें कोई गला सिकवा नहीं है। श्री किशोर ने कहा कि उन्होंने किसी विवाद के कारण नहीं बल्कि केवल व्यवस्था की मौजूदा खामियों पर सवाल उठाए हैं।
2: सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है, मुख्यमंत्री जी से कोई गिला शिकवा नहीं। ये व्यवस्था पर कि राज्य का पुलिस महानिदेशक वित्त मंत्री के पद का जवाब 2.5 महीना तक ना दे, ये सवाल उस पर है। राज्य वित्त विभाग का संयुक्त सचिव अगर कोई पत्र लिख दे मंत्री को, ये सर्विस रूल में कहीं नहीं है अधिकार उनको प्राप्त। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए मैंने ये कदम उठाया।
0: रामगढ़ में डाक विभाग रक्षाबंधन के अवसर पर मात्र 70 रुपए में देश के किसी कोने में हस्तनिर्मित राखी भेजने के लिए विशेष स्पीड पोस्ट अभियान चला रहा है। इस विशेष शुल्क में 55 रुपए स्पीड पोस्ट चार्ज, 10 रुपए का वाटरप्रूफ लिफाफा और 5 रुपए प्रबंधन शुल्क शामिल है। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रविशंकर राय के अनुसार इस पहल का उद्देश्य बच्चों में रचनात्मक को बढ़ावा देना और डाक सेवाओं के प्रति जागरूकता फैलाना है। दुमका जिले के सभी गांवों को इस वर्ष दिसंबर तक ODF प्लस बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए छूटे हुए घरों में शौचालय, सोखपीट और नापेट का निर्माण तेजी से किया जाएगा। गांवों को पूरी तरह कचरा मुक्त बनाने के लिए हर घर से सूखा कचरा संग्रह और उसके वैज्ञानिक निष्पादन की व्यवस्था होगी। सरायकेला खरसावां जिले के चौका थाना क्षेत्र में GSSP PGT शिक्षक नियुक्ति पत्र दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए की घूस मांगते हुए एक आरक्षी को गिरफ्तार किया गया है। चंडील अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिव प्रकाश कुमार ने बताया कि आरोपी सुशील कुमार को ग्रामीणों ने रंगो हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने आरोपी के पास से शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 6 ब्लैंक चेक और एडमिट कार्ड बरामद कर मामला दर्ज कर लिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @DIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोडरमा के ग्रामीण क्षेत्रों के बाद अब शहरी इलाकों में भी हाथियों के प्रवेश से स्थानीय लोगों में भारी दहशत है। वन विभाग के DFO सौमित्र शुक्ल ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
3: एक क्विक रिस्पांस टीम और वनरक्षी सभी लोग लगातार हाथियों की मॉनिटरिंग करते हैं, हाथी को ट्रेस करके उसे सेफर इलाके में ले जाने का प्रयास। इसके लिए माइकिंग कराई जा रही, लोगों में अवेयरनेस भी करी जा रही। जहां भी हाथी होता है उसके अगल बगल के सभी गांवों को हम लोग डेली सूचित करते हैं वहां पर कि यहां पर हाथी का प्रेजेंस है और यहां पर अभी बाहर नहीं निकले या रात में या अकेले जंगलों में ना।
0: इधर स्थानीय विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने लगातार हो रही जंगलों की कटाई को इस समस्या का मुख्य कारण बताते हुए वन विभाग से सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की मांग की है। दुमका का विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ श्रावणी मेला महोत्सव 28 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसकी सुरक्षा के लिए 600 से अधिक CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। अनुमंडल पदाधिकारी कौशल किशोर ने बताया कि पूरा मेला क्षेत्र 24 घंटे नियंत्रण कक्ष की निगरानी में रहेगा। मंदिर परिसर, गर्भगृह, कांवरिया कतार और शिव गंगा जैसे प्रमुख स्थानों पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाएंगे। आज पूरे विश्व में जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बढ़ती आबादी की चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1990 से हर साल 11 जुलाई को यह दिवस नियमित रूप से मनाया जाता है। इस वर्ष का मुख्य विषय युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना रखा गया है। विश्व जनसंख्या दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में धनबाद के सदर अस्पताल में परिवार कल्याण मेले का शुभारंभ हुआ। मेले में नुक्कड़ नाटकों और पोस्टरों के माध्यम से लोगों को परिवार नियोजन अपनाने और बच्चों के बीच उचित अंतर रखने के प्रति जागरूक किया गया। सिविल सर्जन ने बताया कि यह अभियान आगामी 10 अगस्त तक जिले के विभिन्न प्रखंडों में जारी रहेगा।
4: अभी हमारा जो आंकड़ा है 2.1% हमारा कोविड बर्थ रेट, यानी प्रत्येक दंपति को 2 बच्चे, यानी हमारा आबादी 1.40 करोड़ है। ये अगर हम आंकड़ा को तय करते हैं तो हमारा स्टैग्नेंट रहेगा, लेकिन हमारा झारखंड का राष्ट्रीय बर्थ रेट है हमारा 1.9। हम अभी स्टैटिक बर्थ रेट पे अभी टिके हुए हैं, ये हमें मेंटेन रखना है।
0: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,300 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपये प्रति किलो है। राज्य में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही मौसम विभाग ने 11 से 15 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में व्यापक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि 14 और 15 जुलाई को कई जिलों में तेज और भारी वर्षा होने की संभावना है, जिससे राज्य में मानसून की कमी दूर होने की उम्मीद है।
5: 13 तारीख से रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी और कहीं कहीं पर भारी वर्षा की भी संभावना है 13-14। सबसे बेहतर स्थिति रांची डिस्ट्रिक्ट का ही है, -11% है, और सबसे डिफिशियंट रेनफॉल है जो चतरा डिस्ट्रिक्ट का है, जो करीब -78% है।
0: रांची के युवा जिम्नास्ट पृथ्वीदेव भट्टाचार्य ने दिल्ली में आयोजित 3rd ऑल इंडिया मंथन जिम्नास्टिक कप के इंडिविजुअल मेन यूथ वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। चोटिल होने के बावजूद उन्होंने कड़े संघर्ष से यह मुकाम हासिल किया है और अपनी सफलता का श्रेय कोच विकास कुमार गोप व मां श्वेता भट्टाचार्य को दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान प्रभावी तरीके से जारी। 14 जुलाई को BLO और चुनाव पाठशाला की दूसरी समीक्षा बैठक। मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने पर जोर। कोयला मंत्रालय ने खोली कमर्शियल कोल ब्लॉकों की नीलामी के नए चरण की बोलियां। 23 में से 8 ब्लॉकों के लिए 16 कंपनियों ने लगाई 21 बोलियां। नई दिल्ली कंसल्टेशन को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर निशाना। कहा, राज्य में खराब कानून व्यवस्था के कारण निवेश की संभावना नहीं के बराबर। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में 14 और 15 जुलाई को तेज बारिश का अनुमान। मौसम केंद्र ने जारी किया येलो अलर्ट और रांची के जिम्नास्ट पृथ्वीदेव भट्टाचार्य ने दिल्ली में जीता स्वर्ण। चोट के बावजूद ऑल इंडिया जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में झारखंड का नाम किया रोशन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं उपशास्त्रीय संगीत का अनुरंजनी। आज आपको सुनवा रहे हैं शोभा गुट्टू के स्वर में ठुमरी और दादरा।

अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। इसके अंतर्गत आपने आज सुनी ठुमरी और दादरा शोभा गुट्टू के स्वर में। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम बस अब से कुछ ही पलों में आपके लिए लेकर आते हैं।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में गजल, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे ये प्यारी सी गजल, इश्क में गैर थे मुझे यार ने रोने ना दिया। इसी गजल के साथ सुगम संगीत का हमारा ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार।

0: भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय बीच राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
2: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
2: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए UN सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
2: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था, वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
2: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन

0: तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
2: आईएनएस महेंद्र गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्र गिरी को महेंद्र गिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग मजबूत कर अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
3: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण

0: के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
1: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है। वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय में शामिल सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी। और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप NCR दिल्ली की बात करें, बाई इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
0: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रूपये से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए है। मानस प्रतिम शर्मा के साथ मोनिक चटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनकर क्रीज पर हैं। से पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम जय भारती।

जहां पहली पेशकश आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पूरब और पश्चिम से। आवाज महेंद्र कपूर की है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और इसे लिखा है इंदीवर ने।

Africa.

अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं फिल्म उपकार से। संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी और गीतकार हैं गुलशन बावरा। आवाजें हैं महेंद्र कपूर और साथियों की।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय भारती और अगली पेशकश आपके लिए फिल्म नाम से, आवाज पंकज उदास की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत आनंद बख्शी का।

0: इसी गाने के साथ जय भारती कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:55 हो चले हैं और इस वक्त आप सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम।

0: कम करकेट्टा। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 के तहत 14 जुलाई को बीएलओ बीएलओ 2 और चुनाव पाठशाला की दूसरी बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार इस बैठक का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और त्रुटिहीन करना है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभियान के तहत सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूटे नहीं और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम इसमें न जुड़ सके। कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और पुराने चरणों के दूसरे प्रयास की बोलियां खोल दी हैं। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए कुल 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। इस प्रक्रिया में उद्योग जगत की मजबूत भागीदारी दर्शाते हुए 16 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया है। आज पूरे विश्व में जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बढ़ती आबादी की चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1990 से हर साल 11 जुलाई को यह दिवस नियमित रूप से मनाया जाता है। इस वर्ष का मुख्य विषय युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना रखा गया है। विश्व जनसंख्या दिवस को लेकर आज राजधानी रांची समेत राज्यभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इधर गिरिडीह में जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से चेताडीह मातृत्व अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने लोगों से परिवार नियोजन को अपनाने की अपील की।
1: TFR देते हैं वो 2.12 होता है और झारखंड का 2.4 है। तो हमने अपील किया है अपने सहिया से, विकास से, सभी स्टेक होल्डर से, इस विषय के लोगों से बात करूं और परिवार नियोजन को अपनाते हुए जो देश है ताकि हमारा स्टेट में एक डेवलप्ड स्टेट में अपने को स्थापित।
0: दुमका जिले के मसानजोर स्थित झारखंड सरकार के सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में ठहरे 48 वर्षीय चिकित्सक डॉ. शशि दिनकर मिंज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आज सुबह उनका शव कमरे के बेड पर मिला। वह रांची के बरियातू के रहने वाले थे और वर्तमान में हजारीबाग सदर अस्पताल में पदस्थापित थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दुमका का विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ श्रावणी मेला महोत्सव 28 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसकी सुरक्षा के लिए 600 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अनुमंडल पदाधिकारी कौशल किशोर ने बताया कि पूरा मेला क्षेत्र 24 घंटे नियंत्रण कक्ष की निगरानी में रहेगा। मंदिर परिसर, गर्भगृह, कांवरिया कतार और शिवगंगा जैसे प्रमुख स्थानों पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए जाएंगे। पुरी में रथ यात्रा को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे ने विशेष रेल सेवाओं की घोषणा की है। रेलवे ने चक्रधरपुर मंडल से होकर गुजरने वाली 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इन विशेष ट्रेनों के चलने से झारखंड, ओडिशा तथा आसपास के क्षेत्रों के हजारों श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। धनबाद नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए नई रणनीति लागू की है। विशेष परिस्थितियों में तत्काल सफाई के लिए 75 सदस्यीय क्विक रेस्पॉन्स टीम बनाई गई है। नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने बताया कि पार्षदों की मांग और बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद प्रत्येक वार्ड में 13-13 सफाई कर्मियों की टीम बनाई गई है।
2: किसी वार्ड में एरिया ज्यादा रहता है, वहां पर सफाई सही से नहीं हो पाती, तो ऐसे केसेस को हम लोगों ने क्विक रिस्पांस टीम से साफ सफाई कराने का निर्णय लिया गया है। ये जो क्विक रिस्पांस टीम होगी, ये हमारे जो संबंधित सिटी मैनेजर और सहायक नगर आयुक्त हैं उस संबंधित अंचल के, वो डिमांड के अनुसार पर जहां जहां आवश्यकता होगी वहां वहां उसकी वाटी टीम को भेजेंगे और त्वरित साफ सफाई करवाने की कार्रवाई करेंगे।
0: राज्य में मॉनसून के सक्रिय होने के साथ ही मौसम विभाग ने 11 से 15 जुलाई के बीच अधिकांश हिस्सों में व्यापक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 14 और 15 जुलाई को राज्य में भारी बारिश की संभावना है। एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 5 पदक अपने नाम किए हैं। मिक्स्ड रिले टीम ने देश को स्वर्ण पदक दिलाया, जबकि शिवाजी परशुराम ने 5000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। भरतप्रीत सिंह, विनोद सिंह और प्राची अंकुश देवकर ने कांस्य पदक हासिल किया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। अगला कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म संगीत का।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं ओडिशा से संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री महेंद्र कुमार मिश्रा के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही है स्मृति रेखा तारेनिया।
2: भारत सांस्कृतिक विरासत जितनी विविध और समृद्ध है उतनी ही जीवन भी, विशेष रूप से ओडिशा की लोक संस्कृति, उसकी लोकगीत, लोक कथा और परंपरा। इन्हीं परंपरा को अपनी लेखनी और समर्पण से नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले ओडिशा की गौरव श्री

0: नरेंद्र मिश्रा जी व विशेष रूप से आदिवासी मौखिक परंपरा, लोक कथा और गीतों के संरक्षण तथा मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें संबलपुरी लोक संगीत को न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा है। उन्हें उड़ीसा की सांस्कृतिक विरासत को नई आयाम दिया है। आइए उनसे बात करते हैं।
1: सर नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद
1: सर। आप नुआपड़ा जिले की सिनापली के मूल निवासी हो, तो आपके बचपन और प्रारंभिक जीवन के कौन से अनुभव ने आपको लोक संगीत और लोक साहित्य की ओर प्रेरित किया, इसके बारे में कुछ बताइए।
2: मेरा बचपन कालाहांडी का नुआपड़ा जिला है, वहाँ सिनापाली ब्लॉक में आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हम एक कोंद गांव में रहते थे और उसी समय हम आदिवासी नहीं थे, फिर भी हमने बचपन में अपने आदिवासी बच्चों के साथ खेलते हुए और प्रारंभिक स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में आदिवासी बच्चों के साथ पढ़ते हुए उनकी भाषा से हम बात करना शुरू किया था बोल के। और फिर प्रारंभिक जीवन में आदिवासी बच्चों का जो अपनी जो जीवन धरातल और संस्कृति और प्रकृति है उसके साथ मेरा जीवन का लगभग 15-16 साल बीता हाई स्कूल तक। तो क्लास 1 से क्लास 11 तक मैंने जो एक आदिवासी संस्कृति के अंदर अपना स्कूली शिक्षा संपूर्ण किया, उसी समय मेरे को दो चीज मिला। एक ही स्कूली शिक्षा हमारे ज्ञान को बढ़ाया और दूसरा है अनुभव की ज्ञान, जहाँ की आदिवासी का विवाह, नृत्य गीत, शादी ब्याह, पूजा परंपरा, देवी देवता, नृत्य गीत, नाटक, ये सब मेरे को बहुत श्रद्धा के साथ देखना मजा आता था बचपन में। और ये कल्चर मेरे लिए अपना कल्चर ऐसा लगा कि इसलिए मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिला, जो देखने को मिला, जो खेलने कूदने नाचने को मिला आदिवासी दोस्तों के साथ, वो मेरे आदिवासी लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक साहित्य की ओर प्रेरित किया। गोंड गांव में जब था हम लोग, उसी समय गोंड का परघनिया नाम का एक जाति होते हैं जो बहुत लंबे गीत गाते हैं, लोक काव्य गाते हैं, और वो जैसे चितल सिंह छत्री है, हीराकांत छत्री है, ऐसे काफी लंबे लंबे कथात्मक गीत गाते थे जिसको सुनकर हम कल्पना करते थे कि इनका गीत में क्या इतना बड़ा कहानी है किसी राजा का, गोंड राजा का, मध्य प्रदेश का, वो सब मैं सुनता था। और डांस और म्यूजिक बहुत चलता था, शादी ब्याह में हो या कुछ भी फेस्टिवल होता था, होली में होता था, दशहरा में होता था, और नुआखाई नाम का एक नया चावल देवी को समर्पण करने के बाद लोग उसी चावल को खाते थे, उसको नवारना बार नुआखाई कहते हैं, वो फेस्टिवल मैंने बहुत मनाया। तो ये सब मेरे को बहुत लुभावना किया। उसके साथ साथ उसी आदिवासी एरिया का जंगल, चिड़िया, जानवर, इनका जो एक मनुष्य के साथ सामीप्य है और जो संपर्क है, उसको मैं बड़ा गहराई से देख रहा था और उसी के कारण मैंने आदिवासी संस्कृति के तरफ मेरा रुझान बढ़ गया।
1: जी सर।
2: तो उसी चीज ही मेरा बचपन ही मेरे को आज इस लेवल तक पहुंचाने की काम किया है।
1: सर आपने जैसे बताया कि ओडिशा की मिट्टी, प्रकृति और लोक जीवन की सरलता हर कलाकार और लेखक को प्रभावित करता है। यहाँ की लोकगीत, लोक नृत्य, त्योहार और सामाजिक जो रीति रिवाज है हमारे, वो जन जीवन से गहरा रिश्ता रखता है। रथ यात्रा को, राज्य पर्व और नुआखाई जैसे पर्व सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि उड़ीसा के सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। तो सर ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उड़ीसा के लोक संस्कृति ने आपका रचनात्मक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया।
2: जीवन को दो भाग में आप देख सकते हैं। एक है कि 800-900 किलोमीटर का एक सामुद्रिक उड़ीसा का उपकल, जो कटक, पुरी, बालेश्वर, गंजाम का एक सामुद्रिक जीवन और समतल प्लेन लैंड है जहाँ खेती बाड़ी, धान की खेती कमाते हैं। और दूसरा है उड़ीसा का आहा जंगल है और पहाड़ पर्वत है जहाँ आदिवासी लोग जीवन बिताते हैं। मेरा जो परवरिश जो हुआ मेरे घर में वो उड़ीसा संस्कृति का था, क्योंकि मेरे पिताजी उड़ीसा से उड़िया भाषा जानते थे और उड़िया भाषा के अच्छे गीत गाते थे और कहानी बोलते थे, नाटक बोलते थे, नाटक करते थे। वो जो मेरे को जो परवरिश किया उड़िया संस्कृति का, और मेरे दोस्तों के साथ मैंने जो काम किया, घर में उड़िया संस्कृति है और वहाँ बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स लोगों के साथ, और जितना त्योहार पर्व देख के, ये दोनों संस्कृति को मैंने अपनी बचपना से ही समाहित किया था और दोनों संस्कृति को देखता था। घर में हमारा आदिवासी संस्कृति का कुछ भी ऐसा चाल चलन नहीं था, लेकिन घर की चाल चलन जो हिंदू संस्कृति का था और बाहर जो मैं आदिवासी संस्कृति को देखता था, उसका एक समीकरण मेरे चेतना में बैठ गया था और वो एक रचनात्मक रूप से इसलिए निकला कि वहाँ के जो नाच गाना होते हैं, कथा होते हैं, लोक काव्य होते हैं, गीत होते हैं, और उनका जो दैनंदिन जीवन और सांस्कृतिक जीवन, इनको जीने में मेरा एक अपना व्यक्तित्व बना। उसी कारण मैं जब उड़ीसा का आदिवासी क्षेत्र को देखा और आदिवासी क्षेत्र में जो भी मेरे को सीखने को मिला उसको मैं उड़िया संस्कृति में भी देखना शुरू कर दिया और देखा कि पंडित नीलकंठ दास ने कहा था कि उड़ीसा की भाषा आर्य है, उसका जो आचरण और उसका जो संस्कृति वो द्राविड है। तो मेरे को बहुत प्रभावित किया बाद में कि जब मैं उड़िया लिटरेचर को पढ़ने लगा कि उड़िया लिटरेचर में आदिवासी संस्कृति का बहुत प्रभाव है, उसका व्याकरण को, उसका साहित्य को और उसका जो नैरेटिव जो आख्यान को आदिवासी समाज उड़िया साहित्य को भी अच्छा प्रभावित किया है और उड़िया साहित्य भी आदिवासी अंचल में उड़ीसा का जो गीत है राधा कृष्ण के ऊपर, राम के ऊपर, शिव पार्वती के ऊपर, वो गीत को भी आदिवासी लोग बड़ा बहुत श्रद्धा के साथ जीते थे। इसका मतलब है कि भारत का जो बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिकता है उसी चीज को हम कालाहांडी में देखने को पा रहे थे। और जब आगे बढ़ा कि उड़िया लिटरेचर के ऊपर जब काम किया, उड़िया कल्चर के ऊपर जब मैंने काम किया, उसी समय मेरा जो रचनात्मक जीवन को ये जो प्रभावित किया दोनों संस्कृति, इसको लेके मेरा अपना ज्ञान का और विचार बनाया।
1: सर, हर सफल व्यक्ति के जो जीवन होता है एक दौर जरूर आता है जब उसे कठिन परिस्थितियां, चुनौतियां और संघर्ष के सामना करना पड़ता है। ये संघर्ष के दिन इंसान को मजबूत भी बनाती है, उसकी सोच को गहरा करती है और उसके सपनों को एक नई दिशा देती है। अक्सर देखा गया है कि जीवन के वो कठिन पल ही आगे चलकर सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। तो सर, ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी संघर्ष के दिनों को आप किस तरह याद करते हैं?
2: 1984 से 1992 तक मैंने कालाहांडी के ऊपर रिसर्च किया, उसके ऊपर पीएचडी किया, लेकिन पीएचडी के साथ मेरा रिसर्च कभी बंद नहीं हुआ। और ये संघर्ष की बात जो कह रहे हैं, उसी समय सरकारी एक बस ही था कहीं जाने के लिए, लेकिन बस तो जंगल बिहड़ को नहीं जाते, तो हम साइकिल में बहुत जगह घुमा हूँ। अभी तो यकीन नहीं होता है कि 40 साल पहले हम 35,000 किलोमीटर साइकिलिंग किया है घूमने के लिए। 18 विकास खंड में मैंने कम से कम दूसरों से टेप रिकॉर्डर मांगता था, मेरे दोस्तों से कैमरा मांगता था, वहाँ कैमरा और टेप रिकॉर्डर का रील लगाकर मैं उधार मांगकर वो लेके 5-7 दिन के लिए जंगल को जाता था, रिकॉर्डिंग करता था, आने के बाद उसको फिर मैंने ट्रांसक्राइब करके मैं उसको रखता था। गाँव में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस गाँव को जाओगे उसी गाँव के किसी आदमी के साथ बात करके बोलना पड़ता था कि हम आपके गांव को आए हैं कुछ काम करने के लिए, आपकी संस्कृति को जानने के लिए, थोड़ा सा रहने को मिलेगा। तो उन लोग कभी कभी मेरे को घर के बाहर जो एक गौशाला रहता है वहाँ भी मेरे को सोना पड़ा है, मच्छर, अंधेरा, सरसों का तेल, किरोसिन और एक टॉर्च लाइट, इतना लेकर हम साइकिल में जाते थे टेप रिकॉर्डर और कैमरा पकड़ के। अकेला जाकर उसी गाँव में 2-3 दिन, 4 दिन रह के लोगों के साथ मिलता था, सब नारी पुरुष सब मिल के ये सब कहानी मैं जब कहता था, उनके दो लाइन गीत मैं गाता था, उसी लाइन को सुनने के बाद वो इतना प्रभावित होते थे कि ये बाहर से आके हमारी गीत गा रही है तो पूरा गीत तुमको मालूम नहीं है, तो मैं पूछता था कि पूरा गीत क्या है बताइए, तो पूरा गीत और पूरा कहानी मेरे को रिकॉर्डिंग करता था वो सुनाते थे।
1: अब वो दो लाइन हमको भी सुना दीजिए।
2: कहीं जा

0: पीपल दवाने, इसका हिंदी अर्थ होगी आप अकेले कहाँ गए थे, हम आपको एक खटिया बैठने के लिए देते हैं, आप थोड़ा बहुत हमारे साथ बैठो, बैठने के बाद बात करो, बात करने से मन को आनंद मिलती है। ऐसे आदिवासी भी गीत है कि जो मंत्र गाते थे, जो प्रकृति के साथ ईश्वर को जुड़ने का वो गीत होता है, ये जो ईश्वर को प्रकृति के साथ जोड़कर गीत गाने का वो मंत्र ऐसे गाते थे, कोई वैदिक मंत्र के उच्चारण हो रहा है, अर्थ नहीं समझ में आता था लेकिन उसका जो ध्वनि था रोमांचित कर देता था। तो ऐसे काफी गीत और कहानी है जिसको कि हम सुन के उसको अपनाया, उसका अर्थ निरूपण किया, उसका विश्लेषण किया और विश्लेषण करके उसके ऊपर किताब लिखा।
1: जी सर, सर आपने जैसे बताया कि हमारी जो लोकगीत है, हमारी परंपरा एक केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि हमारे इतिहास, भावना और जीवन दर्शन को भी दर्शाती है। आज के जो आधुनिक युग में जब डिजिटल माध्यम और नई संगीत के रूप तेजी से बढ़ रही है, तब लोकगीत का संरक्षण और समृद्धि की आवश्यकता और भी अधिक महसूस होती है। तो इस संदर्भ में लोकगीत का संरक्षण और समृद्धि को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है?
0: भारतीय समाज 5000 साल से श्रुति और स्मृति ये दोनों को लेकर है। श्रुति मतलब ही सुनना और स्मृति मतलब है स्मरण करना। ये दोनों ही मौखिक परंपरा का एक सबसे बड़ा पद्धति था। इसका मतलब है जहाँ लिखित समाज और लिखित साहित्य नहीं है, वहाँ गीत को सुनकर बार बार पुनरावृत्ति करके उसी गीत को लोग गाते थे, सुनते थे। जो गीत और कहानी बार बार पुनरावृत्ति होके लोगों के सामने रखा जाता था, उसको केवल बोलने वाला नहीं सुनने वाला भी उसी गीत को सुनकर वो भी दूसरों के सामने उसी गीत को बचा के रखते थे। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी यही लोकगीत आती थी। और लोकगीत केवल कल्पना की बात नहीं है, सामाजिक जीवन की बात है, अपनी मनुष्य का व्यक्तिगत पीड़ा की बात है, नारी जीवन की करुण कहानी है। और बच्चे हो या बूढ़े हो या समाज में जो चीज को सब लोग ग्रहण करते हैं वही हो, जो बुराइयां हैं उसको बिल्कुल ग्रहण नहीं करना है, ये सारे मैसेज, ये सारे संवाद लोकगीत में भरपूर है। और लोकगीत में कोई भी घटना होता है

0: तो उसी घटना को भी उसी लोकगीत में उन लोग पिरोए करके रखते हैं और गाते हैं। कोई कवि साक्षर हो या निरक्षर हो, बात उसमें नहीं है। जो आंखों में देखे हैं, जो प्रत्यक्ष है, उसके साथ अतीत का किसी घटना को जुड़ के तुरंत उस लोकगीत बना देते हैं। तो लोकगीत का दृष्टिकोण यह है, ये समाज का दर्पण है लोकगीत। और लोकगीत में जीवन के सुख दुख, परिवार, समाज, देश की शासन गीतों में पिरोए रखते हैं और उसी गीतों में अपना पीड़ा, अपना आनंद, अपना जीवन का दर्शन, ये सारे चीज को गीत में रखते हैं। इसलिए ये क्या है, ये लोकगीत हमारे समय के इतिहास है, भूमि का इतिहास है, मनुष्य का जो सृजनशीलता है उसका इतिहास है। उसको सरकार इसीलिए लोकगीत का संरक्षण करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, टेलीविजन है और काफी राज्य स्तरीय आदिवासी अनुष्ठान है जो राज्य सरकार के द्वारा, जहाँ एकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर जैसे उड़ीसा में है, यहाँ आदिवासी लोगों का गीत को इकट्ठा करके उसको किताब बना के उसी गीत को फिर लोगों के पास पहुंचाना सरकार का काम है। हालांकि ये भी एक चीज है कि ये जो आदिवासी लोकगीत है या जन समाज का लोक संस्कृति है, इसको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता। हालांकि कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से या सांगठनिक रूप से बहुत कम पैसे में इसको करते हैं, लेकिन एकेडमी होना चाहिए, जैसे कि नेशनल फोकलोर एकेडमी करता है और सारे राज्यों की जितने भी गीत है, कहानी है, धरोहर है, हमारा स्वतंत्रता संग्रामी है, हमारे साधु सन्यासी है, हमारा डांसर है, ड्रामाटिस्ट है, म्यूजिशियन है, ये सारे लोगों का गीत, नृत्य और चित्र और कहानी को, हालांकि इसको भारत की साहित्य अकादमी, केंद्र साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, ये सारे चीज कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ उसको ग्रामीण स्तर पर उसको जुड़ना बहुत जरूरी है। उसको अगर बचाएंगे तो क्या होगा कि समाज में जो परंपरा में हमारे जो मूल्यबोध था, एक भारतीय मूल्यबोध, इंडियन वैल्यू सिस्टम, उसी वैल्यू सिस्टम उनके गीत और कहानी में जो जिंदा था और पूजा पाठ में जिंदा था, आज धीरे धीरे बदल रहा है। इसका संवर्धन करके इसको स्कूल एजुकेशन में डालना चाहिए। बच्चों को खेल कूद, गीत और नाच, ये चार चीज बहुत अच्छा लगता है। ये चार चीज अगर दे देते हैं ना, तो बच्चे लोगों का संस्कृति को जो भूल रहे हैं, वो संस्कृति को भूलना बंद करेंगे और परंपरा से फिर आधुनिकता की तरफ भी आएंगे।
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके जीवन के अनुभव, संघर्ष और संवेदनाएं और लोक संस्कृति के प्रति आपके दृष्टिकोण को हमारे साथ साझा किया। इसी आशा के साथ कि ओडिशा की लोक संस्कृति यूं ही देश और दुनिया में अपनी मधुर गुंज फैलाती रहे, हम आपसे विदाई लेते हैं। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विशेष, सुनी ओडिशा से संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री महेंद्र कुमार मिश्र के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम संचालन कर रही थी स्मृति रेखा तारेनिया। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

अगला कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं रांची मेलेडीज। श्रोताओं, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हर रिश्ता, हर एहसास या फिर हर मुलाकात एक अनकही कहानी बनकर रह जाती है। कुछ दास्तानें पूरी होकर भी अधूरी लगती हैं और कुछ अधूरी होकर भी हमेशा दिल में बस जाती हैं। इन्हीं अनकहे जज्बातों और यादों को सुरों में पिरोया ये सदाबहार गीत फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से लता मंगेशकर की मधुर आवाज में आपकी लेकर आई हूं, सुनिए।

दोस्तों, कभी एक नजर ही दिल की पूरी कहानी कह जाती है, और कभी किसी की मुस्कान तो कभी किसी की झलक जिंदगी की सबसे खूबसूरत एहसास बन जाती है। प्यार की शुरुआत अक्सर शब्दों से नहीं बल्कि एक मासूम सी नजर से हो जाती है। इन्हीं मीठी एहसासों से शुरू में सजाता ये सदाबहार नगमा अब आपको सुनवा रही हूँ। जाने मन एक नजर देख ली।

दोस्तों, जब मोहब्बत दिल पर दस्तक देती है ना, तो दुनिया की भीड़ भी छोटी लगने लगती है। हर ख्वाब उसी का, हर एहसास उसी का, और हर धड़कन उसी के नाम हो जाती है। प्यार का यही रंग इंसान को अपने ही ख्यालों की दुनिया में खो जाने पर मजबूर कर देता है। इन्हीं गहरे जज्बातों और बेपनाह मोहब्बत की खूबसूरत कहानी कहता ये सदाबहार गीत अब आपकी खिदमत में लेकर आई हूं। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रांची मेलेडीज और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त कार्यक्रम की होस्ट राजश्री। जिंदगी के सफर में दोस्तों कभी कभी कोई ऐसा हम सफर मिल जाता है जिसकी मौजूदगी हर राह को आसान और हर पल को खूबसूरत बना देती है। फिर लगता है जैसे मंजिल भी मिल गई और जीने की वजह भी। दिल में खुशी के फूल खिल उठते हैं और हर मौसम सुहाना लगता है। ऐसे ही खूबसूरत एहसासों को शब्द और सुरों में पिरोया ये मधुर गीत अब हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे तुम मिल गए हमदम, मुझे तुम मिल गए हमदम सहा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं इस वक्त आकाशवाणी रांची से कार्यक्रम रांची मेलोडीज, और मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त कार्यक्रम की होस्ट राजश्री। जब दिल किसी अपने की याद में बेचैन हो जाए तो हर धड़कन एक पुकार बन जाती है, इंतजार का हर पल लंबा लगने लगता है और मोहब्बत की तड़प शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी महसूस होती है। यही अनकहा दर्द और सच्चे प्यार की कसक इस गीत की रूह है। आप ध्यान दीजिएगा तो सुनिए, इस सदाबहार नगमे के साथ उन जज्बातों को महसूस करते हैं जो सीधे दिल से निकलकर दिल तक पहुंचते हैं। दिल तड़प तड़प के कह रहा है, आ भी जा।

कुछ बातें शब्दों में नहीं कही जाती, लेकिन दिल उन्हें बखूबी सुन लेता है। कभी किसी की एक मुस्कान, एक नजर या दो मीठे बोल मन में ऐसी हलचल मचा देते हैं कि हर पल बस उसी का ख्याल रहता है। यही तो प्यार की सबसे खूबसूरत एहसास है। इन्हीं नाजुक जज्बातों और मधुर एहसासों को सुरों में पिरोता ये सदाबहार गीत अब आपकी नजर कर रही हूं।

मोहब्बत जब अपनी इंतहा पर पहुंचती है तो दुआ भी बन जाती है और वादा भी। दिल अपने महबूब से बस इतना चाहता है कि वो हर पल हर हाल में मुस्कुराता रहे, क्योंकि उसी की खुशी में अपनी दुनिया नजर आती है और यही एहसास इस अमर गीत की हर पंक्ति में झलकता है। तो आइए प्यार, अपनापन और दिल की सच्ची पुकार से सजे इस सदाबहार नगमे का आनंद लेते हैं। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रही हूँ मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम।

0: तो राजश्री के साथ रांची मेलेडीज का सफर यहीं तक। इसी गाने के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम में 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर। साथ ही आप हमारा कार्यक्रम सुन पा रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर भी। इस वक्त शाम के 4 बजने को हैं और आप सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 के तहत 14 जुलाई को बीएलओ, बीएलओ 2 और चुनाव पाठशाला की दूसरी बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार इस बैठक का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और त्रुटिहीन बनाना है। रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक में आज शहर के विकास, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में हर वार्ड में डिजिटल प्रशिक्षण, स्टेशन और एयरपोर्ट रोड के सौंदर्यीकरण, जल जमाव के स्थायी समाधान, पार्कों के विकास और नागरिक सुरक्षा समितियों के गठन पर विचार किया गया। कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और पुराने चरणों के दूसरे प्रयास की बोलियां खोल दी हैं। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए कुल 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। इस प्रक्रिया में उद्योग जगत की मजबूत

0: भागीदारी दर्शाते हुए 16 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया है। आज पूरे विश्व में जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बढ़ती आबादी की चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। गुमला में मिशन परिवार विकास अभियान 2026 के तहत परिवार नियोजन के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने आज जागरूकता रथ और रैली निकाली। सिविल सर्जन डॉ. शंभुनाथ चौधरी ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दुमका का विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ श्रावणी मेला महोत्सव 28 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसकी सुरक्षा के लिए 600 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मंदिर परिसर, गर्भगृह, कांवरिया कतार और शिव गंगा जैसे प्रमुख स्थानों पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए जाएंगे। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार, हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे कल्याणी।

श्रोता मित्रों, आप सभी को नमस्कार जोहार। आप सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी है स्वस्थ, खुशहाल और उत्साह से भरपूर होंगे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कल्याणी और मैं हूं आपका दोस्त युवराज। दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए मनोरंजन, जानकारी, गीत और प्रेरणा से भरपूर एक शानदार कार्यक्रम लेकर। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए कुछ नए विचारों, रोचक चर्चाओं और मन को छू लेने वाले मधुर गीतों के सफ़र पर। आने वाले कुछ पलों में हम साथ साथ सीखेंगे, मुस्कुराएंगे और गीत संगीत का आनंद भी उठाएंगे। तो दोस्तों, अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक विशेष चर्चा के साथ। दोस्तों, जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है, विनम्रता और अच्छे संस्कार होते हैं, वहाँ के बच्चे भी आदर करना सीखते हैं। इंसान की असली पहचान उनके शब्दों से नहीं बल्कि उसके संस्कारों से होती है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों की संगति चुनना चाहिए जहाँ सम्मान और संस्कारों का कद्र हो। तो मित्रों, आइए हम विस्तार पूर्वक एक खास विषय पर चर्चा करते हैं, आपका संस्कार आपकी पहचान। प्रिय श्रोताओं, आज के समय में लोग किसी व्यक्ति की पहचान उसके पहनावे, धन दौलत, पद या प्रतिष्ठा से करने लगे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी इंसान की वास्तविक पहचान उसके संस्कारों से होती है। अच्छे संस्कार ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को ऊंचा बनाते हैं और समाज में उसे सम्मान दिलाते हैं। संस्कार वह अमूल्य धरोहर है जो हमें हमारे परिवार, माता पिता, गुरुजनों और समाज से प्राप्त होती है। बचपन में जो शिक्षा, व्यवहार और जीवन मूल्य हमें सिखाते जाते हैं, वही आगे चलकर हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। एक संस्कारी व्यक्ति हर परिस्थिति में विनम्र रहता है, बड़ों का सम्मान करता है, छोटों से प्रेम करता है और दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है। दोस्तों, धन, सौंदर्य और शक्ति समय के साथ कम हो सकते हैं, लेकिन अच्छे संस्कार जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास अपार धन हो लेकिन संस्कार ना हो, तो वह कभी भी लोगों को दिल में स्थान नहीं बना सकता। इसके विपरीत, सीमित संसाधनों वाला एक संस्कारी व्यक्ति अपने व्यवहार से सभी का प्रिय बन जाता है। आज के आधुनिकता और तकनीक के इस दौर में जीवन बहुत तेज हो गया है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमारी दुनिया को छोटा बना दिया है, लेकिन कई बार इनकी वजह से परिवार के बीच संवाद कम होने लगे हैं। ऐसे समय में अपने संस्कारों को बचाए रखना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। माता पिता बच्चों से पहले

0: मिलने पर धैर्य नहीं खोना चाहिए। वो हमें क्षमा करना, दूसरों के प्रति संवेदनशील होना और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाते हैं। यही गुण एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देते हैं। प्रिय श्रोताओं, यदि हम चाहते हैं कि हमारे परिवार खुशहाल रहे, समाज में भाईचारा बना रहे और आने वाली पीढ़ियां नैतिक मूल्यों से समृद्ध हो, तो हमें स्वयं अपने जीवन में अच्छे संस्कारों को अपनाने होंगे। याद रखिए, बच्चे हमारी बातों को कम और हमारे व्यवहार से अधिक सीखते हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारा नाम, पद या संपत्ति नहीं, बल्कि हमारे संस्कार होते हैं। अच्छे संस्कार जीवन को सफल, सम्मानित और सार्थक बनाते हैं। आइए हम संकल्प लें कि सत्य, ईमानदारी, विनम्रता, करुणा और सम्मान जैसे मूल्यों को अपने जीवन का आधार बनाएंगे और आने वाली पीढ़ी को भी यही अमूल्य विरासत देंगे। साथियों, आज का जीवन भागदौड़, प्रतिस्पर्धा और चिंताओं से भरा हुआ है। पढ़ाई, नौकरी, परिवार और भविष्य की चिंता के कारण लोग मानसिक तनाव के शिकार हो रहे हैं। ऐसे समय में योग एक ऐसा सरल और प्रभावी उपाय है जो मनुष्य को तनावमुक्त जीवन जीने का प्रेरणा देता है। तो मित्रों, आइए हम जानकारी करते हैं हमारे खास आमंत्रित मेहमान सरोज कुमारी जी से, जो कि बताएंगे योग और आपकी स्वास्थ्य विषय पर, और इनसे बातचीत कर रहे हैं श्री संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों जोहार, नमस्कार। मित्रों, आजकल की बदलती जीवन शैली में योग का बड़ा ही महत्व है और प्रायः हम ये कहते हैं कि आज हमारे पास समय नहीं है और बहुत तनाव है, बहुत सारा काम हमें आज निपटाने हैं। तो इस भागम भाग जिंदगी में काम के बोझ के तले हम दबे जा रहे हैं और प्रायः यही सुनने को मिलता है कि आज तो समय नहीं है हमें योग करने का। दोस्तों, योग में एक बहुत बड़ी शक्ति है। कहा भी जाता है कि योग एक साधना है और योग में एक चमत्कार है। यदि हम अपने व्यस्त समय से कुछ समय यूं कहें कि चुरा लेते हैं और 10 मिनट भी यदि हम योग कर लेते हैं, तो सारा दिन हमारा तरोताजा बीतता है और हम तनाव से दूरियां बना बैठते हैं। तो योग कम समय में कौन कौन सी योग क्रियाएं करें, योग का कितना महत्व है आज के बदलती लाइफस्टाइल में, इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए आमंत्रित हैं योग प्रशिक्षक सरोज कुमारी। सरोज जी, स्वागत है। सरोज जी, आजकल की बदलती लाइफस्टाइल में बहुत तेजी से लाइफस्टाइल हमारा बदल रहा है, इसमें योग का कितना महत्व है? लोग प्रायः यही कहते हैं कि तनाव से हम घिरे हुए हैं और तनाव तो हर जगह है, कहते हैं यत्र तत्र सर्वत्र तनाव व्याप्त है। तो योग कितना कारगर है आज के संदर्भ में?
2: योग हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखें तो योग मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ शारीरिक व्यायाम, ये नहीं बोल सकते हैं। योग मतलब होता है कि हमारे शरीर, मन और श्वास, ये तीनों को जोड़ता है। ये हमारा ये एक लयबद्ध में आ जाए तो हमारा जीवन बहुत ही स्मूथ चलेगा। जैसे हमें हमारा जीवन कैसा भी तनाव है, क्रोध हो जाता है और हमें चिंता बहुत होती है, तो ये जो योग करते हैं तो हमारी ये सब चिंताएं दूर होती है। इससे
1: योग से चिंताएं दूर होती है, योग से तनाव में कमी आती है।
2: यस
1: सरोज जी, अपने व्यस्त समय से ऐसे कौन सा समय हम निकालें, 10 मिनट भी यदि हम निकाल लेते हैं, तो ऐसे कौन से योग क्रियाएं हम करें? और कार्यस्थल पर लगातार हम काम करते हैं, लैपटॉप के सहारे डेस्कटॉप पर हम लगातार काम करते हैं, हमारी आंखें थक जाती हैं और फिर बहुत सारी तकलीफें नज़र आने लगती हैं, तो कम समय में कौन कौन सी योग क्रिया किया जाए?
2: बहुत सारी है क्रियाएं जो हम लोग बैठे बैठे भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग लैपटॉप में वर्क करते हैं, हमारी आंखें थक जाती है, तो हम आंखों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे हम लोग गर्दन सीधा रखें और आंखों को ऊपर की ओर ले जाएं, फिर नीचे देखें, फिर लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, एटलीस्ट 3-4 बार करेंगे। फिर सर्कल बनाएं, आंखों की जो रेटिना होती है उनसे सर्कल बनाएंगे, ऊपर राइट नीचे लेफ्ट, ऊपर राइट नीचे लेफ्ट, तो इस तरह से सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज भी इस तरह से हम लोग सर्कल बनाते हैं। तो एक आंखों की एक्सरसाइज हो गई उस, और फिर आंखों को बंद करें, टाइट से बंद करना है फिर खोलना है, फिर टाइट से बंद करना है।

0: खोलना है, तो आँखों में जो जलन होती है वो नहीं होती है। उसके बाद एक एक्सरसाइज और कर सकते हैं जो गर्दन के लिए होती है, अपने गर्दन से जैसे ऊपर की ओर ले जाएं गर्दन को, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर ले जाना है, फिर नीचे की ओर, फिर अपने बाएं साइड, दाहिने साइड, फिर बाएं साइड, फिर दाहिने साइड, फिर इसी तरह सर्कल बनाना है क्लॉकवाइज, नीचे से फिर पीछे बाएं दाहिने साइड, फिर पीछे, फिर नीचे, इस तरह से सर्कल बनाना है क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज करके बनाना है, तो आपके गर्दन में जो भी पेन हो आपका चला जाता है। तो ये एक एक्सरसाइज वो कर सकते हैं हम लोग। दूसरा हम लोग कमर का एक्सरसाइज कर सकते हैं। कमर के एक्सरसाइज में हम लोग क्या करते हैं, बैठे बैठे ही हम लोग पैरों को, दोनों पैरों को खींचना है, फिर छोड़ना है, पैरों को खींचना है आगे की ओर, फिर छोड़ना है। तो इसे पैर से, कमर से लेकर आपके पैर तक का जो पेन होगा वो आपको दूर होगा। फिर सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे हमें बैठे बैठे भी हम लोग काम भी करते रहे और वो एक्सरसाइज भी हो सकता है
1: जी। और ये कितने कितने अंतराल पर किया जाए, क्योंकि लगातार हम काम करते हैं और आजकल हमारे युवा साथी पर काम का बहुत ज़्यादा बोझ है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो या फिर अन्य कोई भी गतिविधियाँ हो करते हैं, तो बैठे बैठे कितने अंतरालों पर हम थोड़ा सा ब्रेक दे दें।
0: आपको लगता है एक घंटा दो घंटा के बाद हमें लग रहा है कि एक दो घंटा में हमें थकान फील हो रही है, तो आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए इस तरह से बैठे बैठे
1: जी।
0: या फिर थोड़ा हाथों को सेक करें, हाथों को इस तरह झटके ऊपर ले जाए, नीचे लाए, ऊपर लाना है, नीचे लाना है, और इस तरह से पूरा इस तरह से इतना सेक सेक करना है, झटकना है हाथों को कि आपकी अंगुली भी छूट जाए, इस तरह से करें
1: जी।
0: ठीक है, तो आपको देखना आपके बॉडी में काफ़ी एनर्जी फील होगा
1: जी। ये कार्य स्थल पर हम बैठे बैठे भी ये कार्य
0: कर सकते हैं हम लोग
1: जी। हाँ। हमें आराम मिलेगा,
0: आराम मिलेगा, और ये हर एक एक दो दो घंटा में भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको थकान फील होता है आप वापस ये चालू कर सकते हैं
1: जी। हम जब प्रातः काल उठते हैं, शयन कक्ष से हम जागते हैं, तो हमें काम का ही टेंशन नजर आता है और फिर ये लगता है कि ये काम हमारा संपन्न हो जाए, तो इस दरमियान हम यदि कुछ योग क्रियाएं कर लेते हैं, थोड़े से समय निकाल सकते हैं, तो कितना समय कम से कम हम निकाल लें, कम समय में भी हम कौन कौन से ऐसी योगा कर लें प्रातःकाल, ताकि बाकी जो दिन है वो बढ़िया बीते, खुशनुमा बीते।
0: हमारे पास, हम लोग बोलते हैं कि समय नहीं है, बट जब लोग सुबह उठते हैं ना तो मोबाइल देखते हैं सर, और मोबाइल जब देखते हैं तो हमारा घंटों निकल जाता है, हमें पता नहीं चलता है,
1: और फिर कहते हैं समय नहीं है।
0: तो हमें क्या करना चाहिए, उस एक घंटा को हमें यूटिलाइज करना चाहिए। सुबह उठते हैं अपना भगवान को याद करते ही हैं, सबको याद करना भी चाहिए, याद करके आप थोड़ा फ्रेश हो जाइए, जो वॉशरूम जाना है वो नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए, आपको उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यदि अभी सुबह में ये कार्य कर लेते हैं तो उठने से पहले उठ लिए, पानी वानी पिए, गर्म पानी पीना चाहिए, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह में चाय के जगह में आप गर्म पानी पिए, फिर आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, जैसे ताड़ासन, वो आपको पेट साफ करने बहुत सहयोगी है, सहयोग करता ताड़ासन, तो वो आप करते हैं तो आपका देखिए अभी का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। तीन जगह अब जैसे आप कैसे बताऊँ मैं एक बार, कि आप हाथों को लॉक कर ले, अपने दोनों पांचों अंगुलियों से लॉक कर ले और हाथों को ऊपर ले जाए और अपने एड़ी को भी ऊपर उठा ले,
1: दोनों पैरों की एड़ियों को
0: ऊपर उठा ले, फिर नीचे लाएं हाथों को, फिर नीचे लाएं, फिर ऊपर ले जाए, फिर नीचे लाएं, इस तरह से आप करें, इस तरह से आप करते हैं और आप जाइए वो टॉयलेट जाइए, आपके लिए ये बहुत रामबान योगा है, ये आपका तुरंत आपका पेट क्लियर होगा इससे सर। दूसरा उसके बाद आप थोड़ा प्राणायाम कर ले, थोड़ा ध्यान कर ले, एक्सरसाइज में जैसे सूर्य नमस्कार सब बेस्ट एक्सरसाइज होता है, सूर्य नमस्कार में सारी एक्सरसाइज आ जाते हैं। वो करने के बाद थोड़ा प्राणायाम, जैसे प्राणायाम में आपका भस्त्रिका प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम हुआ, वो कर लेते हैं। अभी सबको पता है ये सब, मुझे लगता है इसके दिन लोगों को, तो ये आप करने के बाद आप थोड़ा ध्यान करिए, 10 मिनट का, सिर्फ 10 मिनट का ध्यान करिए, तो आपको इतना बेनिफिट होगा, आप फुल डे एनर्जेटिक फील करेंगे। ये जैसे हमें थकान फील होती है तो वो आप अच्छा फील करेंगे, वो थकान फील नहीं करेंगे। अब सुबह

0: से हम बहुत अच्छे से एनर्जेटिक रहेंगे। तो ये जरूरी है हमारे लाइफ में, एक्सरसाइज तो जरूरी है ही, उसके साथ में प्राणायाम और ध्यान जोड़ते हैं तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसमें टाइम सिर्फ आधा घंटा लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो सिर्फ आधा घंटा, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है सर।
1: जो समय आप प्रातःकाल मोबाइल देखने में आप खराब कर देते हैं, उस समय का सदुपयोग आप योगा में कर सकते हैं। और आधे घंटे आप सिर्फ योगा में दें, कम से कम आधा घंटा आप देते हैं, ताड़ासन करते हैं और भी जो आप अन्य क्रियाएं बता रहे हैं वो करते हैं, तो पूरे समय आप ऊर्जावान रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, मन खुश रहेगा और आपको काम में भी दिलचस्पी आएगी। आजकल की भागम भाग वाली ज़िंदगी में खासकर हमारे युवा साथी को क्या कहेंगे कि सिर्फ काम पर ही फोकस ना करें, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, समय निकालिए, समय के बहाना मत बनाइए, समय निकालने से निकल जाता है, तो योगा कीजिए और खुश रहिए, क्या कहेंगे?
0: योगा करने से हमें क्या होता है वो एक बेनिफिट बताती हूँ। सिर्फ काम काम से हमारा मन पूरा थक जाता है, योग से हमारा क्या होता है, हमारे वर्तमान क्षण में जीने का कला सिखाती है योगा। दूसरा है हमारे मन और श्वास का एक गहरा संबंध होता है। जैसे हमारा हमेशा क्या होता है, हमारा मन पास्ट और फ्यूचर में फंसा हुआ रहता है, या तो हमारा मन कभी पास्ट के बारे में चिंता करती रहती है, सोचती रहती है, और दूसरा है फ्यूचर के बारे में चिंता करती रहती है, क्या होगा क्या होगा। यदि आप योग करते हो तो आपको हमेशा ये प्रेजेंट मोमेंट में आपको रहोगे योग करने से। और दूसरा है कि हमारा श्वास और मन एक गहरा संबंध है, ये करने से तनाव से दूर होते हैं, क्रोध और चिंता कम होती है इससे। कि योग एक व्यायाम नहीं है, ये हमारा मन और श्वास और शारीरिक तीनों को जोड़ता है, और इससे हमारा मन की चिंता जो होती है वो दूर होती है, और हमारा मन शांत होता है, तो हम इस मन शांत मन से हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं।
1: दोस्तों, यदि योग को आप एक संस्कार के रूप में अपनाते हैं तो फिर आप चुस्त और दुरुस्त रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे और पूरा दिन आपका बढ़िया बीतेगा। और दोस्तों, यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा और हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे, और तभी हमारा देश तरक्की का नया सोपान तय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद योग प्रशिक्षिका सरोज कुमारी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और कम समय में योग किस प्रकार करें, कौन कौन सी योग क्रियाएं अपने कार्यस्थल पर करें, इस पर आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आज का दिन आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो, कल फिर एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।
2: दोस्तों, आज के तनावपूर्ण जीवन में योग अपनाना समय की आवश्यकता बन गया है। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय योग और ध्यान के लिए निकालें तो हम तनाव मुक्त, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने सुना श्रीमती सरोज कुमारी जी को, और इनसे वार्तालाप कर रहे थे श्री संजीव कुमार लाल। तो मित्रों, बातें और विशेष चर्चाएं का सिलसिला आगे और भी चलते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों अभी आपने सुना एक सदाबहार गीत जो अपने समय काफ़ी लोकप्रिय हुआ करता था और हर युवाओं की जुबान पर यही गीत रहती थी। यह गीत फिल्म एक दूजे के लिए से था और इसे गाई थी लता मंगेशकर और SB बाला सुब्रमण्यम ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह गीत आपको खूब पसंद आया होगा। दोस्तों एक बेहतरीन गीत के बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक बार फिर एक खास विषय पर चर्चा करते हैं, बच्चों को बचत की आदत डालें। दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय पर बातें करेंगे जो बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रख सकता है। विषय है बच्चों को बचत की आदत डालें। मित्रों कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यही बात बचत पर भी पूरी तरह लागू होती है। बचत केवल पैसा जमा करना नहीं है बल्कि यह अनुशासन, धैर्य, दूरदर्शिता और जिम्मेदारी

पाठ भी सिखाती है। यदि बचपन से ही बच्चे में बचत की आदत विकसित कर दी जाए तो वह बड़े होकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, जिम्मेदार और समझदार नागरिक बनते हैं। आज का समय उपभोक्तावाद का समय है। बाजार में हर दिन नए नए खिलौने, मोबाइल, कपड़े और आकर्षक वस्तुओं का बच्चों को लुभाती है। ऐसे माहौल में यदि बच्चों को यह नहीं सिखाया गया कि हर इच्छा को तुरंत पूरा करना आवश्यक नहीं है तो उसमें अनावश्यक खर्च करने की आदत विकसित हो सकती है। इसलिए माता पिता और शिक्षकों का दायित्व है कि बच्चों को बचत का महत्व समय रहते ही समझाए। साथियों, बचत की शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है। बच्चों को गुल्लक देकर उसमें रोज या सप्ताह में थोड़ी थोड़ी राशि डालने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। जब बच्चे अपनी बचत से कोई किताब, खेल सामग्री या अपनी पसंद की उपयोग की वस्तु खरीदते हैं तो उन्हें आत्मविश्वास और संतोष दोनों प्राप्त होते हैं। इसमें उन्हें यह भी समझ में आता है कि मेहनत और धैर्य का फल मीठा होता है। बचत केवल पैसों तक सीमित नहीं है। बच्चों को समय, पानी, बिजली, भोजन और अन्य संसाधनों की बचत का महत्व भी सिखाना चाहिए। जो बच्चा आज पानी की एक एक बूंद का मूल्य समझता है वह भविष्य में प्रकृति और समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनता है। भोजन की बर्बादी रोकना, अनावश्यक बिजली का बंद करना और समय का सही उपयोग करना भी बचत का ही एक रूप है। माता पिता स्वयं बच्चों के लिए सबसे बड़े आदर्श होते हैं। यदि घर के बड़े लोग सोच समझ कर खर्च करेंगे, अनावश्यक दिखावे से दूर बचेंगे और नियमित बचत करेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। केवल उपदेश देना से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से बच्चों को प्रेरित करना अधिक प्रभावी होता है। मित्रों, विद्यालयों की भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि स्कूलों में वित्तीय साक्षरता, बचत और जिम्मेदारी खर्च का जानकारी दी जाए तो बच्चे छोटी उम्र में ही धन का सही उपयोग करना सीख सकते हैं। विभिन्न प्रतियोगिताओं, गतिविधियों और कहानियों के माध्यम से भी बचत का संदेश सरलता से बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है। बचत का अर्थ कंजूसी नहीं है। इसका मतलब है आवश्यकता और इच्छा के अंतर समझना, सोच समझ कर खर्च करना और भविष्य के लिए कुछ सुरक्षित पैसा बचा कर रखना। संतुलित जीवन जीने का यह एक कला बच्चों को जीवन भर लाभ पहुंचाती है। प्रिय श्रोताओं, बच्चों को बचत की आदत सिखाना उन्हें केवल पैसा बचाना नहीं बल्कि जिम्मेदारी, आत्मसंयम, धैर्य और भविष्य की योजना बनाना भी सिखाता है। आज की छोटी छोटी बचतें ही कल उनके बड़े सपनों को पूरा करने में सहायता बनती है। आइए हम सभी मिलकर अपने बच्चों को बचत का संस्कार दें ताकि वो आर्थिक रूप से सशक्त, जिम्मेदार और सफल नागरिक बन सके। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा साप्ताहिकी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज की प्रस्तुतियां, बातें और गीत संगीत का यह कार्यक्रम आपको खूब पसंद आया होगा। तो मित्रों, अब दीजिए अनुमति अपने मित्र युवराज को और फिर से होगी मुलाकात अगले सप्ताह नए विषयों, नई जानकारियों और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे और मुस्कुराते रहे। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल्याणी, जिसमें चर्चा हुई आपका संस्कार आपकी पहचान और बच्चों को बचत की आदत डाले। साथ ही वार्ता आपने सुनी योग और आपका स्वास्थ्य पर। भेंट वार्ताकार थी डॉक्टर सरोज कुमारी और भेंटकर्ता थे संजीव कुमार लाल। इसी के साथ कार्यक्रम कल्याणी यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कुछ देर बाद यानी 4

बजकर 35 मिनट पर सुनिए फिल्मी संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। 5 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार और 5:02 पर युवाओं से संबंधित कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज चर्चा होगी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे और इंटरनेशनल डे ऑफ कम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट पर। 5:30 का वक्त होगा श्रमिक लोक का, जिसमें आज चर्चा होगी विश्व जनसंख्या दिवस और रेत और धूल भरी आंधी से निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। साथ ही चर्चा होगी कार्यस्थल पर सुरक्षा जरूरी और उद्योग और प्रकृति का संवर्धन पर। प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की।

6 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार और 6:02 पर किसान वाणी, जिसमें आज चर्चा होगी मधुमक्खी पालन पर। आज की बात में सुनिए अनाज भंडारण के वैज्ञानिक तकनीक। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर नेहा राजन, भेंटकर्ता होंगे कृष्ण जीवन पौराणिक। आज की बात में सुनिए झारखंड में कृषि वानिकी की संभावनाएं, जिसके विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर तन्मय कुमार कोले। प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। हमारी दुनिया, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:32 पर, जिसमें चर्चा होगी क्रोध और अहंकार से दूर रहें। कुरमाली वार्ता में आज का विषय है नारी का सम्मान। वार्ताकार होंगे रतन कुमार महतो।

प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 7 बजे से और 7:11 पर जिले में आजकल। लोकगीत में आज हो भाषा में लोकगीत प्रसारित किए जाएंगे। कलाकार होंगे बुधुन सिंह कुंकल और साथी। 7:20 पर क्षेत्रीय समाचार सुनेंगे, जिसमें जो क्रमशः नागपुरी, उरांव, मुंडारी, हो और संथाली भाषा में प्रसारित किए जाएंगे। 7:45 पर समाचार ध्वनि चित्र और 8 बजे से आनंद लीजिए फिल्मी संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा का। 8:30 पे सुनिए सुर्खियों में।

8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे से इवनिंग न्यूज और 9:15 पर उर्दू में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। 9:30 पर सुनिए संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती। 10 बजे से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम विशाखापत्तनम के ए श्रेणी के कलाकार डॉक्टर आर माधुरी देवी का कर्नाटक वीणा सुनिए। 11 बजे से हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार 11:05 पर। ये थे आज के सांध्यकालीन प्रसारण में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम सांझ सरगम।

दोस्तों, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और इस सुबह की शाम कुछ तजुर्बे कुछ अनुभव देकर जाती है। ये अनुभव हमें फिर अगली सुबह के लिए तैयार करती है। जिंदगी के इस सफर में अगर मधुर संगीत सुनाई दे दे तो ये सफर खुशनुमा हो जाता है। किसी ने क्या खूब कहा है, बारिश की बूंदों में छुपी है खुशियां, मौसम का ये संगीत हर दिल को भाता है। रिमझिम फुहारों के बीच कार्यक्रम सांझ सरगम सुनने वालों को मेघना का प्यार भरा नमस्कार।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में फिल्म दूसरा आदमी से अभी आपने ये गीत सुना। इस गीत के बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी और इसे संगीत से सजाया था राजेश रोशन ने। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मैंने प्यार किया से राम लक्ष्मण का संगीत है, बोल लिखे है देव कोहली और इस गीत को अपनी मधुर आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम ने।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फिल्मी संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। कार्यक्रम की अगली पेशकश आरडी बर्मन के संगीत में फिल्म मेरे जीवन साथी से। किशोर कुमार की आवाज है और बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने।

नदीम श्रवण के संगीत में कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में गाया। अगला गीत सुनते हैं, फिल्म का नाम है फूल और कांटे।

तो दोस्तों, जिंदगी एक संगीत है, इसका हमेशा आनंद उठाते रहिए, इसे गुनगुनाते रहिए, हालात चाहे जैसे भी हो हमेशा मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ कार्यक्रम की होस्ट और आपकी दोस्त बेगना को आपसे लेती है इजाज़त। कार्यक्रम सांझ सरगम यहीं संपन्न होता है।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक में आज शहर के विकास, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में हर वार्ड में डिजिटल प्रशिक्षण स्टेशन और एयरपोर्ट रोड के सौंदर्यीकरण, जल जमाव के स्थायी समाधान, पार्कों के विकास और नागरिक सुरक्षा समितियों के गठन पर विचार किया गया। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर रांची में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि एम्स और रिम्स 2 के निर्माण से चिकित्सकों की कमी दूर होगी। खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र में आज एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। गंभीर रूप से घायल युवक का रिम्स के रांची में इलाज चल रहा है। गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने उर्वरक की कालाबाजारी रोकने और किसानों को निर्धारित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की। उन्होंने सभी उर्वरक विक्रेताओं को दुकानों पर निर्धारित मूल्य सूची, उर्वरक संबंधी सूचना चार्ट तथा वैध लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। और गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र के नीरज हाजरा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी डॉ. विमल कुमार ने एसडीपीओ खोरी महुआ अमरेंद्र कुमार से पूरे मामले पर जांच रिपोर्ट मांगी है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

5.44 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं कि आप स्वस्थ होंगे और पॉजिटिविटी से भरे होंगे। तो आ जाइए अपने रेडियो के करीब, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। तो आज के इस सफर में मैं हूं आपकी साथी, आपकी दोस्त शुभांगी,
1: और मैं श्वेता।
0: हम दोनों की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज 11 जुलाई के अवसर पर हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो पूरी दुनिया के वर्तमान और भविष्य से जुड़ा है। जी हाँ, और ये विषय है विश्व जनसंख्या दिवस।
1: बिल्कुल दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, परिवार योजना और साथ विकास के महत्व को समझाना है।
0: बिल्कुल दोस्तों, जनसंख्या किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति भी हो सकती है और सबसे बड़ी चुनौती भी। तो यदि जनसंख्या शिक्षित, स्वस्थ और कुशल हो तो वही देश की प्रगति का आधार बनती है। लेकिन यदि संसाधनों की तुलना में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़े तो अनेक समस्याएं जन्म लेने लगती हैं।
1: बिल्कुल, तेजी से बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव हमारे जीवन के लगभग हर क्षेत्र पर पड़ता है। शिक्षा, स्वास्थ्य पर दबाव बढ़ता है, रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो जाती है, आवास की समस्या बढ़ती है, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है दोस्तों, और पर्यावरण पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। जंगलों की कटाई, जल संकट, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे समस्याएं भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सब जनसंख्या बढ़ने से होता है दोस्तों।
0: बिल्कुल, भारत दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में शामिल है। इतनी बड़ी आबादी हमारे लिए अवसर भी है, क्योंकि हमारे पास युवा शक्ति की भरपूर क्षमता है। यदि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, कौशल विकास और रोजगार के अवसर मिले तो यही जनसंख्या भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। लेकिन इसके लिए संतुलित और दूरदर्शी योजनाओं की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल, विश्व जनसंख्या दिवस हमें यह भी सिखाता है कि परिवार नियोजन केवल जनसंख्या नियंत्रित करने का विषय नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और खुशहाल परिवार बनाने का माध्यम है। जब परिवार छोटा और संयुक्त होता है तब माता पिता बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, महिलाओं की शिक्षा इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक शिक्षित महिला न केवल अपने परिवार के लिए सही निर्णय लेती है, बल्कि समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसलिए बेटियों की शिक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण और लैंगिक समानता जनसंख्या संतुलन के महत्वपूर्ण आधार हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि केवल सरकार की योजनाएं ही परिवर्तन नहीं है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह जागरूक बने, सही जानकारी अपनाए और दूसरों को भी जागरूक करें। जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य तैयार करना चाहिए।
0: जी, आज तक

0: दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो केवल पर्यावरण ही नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य, कृषि, जलवायु और भविष्य से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और यह विषय है रेत एवं धूल भरी आंधी से निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
1: बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को रेत एवं धूल भरी आंधी से निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में रेत और धूल भरी आंधियों के बढ़ते खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करना और उससे होने वाली नुकसान को कम करने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है।
0: बिल्कुल दोस्तों, जब तेज हवाओं के साथ बड़ी मात्रा में रेत और धूल हवा में उड़ती है तो उसे रेत या धूल भरी आंधी कहा जाता है। यह केवल रेगिस्तानी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहती बल्कि हवा के साथ सैकड़ों और कभी कभी हजारों किलोमीटर तक यात्रा कर सकती है। इसका असर दूर दराज के शहरों और देशों तक भी पहुँच सकता है।
1: बिल्कुल, रेत और धूल भरी आंधियों के कई कारण हैं। प्रत्येक कारणों में तेज हवाएं, शुष्क जलवायु और रेगिस्तानी क्षेत्र शामिल हैं। वहीं मानवीय गतिविधियों जैसे वनों की आधुनिक कटाई, भूमि का अत्यधिक दोहन करना, जलवायु परिवर्तन और संयुक्त खेती भी इस समस्या को भी गंभीर बनाती है।
0: जी, इन आंधियों का सबसे अधिक प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। हवा में मौजूद महीन धूल के कण हमारी सांसों के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे अस्थमा, एलर्जी, खांसी, आंखों में जलन और फेफड़ों से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं।

0: छोटे बच्चे, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए यह स्थिति और भी अधिक जोखिमपूर्ण होती है।
1: बिल्कुल, इतना ही नहीं दोस्तों, धूल भरी आंधियां कृषि को भी नुकसान पहुंचाती है, फसलें नष्ट हो जाती हैं, मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है और किसानों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित होते हैं दोस्तों, क्योंकि दृश्यता कम हो जाती है इसमें, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।
0: जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया के कई हिस्सों में सूखा और मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। यही कारण है कि रेत और धूल भरी आंधियों की घटनाएं भी कई क्षेत्रों में अधिक देखने को मिल रही है। इसलिए इस चुनौती से निपटने के लिए केवल एक देश नहीं बल्कि पूरे विश्व को मिलकर काम करना होगा।
1: बिल्कुल, अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, क्योंकि वृक्ष मिट्टी को बांध कर रखता है और धूल के उड़ने को कम करता है। जल संरक्षण, भूमि संरक्षण और टिकाऊ कृषि पद्धति को अपनाना भी आवश्यक है। सरकारों को समय पर मौसम संबंधित चेतावनी प्रणाली को और मजबूत बनाना चाहिए, ताकि लोग पहले से सतर्क हो सकें।
0: व्यक्तिगत स्तर पर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। यदि धूल भरी आंधी आए तो घर के भीतर रहने का प्रयास करें। बाहर निकलना आवश्यक हो तो मास्क और आंखों की सुरक्षा का उपयोग करें तथा मौसम विभाग द्वारा जारी सलाह का पालन जरूर करें। दोस्तों, प्रकृति हमें जीवन देती है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यदि हम पर्यावरण का संतुलन बनाए रखेंगे, पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण दे सकेंगे।
1: बिल्कुल दोस्तों, आइए रेत एवं धूल भरी आंधी से निपटने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम सभी एक संकल्प लें कि पर्यावरण संरक्षण को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे, प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करेंगे और पृथ्वी को सुरक्षित रखने का अपना योगदान देंगे जरूर।
0: तो दोस्तों, बातें और भी जारी रहेगी, आइए इसी बीच लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, उद्योग किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का आधार है। जी हाँ, उद्योग रोजगार देते हैं, नई तकनीक विकसित करते हैं और देश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन उद्योगों का विकास तभी सार्थक है जब वे प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखें।
2: बिल्कुल दोस्तों, प्रकृति हमें जल, वायु, भूमि, वन और खनिज जैसे बहुमूल्य संसाधन प्रदान करती है। यही संसाधन उद्योगों के संचालन का आधार है। यदि इसका अत्यधिक दोहन किया जाए तो पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन बढ़ जाता है और जैव विविधता को नुकसान पहुँचाती है।
1: आज आवश्यकता ऐसे उद्योगों की है जो पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार हों। स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, प्रदूषण नियंत्रण, वर्षा जल संचालन, अपशिष्ट का पूर्ण चक्रण और अधिक से अधिक वृक्षारोपण जैसे उपाय उद्योगों को प्रकृति के अनुकूल बनाते हैं।
2: बिल्कुल, भारत में भी हरित उद्योगों और सतत विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इससे आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी संभव हो रहे हैं।
1: दोस्तों, हम सभी की भी जिम्मेदारी है कि प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान दे। उद्योग, सरकार और समाज यदि मिलकर कार्य करेंगे तो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है।
2: आइए संकल्प लें कि हम ऐसे विकास का समर्थन करेंगे जो प्रकृति का सम्मान करे, क्योंकि स्वस्थ प्रकृति ही समृद्ध उद्योग और उज्जवल भविष्य की

0: अधिकांशाला है।
1: दोस्तों, चाहे कार्यालय हो, कारखाना, दुकान, अस्पताल, खेत या निर्माण स्थल, हर जगह सुरक्षा के नियमों का पालन करना आवश्यक है। छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।
0: बिल्कुल दोस्तों, कार्यस्थल पर सुरक्षा का पहला नियम है सुरक्षा निर्देशकों का पालन करना। संस्थान द्वारा बनाए गए नियम हमारी सुरक्षा के लिए ही होते हैं दोस्तों।
1: यदि कार्य के दौरान हेलमेट, दस्ताने, सुरक्षा जूते, मास्क या अन्य सुरक्षा उपकरण आवश्यक हो तो उनका हमेशा सही तरीके से उपयोग करें।
0: बिल्कुल, कार्यस्थल को साफ और व्यवस्थित रखें। फर्श पर पानी, तेल या बिखरा हुआ सामान दुर्घटना का कारण बन सकता है।
1: बिजली के उपकरणों का उपयोग सावधानी से करें। खराब तारों या मशीनों की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारी को दें और स्वयं उन्हें ठीक करने की कोशिश ना करें।
0: बिल्कुल दोस्तों, ये सारी जानकारियाँ आपको इसलिए दी जा रही है ताकि आप अपने कार्यस्थल पर इन सब का पालन करें और जो हादसे हो रहे हैं उनसे आप बच सकें। आग लगने जैसे आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर एक्सटिंग्यूशन का स्थान और उसे उपयोग की जानकारी भी रखें। आपातकालीन निकास मार्ग भी पहले से ही जान लें।
1: बिल्कुल, यदि किसी सहकर्मी को चोट लग जाए तो तुरंत फर्स्ट एड दें और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध जरूर कराएं।
0: बिल्कुल, याद रखिए सुरक्षा केवल प्रबंधन की नहीं बल्कि हर कर्मचारी की जिम्मेदारी है। सुरक्षा कर्मचारी ही स्वस्थ, खुश और उत्पादक होते हैं।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों आइए हम सभी यह संकल्प लें कि कार्यस्थल पर सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे और एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखेंगे। दोस्तों, बातें और भी करनी है लेकिन आइए एक लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक।

0: दोस्तों आइए आपसे बातें करते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं और उसका खून नीले रंग का होता है।
1: शहद दुनिया का ऐसा प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है जो सही तरीके से रखा जाए तो हजारों वर्ष तक खराब नहीं होता।
0: बिल्कुल दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जांघ की हड्डी यानी कि फीमर होती है।
1: चींटियां अपने शरीर के वजन से कई गुना अधिक वजन उठाने की सक्षम होती हैं दोस्तों।
0: साथ ही पृथ्वी पर मौजूद लगभग 97% पानी खारा है, केवल लगभग 3% पानी ही मीठा है जिसमें से अधिकांश बर्फ के रूप में जमा है।
1: बिल्कुल दोस्तों, इंसान के मस्तिष्क में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं जो हर पल

0: संचालित करते हैं कि आदान प्रदान जो होते हैं वो कैसे हो रहे हैं।
1: बिल्कुल, बिजली चमकने के बाद आवाज़ इसलिए देर से सुनाई देती है क्योंकि प्रकाश ध्वनि से कहीं अधिक तेजी गति से चलता है।
0: केले में प्राकृतिक रूप से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को ऊर्जा देने में मदद करती हैं।
1: साथ ही क्या आप जानते हैं कि डॉल्फिन एक आंख खुली रखकर भी सो सकती है जिससे वे अपने आसपास के वातावरण पर नजर बनाए रखे।
0: दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा नहीं बल्कि ऑक्टोकिन है क्योंकि वह भी एक ठंडी रेगिस्तान है। तो दोस्तों, बातें तो और भी होती रहेंगी, अगली बातें हम करेंगे आपसे अगले कार्यक्रम में। हमें मुझे और मैं श्वेता
1: और मैं शुभांगी,
0: हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। कंपेयरिंग कर रही थी शुभांगी कुमारी और प्रियंका राय। प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। अगला कार्यक्रम श्रमिक लोक, जिसमें चर्चा होगी विश्व जनसंख्या दिवस, रेत और धूल भरी आंधी से निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, कार्यस्थल पर सुरक्षा जरूरी तथा उद्योग और प्रकृति का समन्वय। तो आइए सुनते हैं श्रमिक लोक।

0: नमस्कार जोहार श्रमिक साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम श्रमिक लोग। मैं हूं आपका दोस्त आशीष और मेरे साथ हैं श्वेता। आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार आशीष, साथ ही सभी साथियों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, बरसात के मौसम का आनंद हमारे साथी जरूर उठा रहे होंगे और साथ ही गर्मा गर्म चाय की प्याली के साथ हमारे कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होंगे।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने श्वेता। तो अब विलंब किए बिना हम अपने साथियों को बता दें कि अब हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हर परिवार, हर समाज और पूरे देश के भविष्य से जुड़ा है, विश्व जनसंख्या दिवस।
1: हाँ बिल्कुल, और हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य जनसंख्या से जुड़े मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूक करना और यह संदेश देना है कि स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त समाज ही देश की वास्तविक ताकत है।
0: बहुत सही कहा आपने। और श्वेता, हम जानते हैं कि जनसंख्या अपने आप में समस्या नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब संसाधन सीमित हों और जनसंख्या तेजी से बढ़े। बढ़ती आबादी का अवसर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास, पेयजल, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर इसका असर जरूर से पड़ता है।
1: बिल्कुल, और दोस्तों सरकार और स्वास्थ्य विभाग समय समय पर परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य टीकाकरण, पोषण और संतुलित परिवार के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं। संतुलित परिवार न केवल आर्थिक रूप से मजबूत होता है बल्कि बच्चों के बेहतर शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य देने के लिए भी सक्षम होता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है कि विश्व की जनसंख्या अगर देखी जाए और भारत तेजी से बढ़ता हुआ जनसंख्या, और हमारे लिए सबसे सुखद बात क्या है श्वेता, हम लोग कार्यशील जनसंख्या है। मतलब हमारी जो जनसंख्या है वो 15 से 35 वर्ष की आयु के बीच की वाली जो जनसंख्या है जो काम करेगी और देश को ऊपर लेकर जाएगी।
1: अब बिल्कुल, और ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे यहाँ जो कार्यशील जनसंख्या की जो बात आपने कही, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि जो हमारे श्रमिक साथी हैं वो भी उसी में आते हैं।
0: बिल्कुल, तो इसीलिए मैंने कहा कि हाँ, मिलकर काम करेंगे और भारत को विकसित करेंगे। क्यों, तो अगले विषय की ओर बढ़ते हैं।
1: हाँ
0: साथियों, क्या आपने कभी रेत और धूल भरी आंधी का सामना किया है?
1: आशीष, अचानक से आप ये हमारे श्रमिक साथियों से क्या पूछ रहे हैं?
0: हाँ श्वेता, ये सवाल अचानक से इसीलिए क्योंकि 12 जुलाई को हम हर वर्ष रेत और धूल भरी आंधी से निपटने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाते हैं। इसका उद्देश्य रेत और धूल भरी आंधियों के बढ़ते खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा पर्यावरण संरक्षण, सतत भूमि प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना है।
1: बिल्कुल, और साथियों रेत और धूल भरी आंधियां केवल दृश्यता कम नहीं करती, यानी ऐसा नहीं है कि जब धूल भरी आंधियां चलती हैं तो आपको देखने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव डालती है। और इन आंधियों के पीछे कई कारण हैं जिनमें वनों की कटाई, भूमि का अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन, सूखा और मरुस्थलीकरण। जब भूमि अपनी नमी और हरियाली खो देती है तब तेज हवाएं मिट्टी और रेत को दूर दूर तक उड़ा ले जाती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा श्वेता, और इन समस्याओं का समाधान भी हमारे हाथों में ही है। हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, जल संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझना चाहिए। सरकारों, वैज्ञानिकों, किसानों और आम नागरिकों के संयुक्त प्रयास से ही इस चुनौती का प्रभावी समाधान संभव है।
1: बिल्कुल दोस्तों, यदि धूल भरी आंधी आए तो कुछ सावधानियां अवश्य अपनाएं। बिना आवश्यकता घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। यदि बाहर निकलना पड़े तो मास्क या कपड़े से नाक और मुंह को ढकें। आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मे का उपयोग करें और वाहन चलाते समय गति धीमी रखें और पर्याप्त दूरी बनाकर रखें।
0: साथियों, स्वस्थ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन की आधारशिला है। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि प्रकृति का संरक्षण करेंगे, पेड़ लगाएंगे, जल और मिट्टी की रक्षा करेंगे तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण करेंगे।
1: बिल्कुल, और दोस्तों आपको बता दें कि इन तूफानों से 150 से अधिक देशों के 33 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हैं और वायुमंडल में फैलने वाली धूल का 75% हिस्सा प्राकृतिक स्रोतों से आता है, जबकि 25% हिस्सा मानवीय गतिविधियों जैसे अस्थिर कृषि पद्धतियों के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं। तो जरूरी है कि हम सब जागरूक हों और वृक्ष ही लगा सकते हैं हम लोग, जो हमारी जवाबदेही हो सकती है और धूल भरी आंधियों को थोड़ा कम करने में हमारी ये जो सहायता है ये बहुत सही रहेगी।
0: बहुत सारी ज्ञान की बातें आपने कर दी। अब हमारे श्रमिक साथियों इंतजार कर रहे हैं गीत संगीत के लिए, क्या इरादा है?
1: बिल्कुल, तो आइए सुना दें उन्हें एक प्यारा सा गीत।

0: वाह, क्या गीत आपने सुनवाया श्वेता।
1: तो अब दोस्तों को कुछ जानकारी भी दे दे। दोस्तों, उद्योग किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और रोजगार सृजन का मुख्य आधार है, ये तो हम सभी जानते हैं। और हमारी सभी जरूरतों और इच्छाओं की पूर्ति के लिए उद्योगों का होना बहुत जरूरी है। इसने हमारे जीवन को अधिक सुविधाजनक और समृद्ध बनाया है। और दोस्तों, यदि हम प्रकृति की बात करें तो हमें वायु, जल, भूमि, वन और खनिज जैसे अमूल्य संसाधन भी इसी से मिलते हैं।
0: बिल्कुल, लेकिन विकास की दौड़ में यदि प्रकृति की उपेक्षा की जाए तो हमारा अस्तित्व ही संभव खतरे में पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, उद्योग और प्रकृति के बीच समन्वय स्थापित करना बहुत जरूरी है। उद्योग प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर होते हैं।
1: हाँ आशीष, बिल्कुल सही कहा आपने। कच्चा माल, जल, ऊर्जा और भूमि, ये सभी प्रकृति से ही तो प्राप्त होते हैं। और यदि इन संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया जाए तो पर्यावरण का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। और इसीलिए उद्योगों का विकास इस प्रकार होना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी होता रहे और आर्थिक विकास भी होता रहे।
0: हाँ श्वेता, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि अनियंत्रित औद्योगिकीकरण के कारण वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण में भी लगातार वृद्धि हो रही है। कारखानों से निकलने वाले धुएं और रासायनिक अपशिष्टों से पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। वनों की कटाई के कारण जैव विविधता का ह्रास हो रहा है और जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान में वृद्धि जैसी समस्याएं भी इसी का परिणाम है।
1: और यदि समय रहते इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: और इसीलिए दोस्तों, उद्योगों को पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, अपशिष्ट पदार्थों का वैज्ञानिक ढंग से निपटान करना चाहिए, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का प्रयोग और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है।
0: हाँ दोस्तों, सरकार के पर्यावरण संबंधी नियमों का कठोरता से पालन करना जरूरी है। साथ ही लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी अत्यंत आवश्यक है। वास्तविक विकास वही है जो आर्थिक प्रगति के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा की भी सुनिश्चितता करे।
1: बिल्कुल, और उद्योग और प्रकृति एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। यदि हम संतुलित विकास की नीति अपनाएं तो वर्तमान और भविष्य दोनों सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए उद्योग और प्रकृति का समन्वय ही सतत विकास और मानव कल्याण का आधार है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और श्वेता, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अब तो श्रमिक लोग में कार्य कुशलता भी आ रही है, और श्रमिक और कौशल, ये विषय भी हम जानते ही हैं कि हाँ, ये जो है, अब श्रमिकों को अगर कार्य कुशल होना है तो कौशल विकास करना जरूरी है।
1: ये बहुत सही कहा आपने, क्योंकि हम जिस पद्धति से जो काम कर रहे होते हैं, जो हमारे श्रमिक साथी यदि पुरानी पद्धति को लेकर चलते हैं तो उनका जो काम करने की जो क्षमता

0: होती है, साथ ही जो उत्पादन की जो गुणवत्ता होती है वो सभी प्रभावित होती है। यदि वो स्किल डेवलपमेंट का कोई कोर्स कर लें या कोई प्रशिक्षण ले लें तो इससे क्या होगा कि आपके द्वारा जो काम में जितनी समय लग रहा है, जितना जो सामान आपका यूज हो रहा है और जिसमें आपका जो प्रोडक्शन है, ये सभी बेहतर हो जाएगा, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी।
1: भरोसेगा तो इसी चीज को और जानने के लिए अपने साथियों को एक वार्ता सुनवाते हैं श्रमिकों में कौशल विकास, और वार्ताकार है नम्रता सिन्हा।
2: भारत जैसे विकासशील देश में श्रमिक वर्ग का समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। निर्माण कार्य, कृषि, निर्माण उद्योग, सेवा क्षेत्र आदि में श्रमिकों की अहम भूमिका होती है, परंतु यह वर्ग शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में प्रायः पिछड़ा रहता है। वर्तमान समय में जब तकनीकी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, तो ऐसे में श्रमिकों को शिक्षा और कौशल विकास की जानकारी रखना अति अनिवार्य हो गया है। हमारे देश में बड़ी संख्या में श्रमिक अशिक्षित या अल्प शिक्षित होते हैं। इनमें कई लोग बाल्यावस्था से कामकाज में लग जाते हैं और औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इस कारण भी श्रमिक बेहतर नौकरी या रोजगार के अवसरों से वंचित हो जाते हैं और न्यूनतम मजदूरी पर निर्भर रहते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि श्रमिकों को अच्छे मुकाम हासिल करने के लिए शिक्षित होना और कौशल विकास में निपुण होना बहुत ही आवश्यक है। इनके बिना श्रमिकों का विकास किसी भी हाल में संभव नहीं है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति न केवल ज्ञान प्राप्त करता है बल्कि आत्मविश्वास, जागरूकता और निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित करता है। श्रमिकों को शिक्षा प्रदान करने से वे अपने अधिकारों को बेहतर समझ सकेंगे, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति भी सजग हो सकेंगे और इसके साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में उनके सुधार होगा, जिससे श्रमिकों में कौशल विकास का ज्ञान भी महत्वपूर्ण है। आज का युग तकनीक और दक्षता का है। कौशल विकास का अर्थ है श्रमिकों को आधुनिक तकनीकों, उपकरणों, कार्य प्रणालियों और बेहतर कार्य कुशलता की जानकारी देना, ताकि वे अपने कार्य को अधिक दक्षता और गुणवत्ता के साथ कर सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि श्रमिकों में कौशल विकास के ज्ञान का बहुत ही महत्व है। कुशल श्रमिकों को रोजगार के अधिक और बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। वे सिर्फ एक ही क्षेत्र में सीमित नहीं रहेंगे बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में भी श्रमिक कार्य करने में सक्षम हो सकेंगे। इसके साथ साथ वैसे श्रमिक जो कौशल प्राप्त हैं, वे अधिक वेतन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। कौशल विकास के ज्ञान से श्रमिकों में स्वावलंबन की भावना जागृत होगी। इससे श्रमिक आत्मनिर्भर बनते हैं और दूसरों पर निर्भरता कम होती है। इसके साथ साथ श्रमिकों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब श्रमिक कुशल बनते हैं तो वे अधिक उत्पादन करते हैं, जिससे देश का विकास होता है और निर्यात क्षमता बढ़ती है। प्रशिक्षित श्रमिक सुरक्षित तरीके से काम करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी कम होती हैं और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कौशल विकास ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों को उनके ही क्षेत्र में रोजगार दिलाने में मदद करता है, जिससे उन्हें बड़े बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ता है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन आदि कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसके तहत श्रमिकों को मुफ्त प्रशिक्षण, प्रमाण पत्र और रोजगार सहायता दी जाती है। ऐसे ही श्रम शिक्षा भी श्रमिकों को सशक्त बनाने, उनके करियर की संभावनाओं की को और आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। इसलिए श्रम शिक्षा को अपनाकर श्रमिक अपने पेशेवर जीवन में काफी सुधार कर सकते हैं। शिक्षा से श्रमिक अपने पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वे बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा श्रमिक अपने श्रम अधिकार, मजदूरी कानून, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं आदि के बारे में जागरूक हो सकते हैं। शिक्षा श्रमिकों को नए कौशल सीखने और तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है, जिससे वो अपने जीवन में आर्थिक प्रगति कर सकते हैं। जब श्रमिक शिक्षित होते हैं तो वे अपने बच्चों को भी शिक्षित करते हैं, जिससे बाल श्रम की समस्या समस्या कम होती है। शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है, इससे वो अपने अधिकारों को जान पाएंगी और घरेलू हिंसा या किसी प्रकार के शोषण के खिलाफ आवाज उठा सकेंगी। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि श्रमिकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करें ताकि आने वाला उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके। शिक्षा एवं कौशल विकास दोनों ही श्रमिकों के लिए अति आवश्यक है। श्रमिकों को संज्ञानात्मक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बढ़ाती है, वहीं कौशल विकास उन्हें व्यवहारिक अनुप्रयोग और बदलते नौकरी बाजार के अनुकूल बनाने के लिए मदद करता है। शिक्षा श्रमिकों को नियोजित करने के लिए आवश्यक आधार प्रदान करती है। शिक्षा का स्तर जितना अधिक होगा, रोजगार की संभावना उतना ही अधिक होगी। शिक्षा श्रमिकों को बेहतर आजीविका प्राप्त करने में मदद करती है। शिक्षा के माध्यम से उच्च वेतन वाली नौकरी प्राप्त हो सकती है। इसके साथ साथ कौशल विकास श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि करता है, इससे संगठन और अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ होता है। कौशल विकास श्रमिकों को आजीवन सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है और वे अपनी शिक्षा को लगातार अपडेट कर सकता है और अपनी कौशल को और बेहतर बना सकता है। भारत जैसे विकासशील देश में श्रमिक वर्ग देश की रीढ़ होते हैं, चाहे निर्माण कार्य हो, उद्योग हो, खेती या सेवा क्षेत्र, हर जगह श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन अधिकतर श्रमिक अशिक्षित होते हैं, जिसके कारण वो आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो पाते। इसलिए उन्हें शिक्षित करना और कौशल विकास को बढ़ावा देना हमारे देश के तरक्की के लिए अति आवश्यक है। इसलिए दोस्तों, हम कह सकते हैं कि शिक्षा और कौशल विकास श्रमिकों को केवल नौकरी पाने के योग्य नहीं बनाता, बल्कि उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करता है। यह सामाजिक समानता और आर्थिक प्रगति की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। सरकार, समाज और उद्योगों को मिलकर श्रमिकों के लिए ऐसे अवसर बढ़ाने चाहिए ताकि भारत एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र बन सके। इस तरह शिक्षा और कौशल विकास दोनों ही श्रमिकों के लिए अति आवश्यक हैं।
0: तो दोस्तों, अभी आपने जाना कि श्रमिकों में कौशल विकास कितना जरूरी है, और इस वार्ता की वार्ताकार थी नम्रता सिन्हा। और अब आशीष, हमारे जो साथी हैं वो कई जगहों पर काम करते हैं, जैसे कारखाने में काम करते हैं, सड़क निर्माण, बिल्डिंग निर्माण, निर्माण कार्यों में जुटे होते हैं। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि कार्यस्थल पर या कहीं भी काम के दौरान सुरक्षा संबंधित चूक हो सकती है या कोई लापरवाही हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो कार्यस्थल पर सुरक्षा केवल एक नियम नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी हो। सुरक्षित वातावरण में व्यक्ति बिना किसी भय के अपने काम को पूरी लगन के साथ कर सकते हैं, और साथ ही इससे दुर्घटनाओं की संभावना भी कम हो जाती है और कार्य भी प्रभावित नहीं होता है।
1: हाँ श्वेता, सुरक्षित कार्यस्थल कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है तथा कार्यस्थल की प्रतिष्ठा और विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। दोस्तों, कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना आवश्यक है।
0: बिल्कुल सही कहा आशीष, और कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी को समय समय पर सुरक्षा संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जहां आवश्यकता हो वहां हेलमेट, दस्ताने, सुरक्षा जूते, मास्क और अन्य सुरक्षा उपकरणों का उपयोग जरूर करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और श्वेता, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कितने लोग ऐसे बोलते हैं कि ये हमें प्रशिक्षण लेने की क्या आवश्यकता है, हम तो जानते ही हैं हेलमेट कैसे पहनना है, सुरक्षा उपकरण कैसे पहनना। लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा कि नहीं, आप जरूर प्रशिक्षण में लें, क्योंकि कुछ ऐसी बारीक बातें होती हैं। अब जैसे मैं ही हेलमेट पहनता था, मुझे याद है मैं ऐसे लगाया और निकल गया। अचानक से मेरे एक मित्र ने कहा कि भाई हेलमेट के नीचे भी बेल्ट होते हैं, उसे लगाना चाहिए, क्योंकि तुम गिरोगे तेजी से तो हेलमेट खुलकर बाहर निकल जाएंगे और आपको चोट पहुंच जाएगी। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप प्रशिक्षण लें और जिन नियमों को बताया गया है, जिन उपकरणों को पहनने का सही तरीका बताया गया है, आप उसको पूरी तरीके से फॉलो करें।
0: बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है।
1: साथ ही अग्निशामक यंत्र, प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड किट की व्यवस्था और आपातकालीन स्थिति में विकास निकास मार्ग हमेशा उपलब्ध होना चाहिए, जो कार्यशील होना चाहिए, न कि आपातकाल में कोई लापरवाही हो जाए और मशीनों को नियमित जो है आपको साफ सफाई और ये सब करते रहना चाहिए, निरीक्षण करते रहना चाहिए, रखरखाव उसकी आवश्यक है, जिससे तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाएं ना हो।
0: हाँ बिल्कुल। और दोस्तों, कार्यस्थल की सुरक्षा सिर्फ प्रबंधन की ही नहीं बल्कि प्रत्येक कर्मचारी की भी जिम्मेदारी है। यदि कोई व्यक्ति सुरक्षा नियमों की अनदेखी या लापरवाही करता है तो वह स्वयं के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी खतरे में डालता है। इसलिए सभी को अनुशासन, सावधानी और जिम्मेदारी का पालन करना ही चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा श्वेता, हमने सुना है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी ही सुरक्षा है। सुरक्षित कार्यस्थल स्वस्थ कर्मचारियों और बेहतर उत्पादन और राष्ट्र के विकास का आधार है, इसलिए हमें हमेशा सुरक्षा नियमों का पालन करना ही चाहिए, साथ ही दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करना चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल, और दोस्तों मुझे लगता है कि हमारे कार्यक्रम में एक और खूबसूरत फिल्मी गीत को भी सुनाना चाहिए, क्योंकि हमारे साथी जानकारियां तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ थोड़ा मनोरंजन होता रहे तो कार्यक्रम

0: बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनवाया, और ये जो सुरक्षा की बात आपने की और इसके साथ ये प्यारा सब गीत था, ये दोनों जो कॉम्बिनेशन था आपके दिमाग में कैसे आया ये सब?
1: बिल्कुल, हम तो मुझे लगता है कि जो हमारे श्रमिक साथी हैं उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा शांत माहौल वाला कोई गाना ऐसा सुना जाए जो उनके दिल को छू जाए, और मुझे लगता है कि जरूर हमारे श्रमिक साथियों को बहुत पसंद आया होगा ये गाना।
0: और इससे क्या है, मानसिक शांति मिलती। संगीत हमेशा क्या है श्वेता जी, हमेशा जो है मन को शांत कर देता है।
1: बिल्कुल,
0: आप अगर थकान में हैं, घर पे आए हैं, आप एक अच्छा गीत सुन लेते हैं, एक अच्छा संगीत सुन लेते हैं, तो आपकी थकान जो है, मानसिक थकान, मानसिक तनाव, ये दूर हो जाती है।
1: बिल्कुल, क्योंकि हर गीत का एक अलग अलग मोड होता है, जो आप उस मोड में सुन सकते हैं जो आपको अच्छा लगेगा। और हम लेकिन अपने श्रमिक साथियों को सिर्फ गीत संगीत पर ज्यादा जानकारी न दे दें, बस चलते चलते एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहते हैं कि श्रमिक साथी अपने दिनचर्या में जो आपका जो जो दिनचर्या में आप कहीं भी जो काम करने जाते हैं वहां पे घर का खाना लेकर के जाएं, घर का पानी लेकर के जाएं,
0: क्योंकि
1: ये बहुत जरूरी है
0: कि अभी बैक्टीरिया पनपते हैं, आप बासी खाना खाएं या ठंडा खाना पानी पिए तो आप बीमार हो सकते हैं। अपने पोषण का और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा।
1: इसके लिए कोई और आपको नहीं बोलने जाएगा, आपको खुद ही इसके लिए सतर्क होना होगा, सावधान होना होगा, ताकि आप अपने शरीर की सुरक्षा खुद रख सकें। क्योंकि यदि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप पूरी ऊर्जा के साथ काम कर सकेंगे, अपने परिवार की देखभाल कर सकेंगे। इसलिए अपने साथ साथ अपने परिवार की भी
0: देखभाल करेंगे। हाँ। और बारिश में भीगने से भी बचने के लिए आप संदेश दीजिए। और बातचीत तो बहुत हो गई, अब वक्त की तरफ भी तो देखिए, घड़ी हमें इतनी की इजाजत देता है श्वेता।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वक्त हो ही चला है हमें आप सबों से विदा लेने का, तो फिर हम आपसे मिलेंगे। और दीजिए अपनी दोस्त श्वेता
0: और आशीष को इजाजत।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रमिक लोग, कंपेयरिंग कर रही थी श्वेता आर्य और आशीष कश्यप, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि रांची में सफाई पर विशेष ध्यान देने वाले वार्डो को स्वच्छ वार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार हर माह दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री आज रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री सेठ ने कहा कि वेंडर्स की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर रांची में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि एम्स और रिम्स 2 के निर्माण से चिकित्सकों की कमी दूर होगी। रांची में कल आयोजित होने वाली झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026 को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है, जो कल सुबह 7:30 बजे से शाम 4 बजे तक प्रभावी रहेगी। खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र में आज एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। गंभीर रूप से घायल युवक का रिम्स रांची में इलाज चल रहा है। और रांची जिला योग संघ की ओर से 2 दिवसीय रांची जिला योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज रांची में शुरू हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। पहले दिन सीनियर वर्ग की स्पर्धाओं में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने योगासन का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल जूनियर वर्ग की स्पर्धाएं और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित होगा। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी, प्रस्तुति है प्रभु शरण की।

0: किसान वाणी कार्यक्रम में किसान भाई बहन मनकर स्वागत है। संध्या बहन
1: और जुगनी बहन कर जोहार।
0: बता देवीला कार्यक्रम कर प्रायोजक हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। पहले जानेला आज हमरे काका जानकारी करब इकर बारे में और करब रोज दिन तरी मौसम कर हाल जानक से तले कटी गुठियाब हमरे मन मधुमक्खी पालन कर बारे में। आज की बात में जानकारी करब झारखंड में कृषि वानिकी कर का संभावना है बताबें डॉक्टर तन्मय कुमार। और कुरमाली में कृषि गीत सुनब तले नई उम्र की नई फसल में एगो सफल महिला किसान बहिन से करल गोइठ के हमरे मन सुनब। तो बहिन और करेला मौसम कर हाल जाने से है नहीं
1: तो और करेला मौसम कर हाल से तो मौसम विज्ञान विभाग बटले मिलल सूचना के मुताबिक राज्य में बदरी ढपले रहलक रहे और राज्य में कोनो कोनो ठाँ बटले जोर से बरखा कर भी संभावना है और बरखा भी हुए लागल है और आज का तापमान इतर आकल गलक है। राजधानी रांची कर अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर कर अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री। डाल्टनगंज कर अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री। देवघर कर अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री। वह तर गढ़वा कर अधिकतम तापमान है 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। तो ई रहे आज कर मौसम कर खबर।
0: हाँ तो जुगनी बहन खेती तो किसान भाई बहन मन सालों भर करबे कर है ना और आजकल देखो अतिरिक्त आमदनी लागिन अने खेती कर संगे संगे कोनो और काम कर ले हो फायदा होवेला है ने
1: एकदम नगद गोइठ रो रे कहली। और देखो एखन बरखा कर दिन है के और खेत बारी में काम भी बिसेर जाए है कि नहीं और किसान भाई मने देखो खेत में धान कर रोपनी ले बिचड़ा मन भी गिराए लगल है और कोनो कोनो ठाँ बटले भी के रोपा भी रोपे लागल है कि नहीं। हाँ। देखो कोनो कोनो ठाँ बटले बरखा पानी बढ़िया देवत है और बीड़ा मन भी तैयार हो गलक है तो रोपा मन भी शुरू हो गलक है रोपने करे लागल है। और देखो हमरे घर भी अखन अब बीड़ा तैयार हो जाए है वर्ष बरखा कर आसरा है तने तने अखन पानी खेत में आए तो तनी जोते के लिए दिक्कत होवे थे तो और तनी बरखा कर आसरा देखे लागल है। अगर बरखा पानी होगी तो हमरे भी रोपा शुरू कर देव और देखो खेत में तो हमरे धान उन लगाबे करी ला खेती बाड़ी करी ला लेकिन संगे संगे हमरे के अतिरिक्त आमदनी कमाए खातिर हमरे के कुछ कुछ और दूसर व्यवसाय है जैसे मधुमक्खी पालन है मुर्गी पालन है गाय पालन है तो ये सब व्यवसाय के भी हमरे के अपनायक है। हाँ। और देखो खास करके अगर हमरे मधुमक्खी पालन कर बात करी ला तो ये मधुमक्खी पालन है जे कि छोटे कुन जगह में और कम लागत में बढ़िया हमरे आमदनी ले सकेला। तो किसान भाई मने अगर मधुमक्खी पालन करे चाहे ना तो अगर छोटे सुना जगह है तो मैंने शुरू कर सके ना और उससे अतिरिक्त आमदनी ले सके ना है।
0: हाँ, लेकिन अगर देखो कोनवे काम करे जाती हमरे मन तो कटी सन प्रशिक्षण ले लो अब नहीं तो हमरे मन के बगरा लाभ हुई
1: एकदम गोइठ बहुत सुंदर कह ले रो रे कि अगर हमरे प्रशिक्षण लेके कोनो काम के शुरू करीला तो हमरे बहुत अच्छा तरीका से कर सकेला है। हाँ, कि नहीं तो हमरे के कोनो काम करे से पहले प्रशिक्षण लेवे बहुत जरूरी है तो हमरे प्रशिक्षण लेवे खातिर तो जैसे अगर कोनो ठा प्रशिक्षण देवत है जैसे रांची में ही है तो देखो रामकृष्ण मिशन में भी बढ़िया प्रशिक्षण मिलेला और कृषि विज्ञान केंद्र है कांके में है तो वहाँ भी हमारे प्रशिक्षण लेके अगर इस सब व्यवसाय के शुरू कर सकेला है कि नहीं।
0: सही कहली जुगनी बहन तो हमरे मन आगे गुठियाते रहब लेकिन देखो
1: जानकारी भी
0: जानकारी भी संगे संगे करब तो आज की बात में हमरे मन जानकारी करीला झारखंड में कृषि वानिकी कर का संभावना है बतात हैं डॉक्टर तन्मय कुमार और इनकर से गुठियाए हैं मनोज कुमार
2: का स्वागत है। नमस्कार।

0: उगाना ही मेन लक्ष्य नहीं है, उसको क्या होता है पहले से कौन सा चीज प्रोड्यूस करे, कौन सा अच्छा चीज प्रोड्यूस करे और उसको हार्वेस्ट कैसे करे, उसको ब्रांडिंग, लेबलिंग, मार्केटिंग ऐसा करे जिसको आपको प्रॉफिट 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 10 गुना हो सकता है। तो एग्री बिजनेस होता है ऐसा एक टेक्निक जो मल्टीडिसिप्लिनरी टेक्निक है जिसके माध्यम से किसानों को आय बहुत गुना बढ़ सकता है।
1: तो बाकी कृषि जो हम लोग सामान्य कृषि है उसे अलग कैसे है ये?
0: यह जो हमारा मेन जोर दिया जाता है जो मार्केट में कौन सा डिमांड है उसी हिसाब से एक मार्केट इंटेलिजेंस बोल के एक चीज होता है जिसके हिसाब से किसान प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद जब प्रोडक्शन हो जाएगा वो प्रोडक्शन का गुणवत्ता जांच होगा, गुणवत्ता जांच होने के बाद उसको ग्रेडिंग होगा, ग्रेडिंग होने के बाद उसको पैकेजिंग होगा, उसको ब्रांडिंग होगा, उसको न्यूट्रिशनल लेवलिंग होगा और एक अच्छा मार्केट में उसको हाई मतलब अच्छा से प्रोड्यूस प्रस्तुत किया जाएगा जिसके वजह से नॉर्मल मार्केट से तुलना में उसको ज़्यादा गुना पैसा मिलेगा।
1: सही बात है किसान भाई, उसके बारे में हमें जानना भी चाहिए और अपनी आय को बढ़ाने भी चाहिए। अच्छा सर बताइए कि झारखंड में कृषि वानिकी की क्या महत्व है?
0: देखिए झारखंड दूसरा उत्तर भारत का प्रदेश से थोड़ा सा अलग है। यहाँ बाई डिफॉल्ट ये ऑर्गेनिक स्टेट है, यहाँ सदियों से किसान अपना जो घर में कैटल है, जो गाय बछड़ा जो उसका गोबर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ कभी रासायनिक खाद यूज़ नहीं किया गया है। तो बाय डिफॉल्ट ये ऑर्गेनिक है। आज देखेंगे सारा भारत में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मार्केट कितना हाई हो गया। दूसरा बात है झारखंड का क्लाइमेट बहुत अलग है। जब पूरा उत्तर भारत गर्मी में जूझ रहा है अभी, तब झारखंड में एक बहुत अच्छा एक पर्यावरण है जिसके वजह से बहुत सारा अलग अलग सब्जी फल यहाँ उगता है। इवन हमारा नेतरहाट में जैसे कश्मीर जैसे जैसे सेब हो रहा है, हमारा नाशपाती हो रहा है। तीसरा बात है ये छोटा नागपुर प्लेटू का एक अनोखा चीज़ है, लोग इनको कोयला और स्टील से जानते हैं लेकिन उसके बाद में भी यहाँ ग्रीन गोल्ड हो सकता है क्योंकि यहाँ सॉयल बहुत फर्टाइल है, इसका सॉयल में बहुत खनिज है जिसके वजह से सब्जी जब उगाते हैं वो बहुत स्वादिष्ट होता है।
1: तो झारखंड के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं क्या?
0: हाँ बहुत सारा संभावना है। सबसे बड़ा संभावना है यहाँ का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को मार्केटिंग। यहाँ बाय डिफॉल्ट बहुत सारा ट्राइबल फूड सिस्टम में प्रोड्यूस उगता है, जैसे आपको हो गया महुआ हो गया, इमली हो गया, इस तरह से बहुत सारा ट्राइबल फूड बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिकली उगता है। उसको हम अच्छा से प्रोसेसिंग करके ब्रांडिंग करके इंटरनल मार्केट ही नहीं है एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप रिसेंटली देखे होंगे झारखंड का आम देश गए हैं, उसको लेके बहुत अच्छा चर्चा हुआ। ये छोड़ के झारखंड में यहाँ जो बहुत सारा प्रोड्यूस है जैसे हमारा मटर होगा, हरा मटर हमको यहाँ सबसे अच्छा क्वालिटी का आपको स्वीट कॉर्न होता है, इसको हम अगर फ्रोजन स्वीट कॉर्न बनाए और इसको प्रोसेसिंग करें इसको बहुत अच्छा एक मार्केटिंग हो सकता है। तीसरी बात है यहाँ बहुत सारा डैम है जहाँ केज कल्चर करके बहुत अच्छा गुड क्वालिटी फिश प्रोडक्शन हो सकते हैं। नेचुरली न्यूट्रिशन रिच सॉइल, जब वो पानी मिलता है उसको स्वाद बहुत अच्छा होता है। चौथा यहाँ ट्राइबल एरिया में आप जाएंगे बहुत सारा देसी मुर्गी होता है जिसका मांस दूसरा मुर्गी से बहुत स्वादिष्ट होता है, जिसमें न्यूट्रिशन बैलेंस बहुत अच्छा होता है, साथ में इनका अंडा न्यूट्रिशनली बहुत रिच हो सकता है। हम अगर यही सबको अच्छा से न्यूट्रिशन लेवलिंग करके पैकेजिंग करके मार्केटिंग कर सकते हैं अच्छा हमको ऐसा मिल सकते हैं। पांचवा जो यहाँ है यहाँ लॉजिस्टिक सपोर्ट का बहुत स्कोप है क्योंकि झारखंड में बहुत दिन से यहाँ लॉजिस्टिक सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। तो कोल्ड चेन मैनेजमेंट, आपको जैसे कोल्ड चेन मैनेजमेंट छोड़ के कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी लघु उद्योग करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ सीजन में जो आपको पपीता उठता है बहुत स्वादिष्ट पपीता उठता है, उसी के लिए हम अगर यहाँ से राइपनिंग चेंबर का ओपन करें तो उसमें भी एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं।
1: जैसे कृषि वानिकी के बारे में अगर हम ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसान भाई जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो कहाँ जुड़े, कैसे जुड़े और कहाँ संपर्क कर सकते हैं?
0: हमारा संस्थान ICRRCR जो पलांडू में सिचुएटेड है, हम 9 साल से एग्री बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा संस्थान के अंदर में एक यूनिट है जिसके नाम है ABI, ABI मतलब एग्री बिजनेस इन

0: इंक्यूबेशन सेंटर। इसके अंदर में जो लोग हमारा बिजनेस एग्रीकल्चर बिजनेस लेके सलाह लेने के लिए आते हैं, हम उनको सलाह देते हैं, हम एक साल के लिए उनके साथ एक MOU साइन करते हैं, उसके बदले में हम उनको अलग अलग विषय में, जैसे आपको ब्रांडिंग कैसे करना है, उसको कोई प्रोडक्ट को मार्केटिंग करना क्या है, उसको कैसे लेवलिंग करना है, उसको मार्केट में मार्केट इंटेलिजेंस कैसे पकड़ना होता है, गवर्नमेंट से कहाँ से फंड के लिए कैसे फॉर्म भरते हैं, हर तरह का हम सहायता करते हैं।
1: कृषि वानिकी के संबंध में आपने जो संस्था का नाम लिया, उससे जुड़ने के लिए हम कैसे जुड़ सकते हैं, किस तरह जुड़ सकते हैं?
0: देखिए, हमारा इसमें जोड़ने के लिए बहुत सारा जो इंडिविजुअल लोग हो और FPO हो और कोई स्टार्टअप हो, वो हमारे पर संपर्क करे हैं। मेरा नाम तन्मय कुमार कोले है और मैं यहाँ बरियो वैज्ञानिक, मेरा फ़ोन नंबर है 9369641602। इस विषय में आप अगर जुड़ना चाहते हैं मेरे से संपर्क करिए। उसके बाद आपको हम लोग एक फॉर्म दिया जाता है हमारा तरफ से, वो फॉर्म भरने के बाद एक MOU होता है और एक साल के लिए हम लोग एक कॉन्टैक्ट करते हैं, उसमें जो एग्रीकल्चर बिजनेस रिलेटेड जो सहायता चाहिए हम आपको प्रदान करेंगे।
1: इससे जुड़ने के लिए कौन कौन से किसान जुड़ सकते हैं और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन अगर होना चाहिए?
0: आप सही प्रश्न पूछे हैं। पहले लास्ट 9 साल से हमारा 19 इंडिविजुअल इवन ग्रुप, तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं उसमें। कोई अगर इंडिविजुअल किसान आए वो भी जुड़ सकते हैं, और नहीं तो कोई FPO महिला उद्योग और स्टार्टअप जुड़ सकते हैं। रिसेंटली हमारे साथ एक सिमडेगा का बेली SHG ग्रुप सिमडेगा से है, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में काम कर रहे, वो लोग हम लोगों को जुड़ने का इच्छा प्रदान किया है। तो इस तरह से SHG है हमारा, FPO है, आजकल आप नाम सुने होंगे बहुत सारा FPO की बात चल रहा है, तो FPO हमारे पास आई है, हम लोग फॉर्म देंगे उसके साथ जुड़ते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा एडुकेशन का जरूरत नहीं होता है, आप हमारे साथ डिटेल्स जानने के लिए आप संपर्क करिए।
1: कृषि वानिकी के बारे में हमारे किसान भाई को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: झारखंड के किसान भाइयों बहनों और युवक जो उद्यमी हो, सबको मेरा संस्थान की तरफ से सादर अभिनंदन। यहाँ बहुत अपार संभावनाएं हैं, यहाँ मिट्टी में ये मिट्टी कहता है, ये मिट्टी बस लोहे कोयला से ही भरपूर नहीं है, ये मिट्टी जैव कण कण में भरे है, यहाँ बहुत पर्यावरण बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत अलग अलग किस्म का प्रोडक्ट उग सकते हैं, इसका प्रोसेसिंग का भी बहुत सारा स्कोप है क्योंकि एक बिजली सरप्लस स्टेट है, तो बहुत सारा स्कोप है। हमारा एक ही निवेदन है, जो आप लोग यंग लोग हो, आ जाओ हमारे साथ जुड़ो, हम आपको सहायता करके कैसे एक साथ मिलके एग्री बिजनेस में आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, जरूर सहायता करेंगे। धन्यवाद।
1: सही बात है किसान भाइयों, अगर आप भी कृषि वानिकी से जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़ें और अपनी आय को बढ़ाने में ये काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। तो हमारे किसान भाई को कहना चाहेंगे कृषि वानिकी से जुड़ें। तो किसान भाइयों, आज आपने जाना झारखंड में कृषि वानिकी की संभावनाएं के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए मौजूद थे डॉक्टर तन्मय कुमार कोले। कोले जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।
2: तो इखन हमारे मन जानकारी करत रही, झारखंड में कृषि वानिकी कर का संभावना है, इकर बारे में बतात रहे डॉक्टर तन्मय कुमार और इनकर से गुठियात रहे मनोज कुमार।
3: तो बहिन, हाँ, जानकारी कर संगे संगे कटी कटी रिज रंग भी कर करते चलब तो और बेस लागी है नहीं?
2: एकदम एकदम रोरे का हमरे भी सोचत रही कि रिज रंग करे चाहिए और रोरे हमारा गोइट के लुइट के कहली कि हमरे के रिज रंग करे चाहिए। तो एकदम देखो काम कर संग कोनो कोनो जानकारी कर संगे अगर हमरे रिज रंग करीला तो हमरे कर थकल मन भी दूर होवेला और मन भी बढ़िया रहेला है कि नहीं, और काम करे के लिए भी बेस लागेला। तो चलो हमरे कुरमाली लोकगीत कर संगे रीच करीला कलाकार हैं अजीत कुमार महतो और उकर संगी मन।
3: हाँ।

0: तो जुगनी बहन कुरमाली में कृषि गीत सुन ली हमरे मन अजित कुमार महतो और संगी मन कर गावल। अब आगे बताओ हमरे मन का सुनब।
1: देखो गीत तो बड़ा बेस लगलक मन के रिझा देलक, मन तो ऐसा करत रहे कि गीत सुनते रहब, लेकिन कार्यक्रम के हमरे के आगे बढ़ाए के और आगे कार्यक्रम में हमरे किसान से करल बातचीत के सुनब, जे कि महिला किसान है पुष्पा देवी, बहुत ही सफल किसान है। तो चलो इनकर गोइठ के हमरे सुनीला और इनकर से गोठिया है अरविंद कुमार मिश्रा।
2: रोरे मन से बराबर हमरे मन नवा नवा किसान से, कुछ जानकार किसान से, कुछ प्रगतिशील किसान भाई मन से हमरे मन भेंट करवाते रहिला। लेकिन आज एक महिला किसान से रोरे मन कर भेंट हम करवाए खोजत थी। और ये महिला किसान जो है नी प्रगतिशील किसान नहीं बल्कि सफल किसान है। और खेती बाड़ी कर जब भी बात होला नी तो बगरा हमरे मन बात करीला पुरुष मन कर, मर्द मन कर किसान मन बात करीला, लेकिन महिला मन कर हमरे मन चर्चा बहुत कम करीला। लेकिन रोरे मन के हम बताए देवे खोजिला कि महिला कर बिना खेती बाड़ी अधूरा है। कौन में काम हो महिला मन कर जब तक सहयोग नहीं होगी तब तक काम अधूरा मानल जाएला। घर कर सुंदरता भी महिला मन से है। पिठोरिया कर रहे वाला पुष्पा देवी जे की सफल किसान है, कई एक मौके पर इनके खेती बाड़ी वास्ते पुरस्कार भी भेटा है इनके, ताव इनकर से पहले हमरे मन भेंट कर थी। रोके बहुत बहुत जोहार है, स्वागत है हमरे मन कर कार्यक्रम में। जोहार
3: जोहार।
2: पुष्पा देवी जी रोरे बहुत सफल किसान ही और ऐसे भी पिठोरिया क्षेत्र के रांची भर में नहीं गोटा राइज में जानल जाएला खेती बाड़ी वास्ते, तो रोरे भी एक सफल किसान ही। तो रोरे खेती बाड़ी कर शुरुआत कैसे?

0: करली, कैसे रोके भी लागल की खेती बाड़ी का काम करे के चाहिए?
1: खेती बाड़ी का शुरुआत तो हमारे मायके में भी होत रहे, फिर शादी होलक ससुराल में भी भेलक, वही सब देखते देखते सीख ली। और कोई धंधा पानी नहीं रहे तो करना जरूरी रहे, उधर से घर चलत रहे, परिवार चलत रहे।
0: रोल आपन कितना जमीन है जेकर में रोल खेती बाड़ी का काम करी ला?
1: करीब हम इनके 8-10 एकड़ जमीन है,
0: शेकर में सब्जी कर खेती हुए ला।
1: सब्जी कर खेती।
0: सब्जी में रोरे बगरा कौन कौन किस्म कर खेती करी ला?
1: हमरे 3 फसल ले ला, एगो लत्तर फसल ले ला, एगो आसिन कार्तिक में कोबी ले ला, और एगो जाड़ा सीजन में बंधा गोभी बैगन सब कर खेती ले ला, टमाटर।
0: साल भर में रोरे कहली कि 3 फसल ले ला, तीनों फसल में अलग अलग तरह का रोरे खेती बाड़ी कर बात कर ली। तो हम चूंकि रोरे सफल किसान ही, तो सफलता रोके कैसे मिलक? रोरे अपन खेती में का प्रयोग कर ली, कैसे रोरे सफल होली?
1: कुछ तो घर वाला से सीख ली, कुछ वैज्ञानिक तरीका से भी सीख ली, कोई फिर कोई गांव घर वाला भी बता लाए, इस तरह से देखते करते हुए सीख ली है। और प्रयोग करते करते फिर हैबिट हो गया, अब अपने से भी कर ले, लेबर लगा ले और अपने से भी पूरा खेती कर ले।
0: तो जैसे कि रोरे सब्जी मनकर खेती करी ला, तो सलाना कितना ऊपर में रोके आमदनी हो जाएगा?
1: हमीन के सालाना में करीब 4-5 लाख रूपया आ जाते रहे
0: सब्जी कर खेती उत्पादन करके। नहीं तो जैसे बेचे के वास्ते तो की बड़ी पैमाना में रोड़े मन खेती करेला, 8 एकड़ में जैसे रोड़े कहली कि अपन सब्जी कर खेती रोड़े मन उत्पादन करेला, तो इतना बगरा जब उत्पादन होला तो बेचे के वास्ते रोड़े मन बाजार तो नहीं लेगा, तो कैसे करेला?
1: ओके, हमीन एगो गाँव में किसान मन संगठन बना है कि सबकर सब किसान कर सब्जी के जो फ्रेश सब्जी है सके एक जगह जमा करके ओके बुकिंग करेना, उकर बादे ट्रक मंगा के कलकत्ता भेजना, टाटा भेजना, उन्हें डाल्टनगंज भेजना, ऐसे बाहर बाहर भेजना, धनबाद भेजना।
0: तो मतलब एक तो किसान संगठन रोड़े मन का चलते है यहाँ पिठोरिया में, और बाहर कर जो भी बाजार है उकर से रोड़े मन कोऑर्डिनेशन करी ला। कैसे पता चलेला कि बाहर का रेट चलत है?
1: आज तो कल तो फोन का जमाना है, पहले तो चिट्ठी भेजत रहे, और किसान मन के पहले एडवांस पैसा देवत रहे, जब गोटा देवत रहे ना उहे समय गोटा भी भेजवात रहे हुए मन, और एडवांस पैसों देवत रहे खेती करे ले।
0: तो ये बड़ा बढ़िया होला कि मतलब एक ठो संगठन बनाए दिले थी, उगर से क्या है कि रोके बाजार लेके जाए के नहीं पड़त है, और जे बाजार में जे मूल्य का उतार चढ़ाव जो हो वेला सेकर से रोड़ मन बाचत थी, और उनके कैश में पैसा भेटाए जाते। अच्छा एक चीज बताओ कि जैसे खेती बाड़ी का काम है, और किसान मन देखी ला कि बड़ा घबराए जाए ना, उमन के आमदनी कम हो वेला, खर्चा बगरा करे ना, मेहनत भी बहुत ज्यादा करे ना, तो रोरे का कहे खोजेला कैसे किसान मन बढ़िया खेती करे?
1: खेती करे ले तो पहले जमीन के बढ़िया से उपचारित कर रखेला, फिर के जोताई कोड़ाई कर रखेला, गर्मी के सीजन में खाद डाले खोला, पूरा गर्मी उके तौके देवे खोला खेत बारी के, तब जाके फसल अच्छा आवी। तो उकर में फसल लगाबो ऐसा करके तो घाटा नहीं खा, किसान के तरक्की होगी और मुनाफा भी होगी। जे भी फसल लगाई, और आजकल हाइब्रिड कर बीज अलग है, तो के होना ही है, मेहनत करे किसान तो के होना है।
0: अच्छा जैसन की रोर बारे में जानी ला हम कि बढ़िया रोड़े खेती वास्ते कई धान रोड़ के पुरस्कार भी भेटा है, तो कौन खेती वास्ते रोड़ के पुरस्कार मिलक, कहाँ कहाँ भेटा है रोड़ के?
1: हमरे गए बंद गोभी बैगन लहसुन मिर्चा और केला पपीता इस सब में मिलना के प्राइज।
0: कहाँ कहाँ भेटा है?
1: हम इनके कृषा बिरसी यूनिवर्सिटी में मेला लागेला, साल भर में एक धाम, वहाँ हम इन लेगत रही तो हमें प्राइज मिलत रहे।
0: और बाहरे भी कभी मिल है?
1: बाहरे तो नहीं लेगत रही, हम इनको इतना फुर्सत नहीं रहत रहे ने से ले, जान ले भी नहीं लेगत रही, खाली हुए भर लेगत रही।
0: अच्छा तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय तो निजका है, हुए जो मेला लागे ला के पुरस्कार मिल रहे नहीं, तो पुरस्कार कौन मैत का रहे, माने पहला पुरस्कार रहे, द्वितीय पुरस्कार कैसन रहे?
1: पहला दूसरा तृतीय सब रहत रहे।
0: अच्छा सब पुरस्कार उनके मिल है, ये तो बहुत बड़ बात है, खास करके जे गोभी उत्पादन करी ला नहीं, गोभी कर खेती करी ला उकर वास्ते
1: बोल गोभी जैसे।
0: अच्छा हम जाने खोजब की माटी कर जाँच कितना जरूरी हो जाए रोके का लगे ला?
1: माटी कर तो जाँच अपने पता चले की यहाँ का देना है कि नहीं देना है। माटी कर जांच करे ले हम इन्होंने कृषि विश्वविद्यालय भेजी ला, जैसे एगो खेत के 5-6 जगह के मिट्टी के उठा ले ला, और पोलोथिन में करके उनके जांच करा ले ला, तो पता चले ले कि कौन चीज कमी है से सबके डाली ले उकर में।
0: तो कितना दिन बाद ये वो रिपोर्ट आ जाए ला माटी कर?
1: रिपोर्ट 1-1.5 महीना में आ जाए ला।
0: डॉक्टर बता देवे ना क्या क्या?
1: हाँ क्या क्या देना है से बता देवे ना, वही माफी के हिसाब से हम इन देवी ले।
0: तो जे किसान मन हमरे कर बात के सुनत है, उमन के रोड़े का कहे खोजब कि कैसे उमन

0: सफल होए क्योंकि रोर तो वैज्ञानिक तरीका से रोए खेती कर रही थी पूर्णा भी रोए खेती कर चुकी अब एखन जे समय है वैज्ञानिक तरीका से खेती करे से के भी रोड़े कर रही थी बेसी किसान मन सफल होए महिला किसान मन वास्ते खास कर हम जाने खोजब
1: पहला तो महिला मन के जागरूक होवे खोबी कि हमके खेती है से सब कुछ करे खाए तबे वो खेती करे पारी और उकर फसल अच्छा होए से उकर खाते उके खेत के अच्छा से तैयार करे खोबी हाइब्रिड बीज लगाए खोबी खाद आजकल जैविक खाद अलग है रासायनिक खाद के कम डाले खोबी जैविक खाद के ज्यादा डाले खोबी इसी तरह से उके अपने हैबिट हो जाए कि हमके कौन चीज के कब करना है नहीं करना है फसल अच्छा आवे लागे तो उके मन भी लागे लागे कि हमके खेती और करना है और मुनाफा भी होगी।
0: अच्छा कौन ऐसा खेती है रोड़े चूंकि आप बराबर रोड़े खेती करते आवे थे तो कौन ऐसा खेती रोके बुझालक जे खर्चा कम और बगरा उकर में मुनाफा है।
1: ऐसे तो पत्तेदार सब्जी में ज्यादा फायदा है डेढ़ महीना एक महीना का फसल रहेला और मुनाफा ज्यादा है कोई खर्चा नहीं है उकर में खाली बीज लागेला और चार बार सिंचाई करेला तो हो जाएला उकर में और जैसन बाजार में जैसन दाम रहेला पकड़ा गेलक तो 40 रुपए 50 रुपए किलो तक बेचायला और धनिया रहे तो कभी 200 तक भी बेचायला मेथी है धनिया है ये सब
0: तो मतलब ये जे पत्तेदार सब्जी रोड़े कहली इगर खेती कर ली किसान मन के बगरा फायदा हुई और हमके तो लागे ला कि बेरा सिरे अगर खेती करे किसान मन समय के अगर धीर लेवत है तो उकर से बगरा फायदा हो किसान बुझाए।
1: हाँ समय से ही खेती के कर ले फायदा है और सीजन के ऊपर निर्भर करे ला बे समय में कर ले दाम भी नहीं मिली परेशानी भी बढ़ी और उकर से किसान मन हैरान हो ना कि अब हम खेती नहीं करब लेकिन मौका देख के किसान मन के जागरूक हो के कि ई फसल के ई समय में लगा तो हमके फायदा होगी महंगाई बेरा लगाना चाहिए
0: एकदम एकदम। और जैसे हम देखे लगे कीटनाशक कर प्रयोग किसान मन बगरा करे ना तो उकर से जो उत्पादन होते से भी तो खाए के लिए हमरे मन कर शरीर वास्ते नुकसान दे है तो रोरे मन का करेला कीटनाशक का अपन से तैयार करेला कैसे करेला।
1: नहीं अपन से तो नहीं करेला देवीला वह सब दवाई के लेकिन कम मात्रा में देवीला नहीं के बराबर जहाँ चार बार देवे एक आध बार देवीला और जैविक खाद सब डालते रहेला।
0: तो किसान भाई रोरे मन सुन ली कि ये जो सफल किसान महिला किसान है पुष्पा देवी बतात रहे कि कैसे सफल होले सालाना इनका आमदनी खेती बाड़ी से कितना हो जाला और देखो कितना बेस बात के बता लें कि जे किसान भाई समय के धैर्य लेवे थे और माटी कर जे चुनाव है माटी कर उपचार समय समय पर करे है बीज कर उपचार करे है और इस सब तरीका के अगर अपनाए लेती वैज्ञानिक तरीका से अपनाए लेती तो हमरे मन के जरूर से जरूर मुनाफा होगी। तो आसरा करीला रोरे मन के ये बातचीत है रोरे मन के पसंद लायक होगी और रोरे मन भी बातचीत से उत्साहित हो अब इनके पुरस्कार भी भेटा ही अपने से बता लें तो इनका से फिर हमरे कर भेंट घाट हुई तो रोरे मन के लगातार हम बताते रहब इनकर बारे में हालचाल हमरे मन लेते रहब लय तो रोरे अपन बेरा के दिली कर ले बहुत बहुत धन्यवाद जोहार
1: जोहार।
2: हमरे मन सुन ली नई उम्र की नई फसल में किसान बहन पुष्पा देवी से करल गोइठ के बतियात रहे अरविंद कुमार मिश्रा और जुगनी बहन इकरे संगे किसान वाणी कार्यक्रम कर बेरा सिरायला बताया देवीला कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: गच्छ लगाऊ गच्छ बचाऊ।
1: एक धाव फिर से सुनवैया भाई बहन मनकर कार्यक्रम में स्वागत है। संध्या बहन
0: और जुगनी बहन कर
1: जोहार।
0: और कहो संध्या बहन, कैसा है हाल समाचार और बटते बरखा पानी मन कैसा ना है?
1: हाल समाचार एकदम नगद है जुगनी बहन। बरखा कर तो हाल होए है कि मैंने कटी कटी देरी रुक रुक के आवते है।
0: और बीड़ा मन कैसा रौरे दन तैयार हो गलक है नी?
1: नहीं हमें

0: तो हमरे तो कर खो नहीं पाए रही है खन, मने तैयारी है बीड़ा कर कर।
1: एखन रोरे मने बीड़ा भी नहीं कह रही है हमरे दन तो आप रोपा मन आप शुरू कर। अब बरखा
0: हाँ
1: पानी कर असरा है। अब देखो बरखा पानी अगर बढ़िया हुई तो हमरे मने एक दो दिन में रोपा भी शुरू कर। अब देखो खेत बारे में तो काम होबे करत है कि नहीं। और देखो बरखा कर बात है तो हमरे के खेती बाड़ी करेला तो हमरे के जो बरखा कर पानी है सिके भी हमरे के नी जा देवे के और हमरे क्यों के बचा के रखे के संरक्षित
0: हाँ
1: करे के है कि नहीं, ताकि हमरे अगर पानी के बचाए के रखब तो हमरे के खेती बाड़ी में काम आवेला, सब रकम का चीज में काम आवेला। देखो पानी है तो हमरे का जीवन है और पानी न के तो हमरे अपन जीवन कर भी कल्पना नहीं कर सकेला है कि नहीं।
0: सही कहा थी। देखो पानी कर बिना कोनो काम नहीं हो वाला है नी, पिए कहो कि घर कर काम काज कहो कि बाहरे कर कहो कि खेती बाड़ी कर काम काज के कहो है नी। और हमरे पानी है कि के मुर खर्चा कर देवे ला एहो बेस बात ना लगे, तो पानी के हमरे के बचाए के है। और जे बरसात कर पानी है से के तो जमा करे कर उपाय भी करे चाहिए, काले कि उकर से हमरे कर भूजल स्तर बढ़ी तो हमरे के पानी कर दिक्कत नहीं हुई, गर्मी पहुँचे ला और कन्हो कन्हो पिएक पानी घट जाला है नी।
1: एकदम नगद गोट कह ली। देखो बरखा कर पानी है जे कि छत में है अंगना में है वैसने गढ़ा ढोढ़ा में बह जाला और नदी नाला में चल जाला। तो हमरे अगर उ पानी के सुखता गढ़ा मन कोड़ के गढ़ा मने कोड़ के अगर पानी के जमा करके राखब तो पानी धीरे धीरे भूया सूखी और हमरे कर जे जमीन कर जे जल स्तर है से बाढ़ी तो हमरे के कोनो दिन आवे वाला समय में हमरे के पानी का दिक्कत नहीं हुई। तो हमरे के जल संरक्षित करे के चाहिए
0: सही
1: और
0: बात
1: पानी
0: है।
1: के बचाए के राखे के चाहिए है कि नहीं। और
0: ऐसा तो
1: देखो
0: हाँ
1: कोनो कोनो काम धाम जैसे करत है तो कोनो कोनो बहुत ऐसा आदमी मन है कि काम धाम मन के लेके चाहे कोनो काम मन के लेके खीस मन भी रखे ना, तो हमरे के खीस मन भी नाखे रखे है कि नहीं।
0: हाँ कोनो कोनो खन बगरा काम हो जाए ला नहीं तो अपने अपने खीस लागे के लागे ला और केकरो खीस केकरो ऊपर झड़े ला है नी।
1: हाँ एकदम हमरे के खिसाक भी ना खे। और कोनो कोई कोई कोई आदमी मन तो ऐसा है कि कोनो गोइठ ले एकदम घमंड कर रहे ना, तो ऐसा घमंड भी ना खे करे
0: खोना के करे
1: अहंकार भी ना खे करे है कि
0: सही
1: नहीं।
0: कहा थे। हमरे मन के आपस में सबके मिलजुल के प्रेम से रहे है नी।
1: हाँ बिल्कुल खीस ना खे रखे अहंकार कर जे भावना है से के हमरे के हटाए के अपन भीतरे से और बढ़िया गोइठ मन के लाने के और आपसी संबंध बढ़िया से बनाए के रखे
0: हाँ
1: के है कि नहीं।
0: और हमरे खुशहाल रहब तो हमरे कर छुआ पुता हो बढ़िया संस्कार पावे और मन भी जिंदगी जिए के लिए खुशहाल रहे है नी।
1: एकदम एकदम। और देखो कार्यक्रम के भी अगर खुशहाल बनाए के तो हमरे के
0: और करे पड़ी
1: और एक और करे के गीत गोविंद से है कि नहीं। तो चलो हमरे नागपुरी लोकगीत से के सुनेला कलाकार है बशीर अंसारी और उसका संगी मन।
0: हाँ।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: तो संध्या बहन, घर दुरा में महिला कर बिना कोनो काम अधूरा रह लो है कि नहीं?
2: कहो कि एक तरह से महिला मन घर कर धूरी हो है ना, तो हमरे मन इकरे ऊपरे कुरमाले में जानकारी करीला नारी कर सम्मान है नहीं बतात है रतन कुमार महतो।
3: मान तबे देश बनते महान, नारी सृष्टिकर जननी, नारी माई बहिन बेटी, समाज व्यवस्थाएं नारी कर काम पुरुष ले कम नहीं, रोजे कर पारिवारिक जीवन नारी बिना चले नहीं पारे, मिंतुक दुख कर कथा जे पुरुष प्रधान समाज व्यवस्थाएं हमरा नारी के उचित मान आर थान नहीं दे पार लाइसन। भारत कर संविधान सभे नारी के बिना कोनो भेद विचारे समान अधिकार दिल आयन, राज गिला के

0: करना चाहिए।
1: तो बड़ा नगर जानकारी मिललक कि नारी का सम्मान करे चाहिए तो हमरे का देश महान हो सकेला है कि नहीं।
2: हाँ बहन, और देखो ये है कुरमाली वार्ता कर संगे हमारे दुनिया कार्यक्रम कर बेरा सिरायला बताए देवीला कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे प्रभु शरण कर।
1: तो कार्यक्रम सुनवाइया भाई बहन मन और मन कर संगे जुगनी बहन के
2: संध्या बहन कर संगे देव विदा
1: जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी दुनिया, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक में शामिल हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, कहा सफाई पर विशेष ध्यान देने वाले वार्डों को स्वच्छ वार्ड पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। विश्व जनसंख्या दिवस पर रांची में जागरूकता कार्यक्रम। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता। राज्य सूचना आयुक्त डॉ तनुज खत्री ने गुमला में की बैठक, समय सीमा के अंदर आरटीआई के लंबित मामलों के निपटारे का दिया निर्देश। रांची में कल आयोजित होने वाली झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026 को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू। और रांची में जिला योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का हुआ आगाज, सीनियर वर्ग की स्पर्धाओं में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने योगासन का किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि रांची में सफाई पर विशेष ध्यान देने वाले वार्डों को स्वच्छ वार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार हर माह दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री आज रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री सेठ ने कहा कि वेंडर्स की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
1: कि जो हमारे वेंडर्स हैं, जो रेड़ी पटरी वाले हैं, बेचारे मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और वर्षों से एक ही जगह सामान बेच रहे हैं, कोई बंदूक नहीं उठा रहे, कहीं रोड जाम नहीं है, तो उनको जीने का अधिकार। अब जैसे मोराबादी में जो सब्जी बाजार लगता है बुधवार को और शनिवार, 4 घंटे में हफ्ते भर की वो कमाई कर ले, किसको वहाँ परेशानी है।
0: बैठक में शहर के विकास, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं को लेकर कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इस मौके पर विधायक सीपी सिंह, रांची की मेयर रोशनी खलखो समेत वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर रांची में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि एम्स और रिम्स 2 के निर्माण से चिकित्सकों की कमी दूर होगी।
2: आबादी में हम लोग कंट्रोल हैं हम लोग, लेकिन एक चैलेंज है उन तक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे हम पहुंचाएं, ये हमारा फोकस है और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हम दें उनको और हमें लगता है कि अब तो लोग जागरूक हो चुके हैं, अब ये चैलेंज नहीं है, चैलेंज है कि बेहतर इलाज हम कैसे करें।
0: इस अवसर पर बेहतर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। राज्य सूचना आयुक्त डॉ तनुज खत्री की अध्यक्षता में गुमला में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित आरटीई मामलों के निपटारे और समयबद्ध सूचना उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। राज्य सूचना आयुक्त ने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अंदर सही और पूर्ण सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आयोग लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए लगातार कार्य कर रहा है।
3: गुमला जिले में जहां मुझे जो अधिकारियों ने जो बताया हमें बैठक के दौरान कि अभी तक 2024 से लेकर के 2026 तक उन्होंने बखूबी सभी मामलों का निष्पादन भी कर, जो एक अच्छी पहल है। हम समझते हैं कि पूरे राज्य में इस प्रकार से अगर काम होगा तो आरटीआई एक्ट जो है वो प्रभावी रूप से अंतिम लोगों तक जो उसके हकदार है उन तक पहुंचेगा।
0: खूंटी नगर पंचायत के वार्ड 6 और 16 में आज कई पीसीसी सड़क मरम्मत कार्यों का शिलान्यास किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष रानी टूटी ने कहा कि जर्जर सड़कों की मरम्मत से स्कूली बच्चों और आम लोगों की आवाजाही सुगम होगी। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र में सड़क और नाली संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए चरणबद्ध तरीके से विकास कार्य किए जा रहे हैं। गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने उर्वरक की कालाबाजारी रोकने और किसानों को निर्धारित मूल्य

0: पर खाद उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की। उन्होंने सभी उर्वरक विक्रेताओं को दुकानों पर निर्धारित मूल्य सूची, उर्वरक संबंधी सूचना चार्ट तथा वैध लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने पारदर्शी वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने और अनियमितता पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची में कल आयोजित होने वाली झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026 को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने BNSS की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है, जो कल सुबह 7:30 बजे से शाम 4 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ जुटाने, हथियार लेकर चलने, ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग तथा सभा आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। देवघर के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत मतदाता सत्यापन कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि फॉर्म वितरण और डिजिटलीकरण का कार्य तय समय सीमा में शत प्रतिशत और त्रुटि रहित पूरा किया जाना चाहिए। इसे लेकर श्री कुमार ने विशेष टीमों का गठन कर मतदाता सूची को अद्यतन और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया।
1: सभी को जितने भी वोटर्स हैं यहाँ पे जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, सभी को दो फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को भर के जल्द से जल्द वापस रिटर्न करिए। हम आपके फॉर्म को डिजिटाइज करेंगे, हम आपके फॉर्म को मैप करेंगे आपके माता पिता के साथ, जिससे कोई भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं। जिनके पास कोई मैपिंग डिटेल नहीं है 2003 का, वो भी अपना फॉर्म भर के दे, खाली फॉर्म भर के दे। 2003 का कोई हिस्ट्री नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, फॉर्म भर के रिटर्न करिए, प्रथम मतदाता सूची में आपका नाम अवश्य आएगा।
0: खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र में आज एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। जिले के कोरवा सिंदरी मार्ग पर तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 युवक भी घायल हुए, जिनमें से 2 ने रास्ते में दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल एक युवक का रिम्स में इलाज चल रहा है। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा ने हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह पर यौन उत्पीड़न मामले में आवाज उठाने के बाद धमकी देने का आरोप लगाया है। असुंता लकड़ा का कहना है कि महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग करने पर उन्हें उनका हॉकी करियर समाप्त करने की चेतावनी दी गई।
2: लड़कियों की सुरक्षा के लिए मैं आवाज उठा रही हूँ, तो उसमें मुझे ही धमकी। मैंने देश को मेडल दिया है, देश के लिए मैंने खेला है, देश के लिए काम किया है, और धमकियां हम सुनेंगे। आज भी मैं अपनी छुट्टियां लेके जाती हूँ सिलेक्शन में, जब से ये बात पे चर्चा हुई सुधीर गोला के बात पे, उसके बाद से मुझे साइडलाइन पे रखा जा रहा है।
0: योग, रांची जिला योग संघ की ओर से 2 दिवसीय रांची जिला योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज रांची में शुरू हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। पहले दिन सीनियर वर्ग की स्पर्धाओं में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने योगासन का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल जूनियर वर्ग की स्पर्धाएं और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित होगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक में शामिल हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, कहा सफाई पर विशेष ध्यान देने वाले वार्डों को स्वच्छ वार्ड पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। विश्व जनसंख्या दिवस पर रांची में जागरूकता कार्यक्रम, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. तनुज खत्री ने गुमला में की बैठक, समय सीमा के अंदर RTI के लंबित मामलों के निपटारे का दिया निर्देश। रांची में कल आयोजित होने वाली झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2000

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जिले में आजकल।
1: जिले में आजकल

0: इस अंक में आप सुनेंगे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता।
1: देश के तमाम पावर प्लांट में कोयले की बढ़ती खपत को देखते हुए कोडरमा के रास्ते ब्रिटिश काल में बने तकरीबन 120 साल की अवधि पार कर चुके तीन सुरंगों से नए वैगन के जरिए कोयले की ढुलाई शुरू की गई है। नया वैगन थोड़ा बड़ा होने के साथ साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से भी लैस है। नए वैगन से कोयला ढुलाई की शुरुआत के मौके पर पहुँचे पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने बताया कि
2: जो बनावट है उसमें थोड़ा अलग डिजाइन का है, जिसकी वजह से इसकी ऊंचाई जो है जो नॉर्मल वैगन है उनसे अधिक है, तो कई बार जो है जो इस क्षेत्र में टनल पड़ती है उससे नहीं निकल पाती, तो उसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। यही सबसे छोटा रास्ता है और ये गाड़ियां जो है द्रुत गति से इस क्षेत्र से निकल सके, तो उससे जो है जो पावर हाउसेज हैं उनको कोयला सप्लाई करने में अधिक सुगमता से कर पाएंगे। सभी पावर हाउसेज जो है अपनी पीक कैपेसिटी पे चल रहे हैं, तो वहाँ पर कोयला पहुँचाना भी जो है एक राष्ट्रीय दायित्व है।
1: स्वच्छ भारत मिशन फेज टू के तहत जिले के लक्ष्मीपुर गांव में बने गोबर गैस प्लांट गांव की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस गोबर गैस प्लांट से गांव के तकरीबन 30 घरों में गैस की आपूर्ति की जा रही है, जिससे महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि इस प्लांट के संचालन से उन्हें न तो जलावन के लिए लकड़ी ढूंढने की आवश्यकता पड़ती है और न ही गैस भराने के लिए पैसे लगते हैं।
3: सुबह के गोबर लाइन में डालते हैं, ऑनलाइन रहते हैं तो गोबर को घोला करके नहीं, तकर बाद गैस से फिर उसमें गोबर जाते हैं दूसरा में तीसरा में जाते हैं, उसमें सूख जाते हैं तो फिर निकाल के अपने खेत में खाद के थीसनी खेत में डालते हैं। वैसे तरीके से मैंने काम कर रहे हैं और घर घर गैस जलाते हैं शाम सुबह। पहले तो लकड़ी से जलाते हैं, लकड़ी से तकर बाद गैस मिला, गैस वाला पैसा तभी बच जा रहा है।
1: राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर कोडरमा पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर कोडरमा पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ने जमशेदपुर में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह अपराधियों ने पुलिस जीप से खींचकर एक युवक की हत्या कर दी जबकि दूसरे को अधमरा कर दिया, उससे यह साफ जाहिर होता है कि राज्य में अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही है।
4: जमशेदपुर के नगरी में पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के भैन में घुस करके अपराधी दो युवाओं पर हमला करने का काम किया। पुलिस की जीप से निकाल करके युवा को पटक करके उस पर चापड़ से हत्या करने का काम किया। पुलिस वहां मौजूद थी लेकिन पुलिस वहां पर खड़े खड़ा करके मुखदर्शक बनी हुई थी। तब समझ सकते हैं कि जो हम लोग बोलते हैं हमेशा कि इस राज्य में अपराधियों का समानांतर सरकार चलती है, और ये प्रमाणित होने का काम जमशेदपुर में किया कि पुलिस के सामने अपराधी दो दो युवाओं को एक अधमरा है तो जिंदगी और मौत से कलकत्ता में जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ एक माँ पिताजी के लाडले जो घर का एक अकेला चिराग था, अकेला बेटा था, उसकी हत्या भी चौराहे पर कर दी। इससे स्पष्ट हो गया है कि इस राज्य में अपराधियों का समानांतर सरकार है और सरकार इस पर अंकुश लगाने में बिल्कुल पूरी तरह से विफल है।
1: हाल के दिनों में जिले में भी अपराध का ग्राफ बढ़ा है। कई मामलों में पुलिस ने सफलतापूर्वक कांड का उद्भेदन किया है तो कई मामले में अभी भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा।
0: अभी आप सुन रहे थे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्य।

अभी आप सुन रहे थे जिले में आजकल। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीत, आज यह हो भाषा में प्रसारित होगी। कलाकार है बुधन सिंह कुंकल और साथी।

0: अभी आप सुन रहे थे हो लोकगीत। कलाकार थे बुधन सिंह और बुधन सिंह कुंकल और साथी। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार क्रमशः नागपुरी भाषा में, उरांव भाषा, मुंडारी भाषा, हो भाषा और संथाली भाषा में।
1: आकाशवाणी रांची है के अब रौरे में अंजू कुमारी से नागपुरी में साप्ताहिक समाचार सुनू। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन पहर झारखंड सरकार 14 महत्वपूर्ण निवेश समझौता मन में हस्ताक्षर कई रही। इकर जरिए राज्य में करीब 99,639 करोड़ रुपया कर निवेश कर डहर साफ हो है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी के संगे धनबाद संगे और क्षेत्र मन में कोयला खनन और चोरी कर उच्च स्तरीय समीक्षा कर लें। कोयला चोरी और अवैध ढुलाई में रोक लगाए के लिए विशेष जीरो कोल लीकेज प्लान तैयार करे कर निर्देश

0: हैं। केंद्र सरकार झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल संगे 8 गो राज्य मन में प्रगति परियोजना कर शुरुआत कई रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बतालें कि महत्वाकांक्षी योजना कर उद्देश्य देश कर 20,000 से अधिक कृषि उद्यमी मन और 20 लाख किसान मन के मजबूत बनायक है। गुजरात कर सानंद कर सेमीकंडक्टर प्लांट में झारखंड कर ग्रामीण और आदिवासी इलाका मन कर बेटी मन देश कर आधुनिक माइक्रोचिप क्रांति कर कमान सम्राट हैं। मलेशिया से एडवांस पैकेजिंग कर खास ट्रेनिंग करके घुरल ई महिला मन कर ई ऐतिहासिक सफलता ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीफ कर हैं।
1: झारखंड, बालाघाट, मध्य प्रदेश, कोई केरल से, कोई छत्तीसगढ़ से और जय जोहार से ही हमारी बात शुरू हुई, क्योंकि मैं उस क्षेत्र में रहा हूं तो मुझे पता है। उन बेटियों ने जिस तेजी से चीजों को सीखा है और जिस तरीके से वो चीजों को वहां कंडक्ट कर रही थी, गर्व होता है मेरे देश की युवा शक्ति पर। साथियों, आने वाले समय में AI आपके सामने नई स्किल्स, नई एक्सपर्टाइज का पूरा संसार खोल देने वाली है। इसलिए भारत के युवाओं को अभी अवसर गंवाना नहीं है। और मैं नौजवानों आपको कहता हूँ, आइडिया आपका, साथ मेरा।
0: केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू रांची कर झीरी में बायोगैस प्लांट और लीगेसी वेस्ट बायो माइनिंग परियोजना कर निरीक्षण कर लें। काम कर प्रगति से संतुष्ट होते अधिकारी मन के समय सीमा कर भीतर काम पूरा कर निर्देश दिलें। राज्य सरकार UPSC PT परीक्षा पास SC ST परीक्षार्थी मन ले मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि बढ़ाए के 1.5 लाख रुपया कर दे है। पात्रता ले पारिवारिक आय सीमा हो बढ़ाए के 8 लाख रुपया करल जा है। पात्र उम्मीदवार योजना ले 31 जुलाई तक आवेदन कर सकेना। कृषि और पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की हजारीबाग में सहकारिता सप्ताह का समापन समारोह में घोषणा कर लें कि राज्य सरकार झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना शुरू कर है। इकर तहत महुआ कर खेती करे वाला किसान मन के प्रति एकड़ 3,000 रुपया प्रोत्साहन राशि देवल जाए। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी प्लस जिला प्रशासन और APDA कर संयुक्त प्रयास से गुमला से 1 मीट्रिक टन और देवघर से 1 टन आम्रपाली आंबा के दुबई कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार ले भेजल गेलक। रांची कर भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के नैनोकन संश्लेषण ले विकसित अभिनव रिएक्शन वेसल प्रोटोटाइप कर पेटेंट डिजाइन पंजीकरण मिल है। ई प्रणाली नैनो उर्वरक और नैनो कीटनाशक मनकर उन्नत उत्पादन से तैयार करे जाए। संस्थान कर निदेशक शोभ अनुसंधान टीम के बधाई दे हैं। झारखंड हाईकोर्ट सेवानिवृत्त मास्टर मन के राहत देते नियमित नियुक्ति से पहले पारा शिक्षक के रूप में करल गए लगातार संविदा सेवा के हो पेंशन ले मान्य माइन है। अदालत राज्य सरकार के 8 सप्ताह कर भीतर 6% सालाना ब्याज कर संगे पेंशन और दूसरों लाभ मनकर भुगतान करे कर आदेश दे है। धनबाद कर विशेष MP MLA अदालत मटकुरिया गोलीकांड मामला में पूर्व मंत्री मनान मलिक संगे 37 आरोपी मन के 3-3 बरिस का सजा सुना है। अदालत हरेक दोषी के 10,000 रुपया कर हो जुर्माना लगा है। NTPC माइनिंग लिमिटेड कर झारखंड कर पकरी बरवाड़ी कोयला खदान के देश में पहला स्थान मिल है। वित्तीय बरिस 2024-25 ले कोयला नियंत्रक कार्यालय पकरी बरवाड़ी ओडिशा कर दुलंगा और छत्तीसगढ़ कर तलाईपली खदान मन के 5-स्टार रेटिंग दे है। दामोदर वैली कारपोरेशन कर 79वां स्थापना दिवस में कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के सबसे बेस्ट उत्पादन स्टेशन और ग्रीन प्लांट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित करल गेलक। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में परियोजना प्रमुख संजय कुमार ई पुरस्कार ग्रहण करलें। झारखंड लोक सेवा आयोग संयुक्त सैनिक सेवा मुख्य परीक्षा कर तारीख मन में बदलाव कर है। अब ई परीक्षा 21 से 23 जुलाई तक होगी। JSSC परीक्षा से टकराव कर चलते ई बदलाव करल जा है। इकर अलावे बैकलॉग मुख्य परीक्षा मन 25 से 27 जुलाई और 1 से 3 अगस्त तक आयोजित करल जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 जुलाई के नई दिल्ली में 2026 डुरंट कप टूर्नामेंट का ट्रॉफी मनकर अनावरण कर लें और हरी झंडी दिखाए के रवाना कर लें। राष्ट्रपति बहुत खुश आए कि कोलकाता, गुवाहाटी, इम्फाल और शिलांग कर अलावे इस साल डुरंट कप कर मेजबानी रांची हो करी। झारखंड कर 4 गो महिला हॉकी खिलाड़ी मनकर चयन जापान में होवे वाला 20वां एशियाई खेल मनले भारतीय टीम में हो है। सिमडेगा कर सलीमा टेटे भारतीय महिला हॉकी टीम कर कप्तानी संभराबे। टीम में ओलंपियन निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेन के हो स्थान मिल है। 14वां राष्ट्रीय पिंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड कर खिलाड़ी मन शानदार प्रदर्शन करते 4 पदक जीतले। रांची कर नेपाल हाउस ट्रेनिंग केंद्र कर खिलाड़ी मन 2 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीत के राइज कर मान बढ़ाले। इकरे संगे आकाशवाणी रांची से नागपुरी में साप्ताहिक समाचार सिरालक।
2: आकाशवाणी रांची तली अकु नीम पीरी पुष्पलता टोपुंती कुड़ुखनु हफ्ता खबर में ना। नई दिल्ली नु मंजका 2 रोजगी नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन गी ही मजी झारखंड सरकार नई दिल्ली नु 14 अकई मेन पूंजी लगावाना गी समझौता मन्या सही नंजकी रही। इदिन ती राजी नु मोटा मोटी 99,639 करोड़ रुपया पूंजी लगावाना गी डहरे सफा मंजकी रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली नु कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी गने धनबाद संगम नन्ना नन्ना पहटा नु अवैध कोयला अरखना अरा खड़ना गही मेच्छा अस्तर नु समीक्षा नंजस। गृह मंत्री कोयला खड़ना अरा अधिक ही अवैध चेड़ना मन्या पूरा रोक लगावागे उनका खास 0 को लीकेज प्लान तैयार ननागे पेशकस रस। गुजरात ता शानंद ता सेमीकंडक्टर प्लांट नु झारखंड ता पद्दा अरा आदिवासी पहटन ता बीटी बगर देश ता आधुनिक माइक्रोचिप क्रांति घी कमान समड़ा लगनर। मलेशिया ती एडवांस्ड पैकेजिंग घी खास ट्रेनिंग होर की किरगा इबड़ा पेल्लर घी ई ऐतिहासिक सफलता घी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सु सराहना नंजकस रस।
1: मैं आज जिन बेटियों से मिला झारखंड बालाघाट मध्य प्रदेश कोई केरल से कोई छत्तीसगढ़ से और जय जोहार से ही हमारी बात शुरू हुई क्योंकि मैं उस क्षेत्र में रहा हूं तो मुझे पता है। उन बेटियों ने जिस तेजी से चीजों को सीखा है और जिस तरीके से वो चीजों को वहां कंडक्ट कर रही थी गर्व होता है मेरे देश की युवा शक्ति पर। साथियों आने वाले समय में AI आपके सामने नई स्किल्स नई एक्सपर्टाइज का पूरा संसार खोल देने वाली है। इसलिए भारत के युवाओं को अभी अवसर गंवाना नहीं है और मैं नौजवानों आपको कहता हूं आइडिया आपका साथ मेरा।
2: केंद्र सरकार झारखंड बिहार अरा पश्चिम बंगाल संगेम 8 राज्य नो प्रगति परियोजना घी ओरे नंजगी रही। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तिंगियस का ई महत्वाकांक्षी योजना घी उद्देश्य देश ता 20,000 तिबगे कृषि उद्यमी ऋण अरा 20,00,000 किसाने ऋण बढ़ियर कम न रही। केंद्रीय आवासन अरा शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहूस रांचिनता झिरिनता बायोगैस प्लांट अरा लिगेसी वेस्ट बायो माइनिंग परियोजनन इरियस हुजियस आस नलक गुट्ठी घी प्रगति मन्या संतोष जताबानु अधिकारी ऋण समय सीमा घी भीतरे नलखन पूरा ननागे पेशकस रास। राज्य सरकार UPSC प्रारंभिक परीक्षा नु पास मंजका SC ST गे मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन ढिबन बढ़ावार की 1,50,000 रुपया नंजकी चीज के रही। पात्रता गे पारिवारिक आय सीमन हूँ बढ़ावार की 8,00,000 रुपया नंजकी चीज के रही। इदी गे योग्य उम्मीदवार योजना गे 31 जुलाई गुटी दरखास्त चियांगनार। कृषि अरा पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिरकित हजारीबाग नु सहकारिता सप्ताह गी आखरी उल्ला इदी गी घोषणा नंजा का राज्य सरकार झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना और नंजगी रही। इदिन ती कोदय गी खिती ननु आबर किसानेर गे प्रति एकड़ 3,000 रुपया प्रोत्साहन ढीबा चीतार ओ। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी प्लस जिला प्रशासन अरा एपीडागी संगे प्रयास ती गुमलन ती ऊंद मीट्रिक टन अरा देवघर ती ऊंद टन आबो अम्रपाली टटखन दुबई ता अंतरराष्ट्रीय बाजार गे तय की रही। रांची ता भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान गे नैनोकन संश्लेषण गे विकसित अभिनव रिएक्शन वेसल प्रोटोटाइप घी पेटेंट डिजाइन पंजीकरण खकर की रही। ई प्रणाली नैनो उर्वरक अरा नैनो कीटनाशक घी उन्नत किस्म घी पैदा ननागे तैयार नंतार की रही। संस्थान घी निदेशक ई कोहा वैज्ञानिक सफलता मन्या पूरा अनुसंधान टीम गे बधाई चिचकस रस। झारखंड हाईकोर्ट की रिटायरमेंट का मास्टर गे राहत चीनों नियमित नियुक्ति ती पहले पारा शिक्षक गे रूपे नू नंजका निर्वाध संविदा सेवन हूँ पेंशन गे मान्य मनिश की रही। कोर्ट राज्य सरकार के 8 हफ्ता के भीतर 6% वार्षिक ब्याज गने पेंशन अरा नन्ना लाभ कर गे भुगतान घी

0: छिचकिरी। धनबाद का विशेष एमपी एमएलए अदालत बहुचर्चित मटकुरिया गोलीकांड मामला नु मुंद मंत्री मन्नान मालिक संगे होरमा तीसो झना दोषी दारेर गे तीन तीन साल की सजा मिंताज गिरी। कोर्ट औरत औरत दोषी दारेर मन्या 10,000 रुपया घी जरवाना हूँ लगावाज गिरी। इधि संगेम आकाशवाणी रांची कुड़ुखनो हफ्ता खबर मुंजरा।
1: नया आकाशवाणी रांची तना मन ना दोहड़ो जगर ते धनी गुड़िया ते नेहप्ता रिया खबर बु आयुम किया। नई दिल्ली रे नेंडलेन बारसिंग रिया नेशनल स्टेक होल्डर्स दुनुक दिपली झारखंड सरकार नई दिल्ली रे गेल उपना मूद बप्पाई सकाम रे को सही किदा। नया लेकते राज रे करीब उपून हिसी गेल 6,000 तुरी सै हिसी गेल 6 करोड़ टका खर्चा रिया होरा निजकना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली रे कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी लोते धनबाद जमा गेदला का ठौका कोयला खदान ओड़ो कुंबड़ू रेया पिपती केदा। गृह मंत्री कोयला कुंबड़ू ओड़ो एना रे का ठौका लेकते मोटर ते हर के रोकाओ मेनते पुख्तो काजी कमी तैयार कना। गुजरात रेया सानंद रेया सेमी कंडक्टर प्लांट रे झारखंड हातुरेन आदिवासी इलाका रेन कुड़ी होन को आधुनिक माइक्रोचिप क्रांति रेया कामी को संभड़ाव लदा। मलेशिया ते एडवांस पैकेजिंग रेया मूद ट्रेनिंग के ते रुवड़ कनते कुड़ी होन को आ जिनिताव रेया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरनिका किदा।
2: मैं आज जिन बेटियों से मिला झारखंड बालाघाट मध्य प्रदेश कोई केरल से कोई छत्तीसगढ़ से और जय जोहार से ही हमारी बात शुरू हुई क्योंकि मैं उस क्षेत्र में रहा हूं तो मुझे पता है उन बेटियों ने जिस तेजी से चीजों को सीखा है और जिस तरीके से वो चीजों को वहां कंडक्ट कर रही थी गर्व होता है मेरे देश की युवा शक्ति पर। साथियों आने वाले समय में एआई आपके सामने नई स्किल्स नई एक्सपर्टाइज का पूरा संसार खोल देने वाली है। इसलिए भारत के युवाओं को अभी अवसर गंवाना नहीं है और मैं नौजवानों आपको कहता हूं आइडिया आपका साथ मेरा।
1: केंद्र सरकार झारखंड बिहार और पश्चिम बंगाल जमा इरलिया राज्य रे हानरा काजिका में एटेकदा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तिकिन उदुप के दची ने काजिका में रेया मोने सनंग दिसुम रेया हिसी हजारे ते आदिका खेतिहार ओड़ो हिसी लाख खेतिहार को के पोकोत बाई में ना। केंद्रीय आवासन ओड़ो शहरी काजी कामी राज्य मंत्री तोखन साहू रांची रेया झीरी रेया बायोगैस प्लांट ओड़ो लिगेसी वेस्ट बायो माइनिंग काजी कामी पिप्ति केदा। राज्य सरकार यूपीएससी पीटी रे पास कन एसटी एससी को के मुख्यमंत्री सिविल सेवा टका पोसा के ते 1.5 लाख का दाय निया मेनते इनकुआ ओड़ा रेनकुआ आए इरलिया लाख पोसा कना। निकू ने काजी कामी मेनते हिसी 1 जुलाई संते दरखास्त दड़ियो आ। कृषि ओड़ो पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की हजारीबाग रे सहकारिता हफ्ता रेया टुंडू हुलंग काजी रोड के दाची राज्य सरकार झारखंड राज्य रे मिलेट मिशन काजी कामी एटे कदा। नया लेकते कोदे खेती मेनते 1 एकड़ रे 80,000 बोनोरसा टका एमोआ। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी प्लस जिला प्रशासन ओड़ो इपिडा लोते गुमलाए ते 1 मेट्रिक टन ओड़ो देवघरे ते 1 टन उली दुबई रे अक्रिंग मेनते किन कुल केदा। झारखंड हाई कोर्ट पेंशन कन मास्टर को के जी रड़े उमाट कुआ। धनबाद रे मूद एमपी एमएलए कोर्ट नुतुमन मटकुरिया गोलीकांड रे सीधरन मंत्री मन्नान मल्लिक जमा हिसी गेल चिटाकन को के आपी आपी सिरमा मेंते सजाई नाम केदा ओड़ो गेल 1,000 जरिवाना कोठो ओजना। एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड झारखंड रे आ पकरी बरवाड़ी कोयला खदान रे गोटा दिसुम रे सीधा टायद नाम केदा। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन अपी हिसी गेल आर्या बाई बिदन हुलंग कोडरमा थर्मल पावर प्लांट रे माइन की जको। कोलकाता रेन नेडालेन काजी कामी रे मूद संजय कुमार ने पुरस्कार रे तेला केदा। झारखंड लोक सेवा आयोग संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा रेया तारीख बदली कदा। नहीं आना हिसी जुलाई ये ते उदुर के ते।

0: हिसी अपी जुलाई जना नेलोते की आकाशवाणी रांची ते खबर ने तारगी टुंडू जना मरजवार
1: निया आकाशवाणी रांची तने नाबु मिया ट्रेकोबर हो हयमते लाल सिंह भई पैते एतेबु आयु मिया नमा दिल्ली रे होबलेन बारसिंगे नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन उलेंग रे झारखंड सरकार पायते गेल उपनिये माइने निवेश कोरिया राजीनामा रे सही जेने निनालिकाते राइज रे करीब पुन हिसी गेल रिया 1682 रिया करोड़ टाका निवेश रिया होरा सफा जाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तिकिंग नामा दिल्ली रे कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी लोते धनबाद सोल एटा टाइट कोरे या अवैध कोयला कनन आर कुंबड़ू मामला कोरे मारंग समीक्षा दुनु मोबालेन ताइने गृह मंत्री तिकिंग जगार किडाची कोयला कुंबड़ू अंडो इना लागिन अवैध परिवहन कोरे दोपटो दावने लागिन विशेष जीरो कॉल लीकेज प्लान तेरे रिया इंगुल आंदे किडा। गुजरात रिया सेमी कंडक्टर प्लांट रे झारखंड रेन आदिवासी कुड़ी होन को आधुनिक माइक्रोचिप क्रांति रिया कमान को समणवायतना मलेशिया ते एडवांस पैकेजिंग रिया विशेष ट्रेनिंग ईडीए के नेन कुड़ी होन को माइनन पनाइट रे मुल्क दो नरेंद्र मोदी तिकिंग इमन साराव जगार केडा।
2: मैं आज जिन बेटियों से मिला झारखंड बालाघाट मध्य प्रदेश कोई केरल से कोई छत्तीसगढ़ से और जय जोहार से ही हमारी बात शुरू हुई क्योंकि मैं उस क्षेत्र में रहा हूं तो मुझे पता है उन बेटियों ने जिस तेजी से चीजों को सीखा है और जिस तरीके से वो चीजों को वहां कंडक्ट कर रही थी गर्व होता है मेरे देश की युवा शक्ति पर। साथियों आने वाले समय में AI आपके सामने नई स्किल्स नई एक्सपर्टाइज का पूरा संसार खोल देने वाली है इसलिए भारत के युवाओं को अभी अवसर गंवाना नहीं है और मैं नौजवानों आपको कहता हूं आइडिया आपका साथ मेरा।
1: केंद्र सरकार पायते झारखंड बिहार और पश्चिम बंगाल सोल इरलिया राइज कोरे प्रगति परियोजना रिया उंकुड़ू एनेटे होबा जाना। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तिकिंग जगरकिडा चिनेन माइनेन योजना रिया उद्देश्य दो दिसुम रेन हिसी हजारे तियो लाना चासी कामिये कुआ अंडो हिसी लाख किसान कुआ इटिंग पुख्ता बयो रिया योजना तना। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री थोकन साहू तिकिंग रांची झिरी टायड रिया बायोगैस प्लांट अंडो लिगेसी वेस्ट बायो माइनिंग परियोजना रिया किंग नेल होनोर केन तैने अकिंग पनाइटी रिया तेनेरसा और रांसा जगरेलो सायब को के समय सीमा भीतर रेगे पाइटी पूरे रिया किंग आंधे जगर के तैने। राज्य सरकार पायते UPSC PT परिचय रे पास तर ST SC पटुए को नतीत मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि बढ़ाओ जन 1.5 लाख टाका रिकेजन है पात्रता लगित पारिवारिक आय सीमा रे बढ़ाओ जन 1.5 लाख टाका रिके कने और पत्र उम्मीदवार को निन योजना लगित 31 जुलाई जो का आवेदन को एम दिए। कृषि और पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की तिकिंग हजारीबाग रे सहकारिता सप्ताह रे मनुचित समारोह रे डकराय लोक जगर किडा चिराय सरकार पायते झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना रिया एनेटे होबजना आंडो नेहा लेखाते कोदे गुंदली चासी तेन किसान को के प्रति एकड़ 3000 टका देगा एमरिया जगार केडा। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी प्लास लिखाते जिले प्रशासन अंडो एसपीडा तिकिंग जुड़ी पनाइटी लिखाते गुमले ते 1 मीट्रिक टन अंडो देवगारे ते 1 टन रिया आम्रपाली उली दुबई रिया अंतर्राष्ट्रीय बाजार लगित खुलजने। रांची रिया भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान दो नैनो संश्लेषण लिखाते विकसित जने नेना डिजाइन लगित पंजीकरण नाम जाना निनाते नैनो उर्वरक अंडो नैनो कीटनाशक लेकन रे रनु को तियरेना। NTPC माइनिंग लिमिटेड रिया झारखंड टाइट पकरी बारेडिया कोयला कदान दिसुम रिया पहला स्थान की नाम केडा वित्तीय बचोर 2024-25 लगित कोयला नियंत्रक कार्यालय पायते पकरी बरवाडी उड़ीसा रिया दुलांग अंडो छत्तीसगढ़ रिया तलाई पालसी कदान कोरे 5-स्टार रेंटिंग एम जाना। नियलोत के आकाशवाणी रांची ते मिया ट्रेकोबर चबा जाना जोहार
3: नवा आकाशवाणी रांची कना नी तपे डुमने मई मुर्मू सेट कोन मिना ट्रेकोबर आजम पे नवा दिल्ली रे कोरालेन बार महा नेशनल स्टेक होल्डर्स ᱠᱚᱱᱥᱟᱞᱴᱮᱱᱥᱮᱱ ᱚᱠᱛᱮ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮ 40 ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱮᱢᱚᱜ ᱥᱚᱦᱟ ᱵᱚᱦᱟᱨᱮ ᱥᱩᱦᱤ ᱠᱮᱫᱟᱭ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚᱛᱮ 99,600,630 crore ᱴᱟᱠᱟᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱥᱟᱯᱷᱟᱭᱮᱱᱟ᱾ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤ ᱜᱨᱤᱦᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱚᱢᱤᱛ ᱥᱟᱦ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮ ᱠᱚᱭᱞᱟ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱡᱤ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱨᱮᱰᱰᱤ ᱥᱟᱶ ᱫᱷᱚᱱᱵᱟᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮ ᱩᱠᱩᱛᱮ ᱠᱚᱭᱞᱟ ᱠᱷᱟᱫᱟᱱ ᱟᱨ ᱠᱩᱢᱲᱩ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱷᱟᱯ ᱨᱮᱠᱚ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱜᱚᱴᱟ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱜᱨᱤᱦᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱠᱚᱭᱞᱟ ᱠᱩᱢᱲᱩ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱩᱠᱩᱛᱮ ᱥᱟᱜᱟᱲ ᱠᱚ ᱛᱷᱟᱢᱜᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱡᱤᱨᱳ ᱠᱚᱞ ᱞᱤᱠᱮᱡᱽ ᱯᱞᱟᱱ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱸᱫᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ᱾ ᱜᱩᱡᱽᱨᱟᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱬᱟᱱᱫ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱢᱤᱠᱚᱱᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱯᱞᱟᱱᱴ ᱨᱮ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮᱱ ᱟᱹᱛᱩ ᱦᱚᱲ ᱟᱨ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢᱟᱜ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱢᱟᱭᱠᱨᱳᱪᱤᱯ ᱠᱨᱟᱱᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱵᱲᱟᱣᱮᱫᱟ᱾ ᱢᱟᱞᱭᱮᱥᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱰᱵᱷᱟᱱᱥ ᱯᱮᱠᱮᱡᱤᱝ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱥᱮᱯᱮᱪᱮᱫ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱟᱜᱟᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱦᱚᱸᱭ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾
2: ᱢᱮᱱ ᱡᱤᱱ ᱵᱮᱴᱤᱭᱚ ᱥᱮ ᱢᱮᱨᱟ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱵᱟᱞᱟᱜᱟᱲ ᱢᱚᱫᱷᱚᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱠᱚᱭ ᱠᱮᱨᱚᱞ ᱥᱮ ᱠᱚᱭ ᱪᱷᱚᱛᱛᱤᱥᱜᱚᱲ ᱥᱮ ᱟᱨ ᱡᱚᱭ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱥᱮ ᱦᱟᱢᱟᱨᱤ ᱵᱟᱛ ᱥᱩᱨᱩ ᱦᱩᱭ ᱠᱤᱭᱩᱠᱤ ᱢᱮ ᱩᱥ ᱠᱷᱮᱛᱨ ᱢᱮ ᱨᱟᱦᱟ ᱦᱩᱸ ᱛᱚ ᱢᱩᱡᱷᱮ ᱯᱚᱛᱟ ᱦᱮ ᱩᱱ ᱵᱮᱴᱤᱭᱚ ᱱᱮ ᱡᱤᱥ ᱛᱮᱡᱤ ᱥᱮ ᱪᱤᱡᱚ ᱠᱚ ᱥᱤᱠᱷᱟ ᱦᱮ ᱟᱨ ᱡᱤᱥ ᱛᱟᱨᱤᱠᱮ ᱥᱮ ᱚ ᱪᱤᱡᱚ ᱠᱚ ᱣᱟᱦᱟ ᱠᱚᱱᱰᱟᱠ ᱠᱚᱨ ᱨᱚᱦᱤ ᱛᱷᱤ ᱜᱚᱨᱵ ᱦᱚᱛᱟ ᱦᱮ ᱢᱮᱨᱮ ᱫᱮᱥ ᱠᱤ ᱭᱩᱣᱟ ᱥᱚᱠᱛᱤ ᱯᱚᱨ ᱥᱟᱛᱷᱤᱭᱚ ᱟᱱᱮ ᱵᱟᱞᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱢᱮ ᱮᱟᱭ ᱟᱯᱠᱮ ᱥᱟᱢᱱᱮ ᱱᱟᱭ ᱥᱠᱤᱞᱥ ᱱᱟᱭ ᱮᱠᱥᱯᱟᱨᱴᱟᱭᱤᱡ ᱠᱟ ᱯᱩᱨᱟ ᱥᱚᱝᱥᱟᱨ ᱠᱷᱚᱞ ᱫᱮᱱᱮ ᱵᱟᱞᱤ ᱤᱥᱞᱤᱭᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱠᱮ ᱭᱩᱣᱟᱣ ᱠᱚ ᱟᱵᱷᱤ ᱚᱵᱥᱚᱨ ᱜᱚᱣᱟᱱᱟ ᱱᱟᱭ ᱦᱮ ᱟᱨ ᱢᱮ ᱱᱚᱣᱡᱚᱣᱟᱱ ᱟᱯᱠᱚ ᱠᱮᱦᱛᱟ ᱦᱩᱸ ᱟᱭᱰᱤᱭᱟ ᱟᱯᱠᱟ ᱥᱟᱛᱷ ᱢᱮᱨᱟ।
3: ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ, ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱟᱨ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ ᱥᱟᱶᱛᱮ 8 ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱯᱚᱨᱤᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱤᱵᱨᱟᱡᱽ ᱥᱤᱝ ᱪᱳᱣᱦᱟᱱ ᱫᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ 20,000 ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱟᱨᱵᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ 200,000 ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱲᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ᱾ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱟᱵᱟᱥᱚᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱦᱟᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱦᱩ ᱫᱚ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱷᱤᱨᱤ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱭᱳᱜᱮᱥ ᱯᱞᱟᱱᱴ ᱟᱨ ᱞᱮᱜᱮᱥᱤ ᱳᱭᱮᱥᱴ ᱵᱟᱭᱳ ᱢᱟᱭᱱᱤᱝ ᱯᱚᱨᱤᱭᱳᱡᱚᱱᱟᱭ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱛᱮ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱠᱚ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱤᱢᱟᱹ ᱨᱮ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱸᱫᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱭ᱾ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱮᱯᱤᱮᱥᱥᱤ ᱯᱤᱴᱤ ᱵᱤᱱᱤᱴ ᱯᱟᱥ ᱮᱥᱥᱤ ᱮᱥᱴᱤ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱤᱨᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱥᱮᱵᱟ ᱜᱚᱲᱚ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ 1.5 lakh ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱠᱚ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮ ᱟᱭ ᱥᱤᱢᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ 8 lakh ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱠᱚ᱾ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ 31 July ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱠᱚ ᱟᱵᱮᱫᱚᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱟᱨ ᱯᱚᱥᱩᱯᱟᱞᱚᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱤᱞᱯᱤ ᱱᱮᱦᱟ ᱛᱤᱨᱠᱤ ᱫᱚ ᱦᱟᱡᱟᱨᱤᱵᱟᱜᱽ ᱨᱮ ᱥᱟᱦᱟᱠᱟᱨᱤᱛᱟ ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱨᱮ ᱰᱟᱠᱨᱟ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱡᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱢᱤᱞᱮᱴ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟᱭ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚᱫᱮ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱯᱨᱚᱛᱤ ᱮᱠᱚᱨ 3,000 ᱴᱟᱠᱟ ᱩᱥᱠᱟᱹᱣ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱥᱴᱮᱴ ᱞᱟᱭᱵᱞᱤᱦᱩᱰ ᱯᱨᱚᱢᱳᱥᱚᱱ ᱥᱳᱥᱟᱭᱴᱤ ᱯᱞᱟᱥ ᱡᱤᱞᱟ ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱ ᱟᱨ ᱮᱯᱤᱰᱤ ᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚᱛᱮ ᱜᱩᱢᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱ 1 metric ton ᱟᱨ ᱫᱮᱵᱜᱚᱨ ᱠᱷᱚᱱ 1 ton ᱟᱢᱨᱚᱯᱟᱞᱤ ᱩᱞ ᱫᱩᱵᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱟᱲᱟᱣᱮᱱᱟ᱾ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱨᱮᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱡᱮᱵ ᱯᱨᱚᱫᱷᱳᱜᱤᱠᱤ ᱥᱚᱝᱥᱛᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱮᱱᱚᱠᱚᱬ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱚᱵᱷᱤᱭᱟᱱ ᱨᱤᱭᱟᱠᱥᱚᱱ ᱵᱮᱥᱮᱞ ᱯᱨᱚᱴᱳᱴᱟᱭᱤᱯ ᱟᱜ ᱯᱮᱴᱮᱱᱴ ᱰᱤᱡᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱥᱴᱨᱮᱥᱚᱱ ᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱱᱮᱱᱚ ᱠᱷᱟᱫ ᱟᱨ ᱱᱮᱱᱚ ᱛᱤᱡᱩ ᱜᱚᱡ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱪᱟᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱥᱚᱝᱥᱛᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱟᱹᱭᱩᱨᱤᱡ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱬᱮᱥᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱠᱷᱚᱸᱫᱽᱨᱚᱱ ᱴᱤᱢ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟ ᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱦᱟᱭᱠᱳᱨᱴ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱡᱤᱨᱟᱹᱣ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱩᱦᱟᱹᱭ ᱮᱢ ᱟᱛᱮᱫ ᱯᱟᱨᱢᱟᱱᱮᱱᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱯᱟᱨᱟ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱮᱫ ᱠᱚ ᱠᱚᱱᱴᱨᱟᱠᱴ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟ ᱥᱮᱵᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱯᱮᱱᱥᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾ ᱠᱳᱨᱴ ᱫᱚ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱚ 8 months ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ 6% ᱥᱮᱨᱢᱟᱠᱤᱭᱟᱹ ᱵᱮᱭᱟᱡᱽ ᱥᱟᱶ ᱯᱮᱱᱥᱚᱱ ᱥᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱞᱟᱵᱷ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱸᱫᱮ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾ ᱫᱷᱟᱱᱵᱟᱫᱽ ᱟᱜ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱮᱢᱯᱤ ᱮᱢᱮᱞᱤ ᱠᱳᱨᱴ ᱫᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱢᱟᱴᱠᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱜᱩᱞᱤᱠᱟᱱᱰ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱨᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱤᱨᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱚᱱᱱᱚᱛ ᱢᱟᱞᱤᱠ ᱥᱟᱶ 30 ᱫᱩᱥᱤ ᱠᱚ 3 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱥᱟᱹᱡᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱠᱳᱨᱴ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱫᱩᱥᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ 10,000 ᱴᱟᱠᱟᱣᱟᱜ ᱡᱩᱨᱤᱢᱟᱱᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱮᱱᱴᱤᱯᱤᱥᱤ ᱢᱟᱭᱱᱤᱝ ᱞᱤᱢᱤᱴᱮᱰ ᱟᱜ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱠᱨᱤ ᱵᱟᱨᱣᱟᱰᱤ ᱠᱚᱭᱞᱟ ᱠᱷᱟᱫᱟᱱ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢᱟᱜ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱴᱷᱟᱶ ᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱥᱮᱨᱢᱟ 2024-25 ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚᱭᱞᱟ ᱱᱤᱭᱚᱱᱛᱨᱚᱠ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱫᱚ ᱯᱟᱠᱨᱤ ᱵᱟᱨᱣᱟᱰᱤ ᱳᱰᱤᱥᱟᱣᱟᱜ ᱫᱩᱞᱟᱝᱜᱟ ᱟᱨ ᱪᱷᱚᱛᱛᱤᱥᱜᱚᱲ ᱛᱟᱞᱟᱭᱯᱟᱞᱞᱤ ᱠᱷᱟᱫᱟᱱ ᱫᱚ 5-star ᱨᱮᱴᱤᱝ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱫ ᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱫᱟᱢᱳᱫᱚᱨ ᱵᱷᱮᱞᱤ ᱠᱚᱨᱯᱳᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ 76th ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱢᱟᱦᱟᱨᱮ ᱠᱳᱰᱟᱨᱢᱟ ᱛᱷᱟᱨᱢᱟᱞ ᱯᱟᱣᱟᱨ ᱯᱞᱟᱱᱴ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱩᱛᱯᱟᱫᱚᱱ ᱥᱴᱮᱥᱚᱱ ᱟᱨ ᱜᱨᱤᱱ ᱯᱞᱟᱱᱴ ᱚᱯᱷ ᱫᱟ ᱤᱭᱟᱨ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱛᱮᱠᱚ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱮᱱ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱨᱳᱯᱚᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚ 7 ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮ 2026

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र।

0: इस अंक में नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन, किसान प्रगति कार्यक्रम, झारखंड में SIR प्रक्रिया और राज्य में विकास गतिविधियां। झारखंड सरकार द्वारा नई दिल्ली में पिछले दिनों 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के आखिरी दिन कल 99,639 करोड़ रुपए की 14 निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार राज्य में निवेशकों को हर संभव सुविधाएं और आधारभूत संरचना का लाभ दे रही है।
1: झारखंड सरकार की तरफ से जो 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित है, जो एक कंसल्टेशन होना है, यहाँ IT, AI, डिजिटल गवर्नेंस, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट्स, टूरिज्म को लेकर 2 दिनों तक नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होना है और कैसे हम सब मिलकर झारखंड के समग्र विकास हो सके, इस पर हम सभी लोग चर्चा करेंगे। झारखंड प्रदेश एक युवा राज्य के रूप में स्थापित हुआ है, 25 साल का झारखंड हुआ और पहली बार सरकार को दुनिया का जो सबसे उच्चतम जगह है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वहां भी हम लोगों ने झारखंड को पहुंचाने का प्रयास किया है। झारखंड के संदर्भ में लगभग हम ये कह सकते हैं कि इस देश की अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो झारखंड के बिना ये पूरा होता दिखता नहीं है। आज हम झारखंड से पूरे देश को कई सारी खनिज संपदाओं के साथ ज्ञान भी दिया है। आज हमारे राज्य से देश दुनिया में बड़े पैमाने में ब्यूरोक्रेट्स ने भी अपनी योगदाने दी हैं, तकनीकी क्षेत्रों में भी दी हैं। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि रंजन जी जो गूगल से यहाँ आए हैं, उन्होंने कहा कि ये पलामू से आते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और मजबूत हुआ है। समय पर अलग अलग जगहों पर जाकर बहुत सारे ऐसे विद्वान जो झारखंड से जुड़े हुए हैं, दुनिया के अलग अलग कोने में हैं और स्वाभाविक है जिस मिट्टी से जन्म हुआ हो उस संदर्भ में उनकी विचार कहीं ना कहीं जरूर होती होंगी। आज हमने उसी तरीके का एक प्रयास किया है कि झारखंड प्रदेश अपनी जो आवश्यकताएं हैं, जो आने वाला चुनौती है और राज्य के हर नागरिक तक पहुंच की जो सोच है, वो हम किन तरीकों से हम कर सके हैं, उनकी क्या आवश्यकता है, हमारी क्या आवश्यकता है और कैसे एक साथ हम आगे बढ़ सकें। मुझे लगता है कि उद्योग केवल जमीन को ना देखे बल्कि उसके पूरे इकोसिस्टम को भी देखने की आवश्यकता है, जहां बहुत सारी चीजें जुड़ी है, जहां रिलायबल पावर की बात है, आधारभूत संरचना की बात हो, आवागमन की व्यवस्था हो, जो टैलेंट स्किल्ड हैं और जो पॉलिसी इन्वायरमेंट है वो कितना

0: सुटेबल है, उन सभी चीजों को देखने की आवश्यकता है।
1: केंद्र सरकार ने देश के 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रगति योजना की शुरुआत की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों परियोजना की शुरुआत के अवसर पर कहा कि सरकार झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्यों में प्रगति परियोजना शुरू कर रही है।
2: प्रगति कार्यक्रम का शुभारम्भ हमारे अनेकों संगठनों ने मिलकर किया है। प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान। बस सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत यह तय किया है कि लगभग अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं और कई जगह किसान जोड़ के वो परिवर्तन धीरे धीरे ला रहे हैं। अब वो नए 20,000 और कृषि उद्यमी जोड़ेंगे, ऐसे उनको 45 दिन की ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग देके फिर वो किसी गांव में जाएंगे और वो अपने साथ किसान जोड़ेंगे और उनको कृषि में मदद, टेक्नोलॉजी उनको देंगे, अच्छे बीज, मैकेनाइजेशन का लाभ, आधुनिक कृषि पद्धति वो सिखाएंगे जिससे उत्पादन भी बढ़ेगा, लागत भी घटेगी और उसके साथ साथ कैसे वैल्यू एडिशन हो इस पर भी काम करेंगे। तो ये प्रगति कार्यक्रम बहुत उपयोगी होगा किसानों की आय बढ़ाने के लिए, प्रगतिशील खेती के लिए। उसमें एक तत्व ये भी है, एक पक्ष ये भी है कि धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना है तो मिट्टी का स्वास्थ्य भी ठीक रहे।
1: झारखंड में इन दिनों मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR की प्रक्रिया चल रही है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार द्वारा SIR से संबंधित जानकारी देने के लिए एक विशेष ऑडियो वीडियो जारी किया गया है।
3: झारखंड में SIR की प्रक्रिया चल रही है। 30 जून से 29 जुलाई के दौरान सभी पात्र भारतीय नागरिक एन्यूमरेशन की प्रक्रिया में अपना योगदान देंगे। वर्तमान अथवा 2026 की मतदाता सूची में शामिल सभी मतदाताओं को 2 प्रतियों में एन्यूमरेशन फॉर्म मिलेगा। BLO स्वयं घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म पहुंचाएंगी। SIR के दौरान मतदाता सूची बिल्कुल नए सिरे से तैयार की जाती है, इसीलिए सभी पात्र भारतीय नागरिकों से अनुरोध है कि गणना प्रपत्र यानी एन्यूमरेशन फॉर्म जरूर जमा करें। स्पष्ट विवरण और हस्ताक्षर के साथ एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं करने पर 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाले ड्राफ्ट मतदाता सूची में आपका नाम शामिल नहीं किया जा सकेगा। एन्यूमरेशन के इस फेज में हर मतदाता को मिलेगा उसका यूनिक एन्यूमरेशन फॉर्म जिसमें उनकी कुछ जानकारी और तस्वीर पहले से अंकित होगी। एन्यूमरेशन फॉर्म स्वयं भरें। प्रवासी मजदूर, दूसरे शहर में नौकरी या पढ़ाई करने वाले मतदाता अथवा किसी कारण से अस्थायी रूप से अनुपस्थित मतदाता ECI नेट ऐप या पोर्टल की मदद से अपना एन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं या फिर विशेष परिस्थितियों में उनकी जगह उनके परिवार के वयस्क सदस्य भी उनका फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म में हस्ताक्षर कर सकते हैं। अगर आप अपने घर के किसी सदस्य के बदले एन्यूमरेशन फॉर्म भर रहे हैं तो ध्यान रखें, फॉर्म भरने के समय संबंधित विवरणी की संपुष्टि करते हुए आप उक्त मतदाता के साथ अपने संबंध की घोषणा अवश्य करें। उसके बाद भरे गए सभी विवरणों की एक बार अच्छे तरीके से जांच करने के बाद BLO के पास जमा करें। एन्यूमरेशन फॉर्म की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें और दूसरे फॉर्म को जमा करते समय BLO से रिसीविंग अवश्य प्राप्त करें। और एक जरूरी बात, एन्यूमरेशन की प्रक्रिया में कोई भी दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा, परंतु आवश्यकता पड़ने पर दावों एवं आपत्तियों अथवा नोटिस एवं वेरिफिकेशन की अवधि में नोटिस प्राप्त होने पर निर्देशित दस्तावेज जमा करने होंगे। नए मतदाता को रजिस्ट्रेशन के समय फॉर्म 6 और घोषणा पत्र के साथ निर्दिष्ट दस्तावेज जमा करने होंगे। कोई भी गैर भारतीय नागरिक एवं भारत में जन्मे परंतु दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर चुके व्यक्ति एन्यूमरेशन की इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। सिर्फ और सिर्फ पात्र भारतीय नागरिक ही एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। गैर भारतीय नागरिकों का एन्यूमरेशन फॉर्म भरना अपराध है एवं इसके लिए उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सभी पात्र भारतीय नागरिक केवल अपने विधानसभा क्षेत्र के एक ही मतदान केंद्र में सिर्फ एक बार ही एन्यूमरेशन फॉर्म भर सकते हैं। एक से ज्यादा मतदान केंद्रों पर या एक से ज्यादा एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने पर कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। एन्यूमरेशन की इस आसान प्रक्रिया में अगर किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो एन्यूमरेशन फॉर्म के सबसे ऊपर आपके क्षेत्र की BLO का नाम और मोबाइल नंबर लिखा रहेगा। तो जैसे ही आपको एन्यूमरेशन फॉर्म मिले तुरंत जरूरी विवरण भरें, हस्ताक्षर करें और फॉर्म BLO को वापस करें। तो आइए हम मतदाता अपना कर्तव्य निभाएं, SIR की प्रक्रिया में योगदान करके लोकतंत्र को और भी मजबूत बनाएं।
1: राज्य के विभिन्न जिलों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कई विकास योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। हजारीबाग में पिछले दिनों सहकारिता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर मिलेट मिशन के तहत किसानों के निबंधन की शुरुआत की गई। एक रिपोर्ट।
4: 29 जून से 6 जुलाई तक आयोजित सहकारिता सप्ताह समारोह का समापन हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में हुआ। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कार्यक्रम में झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि सहकारिता किसानों और ग्रामीणों की आर्थिक मजबूती का सबसे प्रभावी माध्यम है।
5: आज का कार्यक्रम यहाँ हजारीबाग में जो सहकारिता सप्ताह का समापन समारोह हम लोगों ने किया, ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा। जितना हम लोगों को अपेक्षा था उससे अधिक किसानों की भागीदारी दिखी और बहुत ही ध्यान पूर्वक सभी चीजों को लोगों ने सीखा है, समझा है।
4: मंत्री ने कहा कि कमजोर मॉनसून की आशंका को देखते हुए सरकार ने विशेष तैयारी की है। किसानों से बिचड़ा तैयार करने, खेतों की मेड़बंदी करने और मड़ुआ सहित मोटे अनाज की खेती अपनाने की अपील की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को मड़ुआ की खेती करने पर प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा।
5: सभी किसानों से निवेदन है कि सही समय में बिचड़ा करें, मेड़ की बंदी करें ताकि पानी को लोग सुरक्षित रख पाए और अधिक से अधिक मोटे अनाजों का फसल को अपनाने का काम करें। आज यहां से हम लोग मिलेट मिशन का भी रजिस्ट्रेशन किसानों का कराना शुरू किए। आज पूरे राज्य भर में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें लगभग सभी किसानों को जो मड़ुआ की खेती करेंगे उन्हें 3,000 रुपया प्रत्येक एकड़ प्रोत्साहन राशि सरकार देगी।
4: सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के साथ खेती को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाना है। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट।
1: उधर साहिबगंज में केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना से ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। हमारे साहिबगंज संवाददाता की रिपोर्ट।
6: साहिबगंज स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान गांव की उन महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दे रहा है जो अब तक घरेलू जिम्मेदारियों तक ही सीमित थीं। संस्थान में सिलाई कढ़ाई कर रही माधुरी देवी बताती हैं कि पहले आर्थिक तंगी के कारण घर चलाना मुश्किल था लेकिन आज अच्छी कमाई कर रही हैं।
7: हम यहाँ आए हैं आज सिटी में महिला प्रशिक्षण सिलाई लेने के लिए। लेके यहाँ से जाएंगे तो प्रधानमंत्री योजना के लिए लोन जो है लेंगे तो घर परिवार बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई अच्छे से करेंगे।
6: वहीं कंचन और रश्मि कुमारी बताती हैं कि अब वह आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। आज जब उनके हाथों में हुनर है तो आज उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है।
8: मैंने मुझे बहुत कुछ यहाँ बनाना भी सिखाया है जैसे मिनाइटी, अम्ब्रेला फ्रॉक, ब्लाउज, जींस सूट और पटियाला पजामा, यही सब सीखी हूँ और मुझे समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया है कि मैम ने कैसे बताया है मुझे। मैं इस RCT में ये सिलाई का प्रशिक्षण लेने के बाद मैं अपना एक छोटा सा बिजनेस चालू करूंगी, जो मोदी सरकार ने हम लोगों के लिए लागू किया है, जो इस यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद हम लोगों को लोन दिया जाएगा, उसी से हम अपना घर पे छोटा सा बिजनेस चालू करेंगे।
6: आरसीटी के निदेशक प्रदीप कुमार झा बताते हैं कि केंद्र सरकार की इस योजना से कई लोगों को कौशल युक्त बनाकर रोजगार से जोड़ा जा रहा है।
9: खाली समय में अपने दो पैसा कुछ अर्थोपार्जन करने के लिए, वो अर्थोपार्जन उनको अपने आप को सशक्त बनाता है, उसमें आत्मविश्वास लाता है और आत्मनिर्भर के लिए एक कदम बढ़ाती है।
6: कस्टम ज्वेलरी के साथ सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण और बैंक ऋण की सुविधा महिलाओं के लिए न सिर्फ स्वरोजगार के नए अवसर खोल रहे हैं बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रहा है। साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट।
1: इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक महविश रहमान, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम करकेट्टा।

अभी आप सुन रहे थे समाचार ध्वनि चित्र। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्मी संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा बस थोड़ी ही देर में।

श्रोताओं नमस्कार, मैं मेघना आपके साथ। फिल्मी संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा में पहला नगमा लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में फिल्म चोरी चोरी से शैलेंद्र के पुल है, और इस गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

आर डी बर्मन के संगीत में, मुकेश की आवाज में कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म फिर कब मिलोगी से। इस गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने।

0: खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: संदेश के बाद कार्यक्रम रजनीगंधा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म अपनापन से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, बोल लिखे है आनंद बख्शी ने और इस गीत को अपनी मखमली आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम का अगला नगमा मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म भीगी पलकें से। इस गीत के गीतकार है एमजी हशमत और संगीतकार है जुगल किशोर और तिलकराज।

कार्यक्रम रजनीगंधा का अगला नगमा मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस से। इस गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा से प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुनायत, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
2: अम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार कानुभा जी।
2: त्रिगुनायत जी, मैं आपसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड का 2 दिन का दौरा 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का उस देश का पहला आधिकारिक दौरा है। इसे एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। आप इस दौरे के महत्व को कैसे देखते हैं?
3: जी, इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले कार्यकाल में 12 साल के जो हमने देखा है कि जो एक हाई लेवल एंगेजमेंट या विजिट डेफिसिट

0: भारत से होता था देशों के साथ, वो कहीं के भी हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो दूसरे नेबरहुड में हो या लैटिन अमेरिका में रहे हो, ये सब चीजों को काफी अच्छी तरह से ब्रिज किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी जाते हैं, राष्ट्रपति जी भी जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जाते हैं, मिनिस्टर्स भी जाते हैं जगह जगह। अब बहुत सी जगह हमने देखा है, खासतौर से आपने देखा होगा कि वेस्ट एशिया वगैरह में
1: जी,
0: जो हमारे सबसे बड़े नेबर है, वहां पे 3 दशकों तक कोई विजिट नहीं हुई। तो अब आज देखिए 40 साल के बाद प्रधानमंत्री का पहला दौरा हो रहा है यहाँ पर, तो ये मैं समझता हूँ अपने आप में एक बड़ी बात है। कारण सीधा यह है कि हर एक देश इंपॉर्टेंट होता है, और इंडो पैसिफिक के अंदर में जो उसमें भारत का एक बड़ा स्टेक्स भी है, वहां पर जो ये रिलेशनशिप है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, इंडोनेशिया के साथ हो, चाहे वो न्यूजीलैंड के साथ में हो। तो जैसा आपने देखा कि हमने अभी उनके साथ में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने की कोशिश की, तो भारत जो है वो जो स्मॉल पैसिफिक आइलैंड नेशंस है उनके साथ भी अपनी मित्रता काफी बढ़ा रहा है, उनको काफी असिस्टेंस दे रहा है, उसमें भी इन सब देशों का एक बड़ा रोल है क्योंकि वो वहीं पर है। और इंडियन ओशन में इनके साथ में हमारे कोलैबोरेशन जो बढ़ने से, चाहे वो मैरिटाइम में हो, ट्रेड में हो, इन्वेस्टमेंट्स में हो या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, तो ये सारी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो हमने डिसाइड किया कि हमारे रिश्ता जो है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील हो जाए, ये एक इस बात को बताता है कि दोनों के लिए ही कितना इम्पोर्टेंट है। और जैसा आप जानती हैं कि वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ में बात किया तो उन्होंने कहा ये विनिंग पार्टनरशिप
1: जी,
0: तो दोनों के लिए विन विन पार्टनरशिप है
1: जी। आपने अभी जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कही, तो एक बार फिर से अपने श्रोताओं को बता दें कि नई दिल्ली और वेलिंगटन ने अपने रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक बढ़ाया है, जिसमें अगले 4 वर्षों में संबंधों को बढ़ाने का रोड मैप शामिल है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे अभी आप बता रहे थे, अगर उस पे और आप थोड़ा सा जोड़ सकें कि ये अपग्रेड जो हुआ है दोनों देशों के संबंधों के बीच में, ये इन संबंधों को नया रूप कैसे देगा?
0: देखिए, दो तरह के रिश्ते होते हैं, एक तो कि नॉर्मल चलते जाएं, जिसको आप कह सकते हैं ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होती है कि आपने हमें कुछ दिया, हमने आपको कुछ दिया, कभी कभार हम कोऑपरेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड के साथ हमारा कोऑपरेशन नहीं रहा है या ट्रेड नहीं है, लेकिन जब हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में उस चीज को तब्दील करते हैं तो उसमें और बहुत सारी चीज आ जाती है, जैसे डिफेंस है, सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, इन्वेस्टमेंट्स है, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में हो, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को शेयर करने के बारे में हो, तो ये सारी चीजें उसके अंदर में आ जाती है। इसलिए जो रोड मैप तैयार हुआ है, चाहे उसमें हमने ट्रेड को 2030 तक डबल करने की बात हो, या हमारा इन्वेस्टमेंट हो, या जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन हो, या किस तरह से हम मैरीटाइम एरिया के अंदर में और ज्यादा अपना कोलैबोरेशन को बढ़ाएंगे, तो ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा महत्व रखती है आज की डेट में, क्योंकि दुनिया का जिस तरह के हालात है, जिस तरह की एक अनसर्टेनिटी है, उसमें वैल्यू सप्लाई चेन्स के लिए इस तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत आवश्यक है।
1: भारत और न्यूजीलैंड ने 2030 तक गुड्स एंड सर्विसेज में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके लगभग 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, और दोनों देशों ने एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए थे। आइए पहले सुनते हैं कि आज प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
2: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ये आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
1: अम्बेसडर त्रिकुणायत, जैसे भी हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने एफटीए पर जो बयान दिया, तो ये जो फैसले हुए हैं आज, जो एक ट्रेड को डबल करने का फैसला और जो हमने एक एफटीए साइन किया है, ये जो फैसले हैं दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने में कितनी अहम भूमिका निभाएंगे?
0: अगर आप देखें तो मार्च में 2025 में आई थिंक उनके जो ये प्रधानमंत्री थे भारत आए थे, और जब वो भारत में आए थे उस वक्त ये डिस्कशन हुआ था कि भाई हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं आपके साथ। आप सोचिए कि तब से लेकर के अब तक एक रिकॉर्ड टाइम में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है, रेटिफिकेशन होने वाला है, उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि फ्री ट्रेड में दोनों देश एक दूसरे को एक स्पेशल डिस्पेंसेशन देते हैं, तो ये खाली ट्रेड में नहीं है, ये सर्विसेज सेक्टर में, क्योंकि भारत की जो सर्विसेज हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो, चाहे वो टेलीकॉम सर्विसेज हो या टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, उस सब में भारत का एक काफी नाम है दुनिया के अंदर। हमारे लोग जो है जगह जगह जाते हैं, इसी तरह मोबिलिटी एक एग्रीमेंट होता है उसका पार्ट, कि किस तरह से हमारे प्रोफेशनल्स ट्रेवल कर सकते हैं, और इसी तरह से उनका भी है कुछ हिस्सा भारत के अंदर, किन चीजों में उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो इसीलिए जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है दोनों देशों के बीच में, इससे आपको एक आशा बंधी है कि आपका जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड, एटलीस्ट गुड्स एंड सर्विसेज,

0: लेवल डबल हो जाएगा।
1: जी
0: तो ये मैं समझता हूँ कि इस सिचुएशन में इससे कई तरह का डाइवर्सिफिकेशन भी होगा, और जो डिपेंडेंसीज ऐसी जगह हैं जहाँ पे बड़ी फ्रजाइल सप्लाई चेन्स हैं, उनको भी एड्रेस करने में मदद मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री के इस दौरे का एक और महत्वपूर्ण जो नतीजा है वो रक्षा और समुद्री सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है, और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: त्रिकुणायन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो मैरिटाइम और डिफेंस में जो हमारा कोऑपरेशन कोलैबोरेशन बढ़ाने की बात हो रही है, ये जो सहयोग है इसके लिए क्या नए मैकेनिज्म्स बनाए गए हैं, और ये जो बदलती इंडो पैसिफिक सुरक्षा स्थितियां हैं उसके बीच में इस सहयोग का क्या महत्व है?
0: आपको पता ही है कि दोनों ही मैरिटाइम पावर्स हैं, मैरिटाइम नेशंस हैं, और दोनों के सामने बड़े चैलेंज है। और चैलेंज आजकल दो तीन तरह का है। एक तो ये कि किस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ देश फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को नहीं मानते हैं और उस बात को पूरी तरह नकारा करते हैं, लेकिन भारत इस बात को मानता है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सिक्योर इंडो पैसिफिक जो है वो ट्रेड हो या इन्वेस्टमेंट्स हो या आपका मैरिटाइम कनेक्टिविटी हो, उन सबके लिए बहुत आवश्यक है। और जिन देशों ने ये अंक्लॉज जो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉ ऑफ द सीज को साइन किया हुआ है उनको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि भारत मानता है कि ये ग्लोबल कॉमन्स और ग्लोबल गुड्स के रूप में है। तो इसलिए यही न्यूजीलैंड का भी मानना है इस बारे में। एंड देयरफॉर हम लोगों का जो भी कई सारे एमओयू जो हमने साइन किए हैं इसके बीच में, डिफेंस के अंदर में हो, चाहे मैरिटाइम सिक्योरिटी में हो, हाइड्रोग्राफी होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट में है, मैरिटाइम हेरिटेज के बारे में है, तो ये सारे एमओयू जो है यही बताते हैं कि हमारा जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी में कोऑपरेशन है या इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। और इसी तरह से ओशन जो है उनका पॉल्यूशन कैसे कम किया जा सकता है, किस तरह से जो ब्लू इकोनॉमी है उसको हार्नेस कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो है मैं समझता हूँ इसके अंदर में आती हैं, और उससे काफी बड़ा फायदा होता है दोनों देशों को।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज घोषणा की कि भारत और न्यूजीलैंड भारत के यूपीआई और न्यूजीलैंड के पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और हमने देखा कि सप्ताह की शुरुआत में प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया की यात्रा के दौरान भी एक ऐसा ही समझौता किया गया था। तो फिनटेक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नई दिल्ली और अन्य देशों के बीच ये इस तरह का जो सहयोग बढ़ रहा है इसे आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, दुनिया में हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जो युद्ध हुए हैं इतने सारे, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, इसके समय पे हमने ये देखा है कि ज्यादा से ज्यादा जो देशों को एक ऐसा आपस में ट्रेड करने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए कोई थर्ड कंट्री की करेंसी की आवश्यकता ना हो। और इसी तरह आजकल कोऑपरेशन फिनटेक एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ मीडियम बन गया है और टेक्नोलॉजीज है जिसके जरिए दो देश काफी कुछ कर सकते हैं आपस में। और भारत ने जो अपना यूपीआई डेवलप किया है, यूनाइटेड पब्लिक इंटरफेस, उसको आप सोचिए कि कम से कम 25 देशों के साथ में हमने एग्रीमेंट साइन किया है। इसका मतलब है कि हम उस देश की करेंसी के साथ डायरेक्टली बिना किसी थर्ड कंट्री की करेंसी के जाए बिना व्यापार कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, टूरिज्म में लोगों को बड़ा फायदा होता है, बड़ा आसानी होती है आने जाने में, ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर रिमिट करने में एक क्लिक के ऊपर आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें दुनिया ने देखा है, और आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने भी भारत के यूपीआई को बहुत सराहा है। आपने देखा पीछे जब के राष्ट्रपति यहाँ आए थे तो जब उन्होंने चाय पी और क्यूआर कोड के जरिए वो दिया, तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि किस तरह भारत का यूपीआई ज्यादा से ज्यादा देशों में एक्सेप्ट हो रहा है, और ये दोनों के ही भले की बात है।
1: आज न्यूजीलैंड में जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात की कि कैसे न्यूजीलैंड और भारत दोनों महिलाओं के लिए अवसर पैदा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
1: अम्बेसडर त्रिकुणायत, बात चाहे महिलाओं के योगदान की हो या जिस देश का भी दौरा प्रधानमंत्री करते हैं वहाँ भारतीय मूल के जो लोग रह रहे हैं उनके योगदान की बात करते हैं वो हमेशा, तो जब प्रधानमंत्री इस तरह की बात करते हैं अपने दौरों के दौरान भारतीय मूल के लोगों की उस देश के विकास में, तो ये कितना बड़ा एक मोरल बूस्टर होता है और दो देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करने में कितना महत्व महत्वपूर्ण है।
0: यहाँ तक हमारा इंडियन डायस्पोरा है वो 10,000 करीब लोग वहाँ पर थे जिन्होंने उनको सुना, और आपने देखा कि वहाँ के प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ में गए, और यही दर्शाता है। और ऐसे ही हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, इंडोनेशिया में आपने देखा कि वहाँ पे तो उन्होंने कहा कि डीएनए है हमारे अंदर उनके राष्ट्रपति। तो जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं भारतीय मूल के लोग जो वहाँ पर हैं या एनआरआईज हैं, वो किस तरह वहाँ के लोगों के साथ मिलजुल करके उनके देश के डेवलपमेंट के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो उसको वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। भारत ये अप्रिशिएट करता है कि हमारे भारतीय लोग या भारत मूल के लोग जो है वो एक लिविंग ब्रिज की तरह है दोनों देशों के बीच में। और रही बात जहां तक वुमेन लेड डेवलपमेंट की, तो आपको याद होगा जब हमने G20 समिट की थी तो उस वक्त प्रधानमंत्री ये नहीं कहे वुमेन एम्पावरमेंट को छोड़ के उसकी जगह एक नया एक मंत्र दिया था जिसको कहते हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट, मींस हर हर क्षेत्र में स्त्रियों को और से और ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले और उनको उस तरह का। तो ये जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती है दोनों देशों के बीच में उनको हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक दूसरे को बढ़िया बना सकते हैं, तो उसका मतलब मैं समझता हूँ इस बारे में था। और जहां तक हमारी जो डायस्पोरा है, मैं कहूंगा कि वो तो हर जगह कहीं पर भी जाते हैं तो उनकी एक तारीफ होती है, और उनका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन उस देश की बढ़त के लिए होता है उसको सब लोग अप्रिशिएट करते हैं।
1: कृषि के क्षेत्र में दोनों देश हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी उद्योग में सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए हैं। इन क्षेत्रों में न्यूजीलैंड की जो एक्सपर्टीज है और भारत का एक जो बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार और एग्रीटेक टैलेंट है, वो एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एक दूसरे को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं?
0: देखिए, जैसा हम हमेशा से सुनते आए हैं, भले ही हम टेक्नोलॉजी में, आईटी में और सब चीजों में काफी प्रोग्रेस कर गए हैं, लेकिन आज तक हम यही कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है
1: जी।
0: ये तो बात सब जानते हैं इस बारे में। और भारत में भी बड़े रिवोल्यूशन हुए हैं, चाहे वो ग्रीन रिवोल्यूशन हो, चाहे वो येलो रिवोल्यूशन हो या व्हाइट रिवोल्यूशन हो। तो न्यूजीलैंड के बारे में अगर देखें, उनकी इकोनॉमी में भी डेयरी और एग्रीकल्चर का बड़ा योगदान है, लेकिन उन्होंने भी टेक्नोलॉजी को, एग्रीटेक जिसको बोलते हैं, उसमें रिसर्च करी है। तो ये जो हमारा एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन है दोनों देशों के बीच में, ये हमारे बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने में और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस के एक्सचेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी एक्सचेंजेस हैं, उस सब में और भी ज्यादा बढ़ावा देगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट एक मैकेनिज्म बनाई गई है, और इसीलिए ये जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं रोड मैप के अंदर में, उनको मॉनिटर करने के लिए एक फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पे एक बड़ी कमिटी का गठन किया गया है दोनों देशों के, जो उसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे। कभी खाली बोलने के बाद ही नहीं है कि हम चले गए, विजिट खत्म हो गई, लेकिन यह है कि इसके बाद क्या प्रोग्रेस हुई हर चीज के ऊपर में। और मैं समझता हूँ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को बनाना एक अच्छी बात है।
1: लोगों के स्तर पर यानी कि पीपल टू पीपल लेवल पर सहयोग के वो कौन से क्षेत्र हैं जिन पर आज दोनों देशों ने एक सहमति बनाई है और वो कितने महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, जहां तक पीपल टू पीपल है तो टूरिज्म एक बड़ी चीज है, तो उसमें अगर फैसिलिटेशन होता है हमारा वीजा के ऊपर में। दूसरा चीज ये है कि भारतीय लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा सर्विसेज इंडस्ट्री में है, वो वहां पर जाते हैं। कल्चरल कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें, एक दूसरे के जो कल्चर को जाने वहां की माउरी जैसे है ट्रेडिंग, उनको बुलाया जाए, उनको यहाँ पर किया जाए, उस तरह बहुत सारे हर एक देश की अपनी अपनी प्रोजेक्शन होती है। तो भारत के जो है जैसे अब योगा है वो वहां बड़ा पॉपुलर है, तो ये सब चीजें होने से जो है पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस तभी बढ़ेंगे जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे कल्चर को देखते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, और उसमें भी जो हमारा जो डायस्पोरा है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है।
1: अम्बेसडर अनिल त्रिगुणायत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा से प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: सुर्खियों में
5: अभी आप सुन रहे थे सुर्खियों में, हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए शामिल होते हैं दिल्ली की सभा में और सुनते हैं क्रमशः समाचार संध्या, न्यूज एट 9 और उर्दू में समाचार। बस
6: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
7: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
6: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
8: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष किया गया है। 7903084915523

0: 3714 और 8433452 0414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ की इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम हैं। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देशभर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
3: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश

0: का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो तीन दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi departs for home after concluding landmark New Zealand visit. Says bilateral trade agreement between two countries will accelerate India's development. In a boat mishap in Vietnam, President, Vice President and Prime Minister express condolence. West Bengal government forms 9-member committee headed by a retired judge to examine draft bill of uniform civil code. Legendary singer S. Janki, known as Nightingale of South India, passes away. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 to 5 days. In FIFA World Cup, Norway to take on England, while defending champions Argentina to clash with Switzerland in quarterfinals. And Indian women's compound team clinches silver medal at Archery World Cup Stage 4 in Madrid. Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Prime Minister Modi held talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी हैं, वैल्यूज भी हैं और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे.
1: On the occasion, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations. Referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister, he said the next visit would not take so long.
2: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है. ये मेरा सौभाग्य है. मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं. साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था.
1: Defence Minister Rajnath Singh today said that India is building a strong, self-reliant and future-ready defence force by strengthening both conventional defence capabilities and advanced technologies. He said future wars may employ artificial intelligence and other emerging technologies, but they will ultimately be won by national resolve, courageous soldiers and capable military power. Mr. Rajnath Singh was addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the 6th Project 17A Indigenous Stealth Frigate, into the Eastern Fleet at Vishakhapatnam. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous defence capability. 15 Indian tourists were killed after a boat capsized near Vietnam's Phu Quoc Island today. The Embassy of India in Vietnam confirmed that the deceased include 13 men and 2 women. In a post on social media, the embassy shared the list of the victims, stating that the names were provided by the Vietnamese authorities. According to the embassy, 10 of the deceased were from Tamil Nadu, 3 from Andhra Pradesh and 2 from Kerala. The boat was carrying 36 people, including 32 Indian tourists, 3 crew members and 1 attendant. 21 people, including 17 passengers and 4 crew members, were rescued and admitted to hospitals. 2 survivors remain in critical condition and are receiving intensive medical care. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed condolence at the tragic accident, Expressing sadness at the boat accident, the president offered condolences to the grieving families and prayed for the speedy recovery of the injured. The Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises scheme has crossed the milestone of sanctioning loans to more than 2 lakh micro food processing enterprises across the country. The scheme has leveraged project investments of over 20,300 crore rupees and generated nearly 11 lakh direct and indirect employment opportunities. Addressing a special event in New Delhi today, Union Minister for Food Processing Industries, Chirag Paswan, said the achievement is not merely a milestone to celebrate, but a strong foundation for the next phase of India's food processing growth story. Mr. Paswan also underlined that the participation of women entrepreneurs at nearly 44% of all beneficiaries reflects the true spirit of women-led development, a cornerstone of Vikasit Bharat. Union Railway and IT Minister Ashwini Vaishnav today announced plans to develop Hyderabad as a major high-speed rail hub with proposed bullet train corridors linking the city to Pune, Chennai and Bengaluru. Speaking at an industry event in Hyderabad, he said the high-speed rail network will significantly reduce travel time and strengthen connectivity among South India's major economic centres.
3: 3 high-speed bullet train corridors to Hyderabad to Telangana, which will totally change the landscape. If you see, from Pune to Hyderabad, from Hyderabad to Chennai, from Hyderabad to Bengaluru, this will become a major game changer for entire region, and Hyderabad will become the high-speed hub. This will totally change the landscape. It will bring huge amount of development. The economies of this entire region will become fully integrated.
1: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. Here with us on the news at 9. The West Bengal government has formed a 9-member committee to examine the draft bill of a uniform civil code for the state. A notification has already been published in this regard. Justice retired Ranjana Prakash Desai will be the chairperson. Former Meghalaya Governor Tathagata Roy is one of the members of the committee. Legendary playback singer S. Janki, fondly known as the Nightingale of the South, passed away at the age of 88 today in Mysuru, Karnataka, after battling age-related health issues. Spanning over 6 decades, her career saw her singing in nearly 48,000 songs in multiple languages, including Kannada, Tamil, Telugu, Malayalam and Hindi. She was the voice behind generations of film stars. She collaborated with legendary music directors like Ilayaraja, M.S. Vishwanathan, A.R. Rahman, among others. She is conferred with 33 state film awards and recipient of Padma Bhushan. Vice President C.P. Radhakrishnan has said that differences of opinion are natural in a democracy, but commitment to the constitution and public welfare must remain paramount. Addressing the inaugural session of the orientation and training program for members of the Bihar Legislative Assembly in Gayaji, Mr. Radhakrishnan called upon public representatives to accord the highest priority to democratic values, transparency and accountability towards the people. The chairman of the Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election, Member of Parliament P.P. Chaudhary, today said that holding simultaneous elections to the Lok Sabha and state assemblies would strengthen governance, reduce expenditure and benefit the country's economy. Addressing media persons in Goa, Mr. Chaudhary said the 41-member committee representing all major political parties is touring states to gather views from governments, political parties, constitutional experts, civil society and other stakeholders. Goa is the 9th state being visited by the committee. Union Ministry of Health and Family Welfare has launched the monthly webinar series on best practices under the National Health Mission. on the occasion of World Population Day 2026. Envisioned as a year-round knowledge-sharing platform, the initiative will bring together states and union territories to present successful innovations, exchange implementation experiences, and accelerate the adoption of evidence-based practices for strengthening healthcare delivery nationwide. Iran's Supreme Leader Ayatollah Mojtaba Khamenei today vowed to avenge the death of his father Ayatollah Ali Khamenei, who was assassinated

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक, मैं हूं नवोदिता। एक ऋतु नहीं बल्कि नवजीवन का उत्सव है। बादलों का आगमन, धरती की सोंधी गंध, खेतों की हरियाली और लोकगीतों की स्वर लहरियां, ये सब मिलकर हमारे सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा बनते हैं। भारतीय मनीषा ने जल को सदैव जीवन का मूल माना है। ऋग्वेद का ये मंत्र कहता है, आपो हिष्ठा मयो भुवाः, यानी जल ही सुख, समृद्धि और कल्याण का स्रोत है। यही कारण है कि भारत ने जल का केवल उपयोग नहीं किया, उसका सम्मान भी किया। कहीं बावड़ियां बनी, कहीं तालाब, कहीं कुंड को संजोना हमारी जीवन पद्धति का एक हिस्सा ही था। आज परिस्थितियां थोड़ी बदल रही हैं, तो कहना चाहिए बदल चुकी हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप भी बदला, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि और कई क्षेत्रों में लगातार गिरता भूजल स्तर, ये संकेत हमें सचेत करते हैं कि जल संरक्षण अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। इसी सोच को जन भागीदारी का स्वरूप देने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया। इसका संदेश है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी जहां भी वर्षा हो, जब भी वर्षा हो, उसकी प्रत्येक बूंद को सहेजिए। प्रधानमंत्री ने मन की बात जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में तालाबों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और सामुदायिक प्रयासों कहा है कि जल संरक्षण तभी सफल होगा जब ये शासन का नहीं, समाज का संकल्प बने। ये अभियान वस्तुतः आधुनिक भारत को उसकी ही प्राचीन जल संस्कृति से जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास है। बारिश की हर बूंद प्रकृति का उपहार है, उसे सहेजना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि आए भी। श्रद्धा भारतीय संस्कृति देती है, यही सांस्कृतिक चेतना हमारे पर्वों में भी दिखाई देती है, हमारे उत्सवों में भी दिखाई देती है, जहां आस्था और लोक जीवन एकाकार हो जाते हैं।
1: यो यो यो यो यो नथो चोही नोंदी।
0: इसी क्रम में पुरी की विश्व विख्यात श्री जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक समावेशिता, लोक आस्था और शिल्प परंपरा का एक अद्भुत उत्सव है। और इसी पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति नित्य नीलाचल।

0: जैसा सरी वैसा दे, पूजन भी उसी विधि के अनुसार होना चाहिए। इस भावपूर्ण विचारधारा का प्रतीक है उड़ीसा के पुरी में अनुष्ठित हो रही यह नव दिनात्मक यात्रा। भक्त और भगवान के बीच सारे व्यवधान को तो और प्रभु श्री जगन्नाथ रथारूढ़ होकर रत्नवेदी को छोड़कर पूरी बड़दांड में यात्रा करते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रहकर बाहुड़ा यात्रा में भाई बहन श्री मंदिर को वापस आते हैं। यह यात्रा भाव की यात्रा है, आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथमेव तु। रथ यात्रा कहते हैं
1: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को बड़े आकार में अनुष्ठित होती है। प्रत्येक वर्ष सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी से काष्ठ संग्रह का कार्य शुरू होता है। रथ निर्माण कार्य करते हैं।
0: साल में एक बार अनुष्ठित इस रथ यात्रा की प्रस्तुति बहुत पहले से होती है। शैल तृतीया से ही रथ का कार्य आरंभ हो जाता है। इसमें विश्वकर्मा महाराणा, रूपकार, चित्रकार, भोई सेवक, करतिया सेवक, ताम्र विशोई, ओझा महाराणा और अन्य सेवक हिस्सा लेते हैं। रथ निर्माण के परंपरा के ऊपर सेवक विजय कुमार महापात्रा जी का कहना है,
2: मैं नंदीघोष रथ का मुख्य महाराणा सेवक हूँ। 1971 से हम एक कार्य कर रहा हूँ। भगवान जी जो रथ का काम होता है ना, ये हर साल बैसाख महीने अक्षय तृतीया तिथि से शुरू होता है और आषाढ़ श्री गुंडीचा के पहला दिन नेत्र उत्सव के दिन समाप्त हो जाता है। तीनों रथ में सबसे प्रथम का लकड़ी है फांसी। फांसी का लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है। फांसी, इसके बाद ढौरा और एक लकड़ी है, इसका नाम है असन। फांसी, ढोरा, असन की लकड़ी में ये तीनों रथ निर्माण किया जाता है और मही सिमली का लकड़ी में ये निर्माण किया जाता है। हमारा विश्वकर्मा के साथ सहयोग करने के लिए अर्थात लकड़ी को उठाने के लिए भोई सेवक है। इसके बाद लोहे का काम करने के लिए कमार सेवक है और चित्र का काम करने के लिए चित्रकार सेवक है, रूपकार सेवक है, लकड़ी में रूप देता है। महाराणा, भोई, कमार संपन्न होता है। अक्षय तृतीया तिथि से जब भगवान जगत का काम शुरू होता है, इसके बाद ये जो नृसिंह चतुर्दशी तिथि आता है और एक काम दोनों आने से बाद हर कार्य यहाँ पर प्रभु के आज्ञा से होता है। अक्षय तृतीया तिथि से प्रभु आज्ञा देता है, मेरा रथ को शुभारंभ करो। इसके बाद रथ का कार्य शुभ किया जाता है। भौरी तिथि में प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को खड़ा करो।
3: महाराणा, भोई, कमार, रूपकार, चित्रकार सेवक के द्वारा ये रथ का कार्य संपन्न होता है। अक्षय तृतीया तिथि से जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ का कार्य शुभ दिया जाता है, इसके बाद रथ का काम शुरू होता है। इसके बाद ये जो नृसिंह चतुर्दशी तिथि आता है और एक काम जोड़ दिया जाता है, इसका नाम है गुज्जर। जगन्नाथ जी का चंदन यात्रा होता है ना अक्षय तृतीया तिथि से, जो भौर तिथि आएगा चंदन यात्रा के आखिरी दिन, आखिरी दिन में दोनों पहियों में एक अक्ष संयोग किया जाता है प्रभु के आज्ञा में आने से बाद। हर कार्य यहाँ पर प्रभु के आज्ञा से होता है। अक्षय तृतीया तिथि से प्रभु आज्ञा देता है, मेरा रथ को शुभारंभ करो। इसके बाद रथ का कार्य शुभ किया जाता है। भौरी तिथि में प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को खड़ा करो। इसके बाद दोनों पहिया में एक अक्ष संयोग किया जाता है। नेत्रोत्सव तिथि से प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को मेरे दरवाजे पर लाओ। आज्ञा माल आने से बाद खींच के ले जाएंगे प्रभु दरवाजे के पर। जगन्नाथ जी का रथ सबसे बड़ा है और बलभद्र जी का रथ जरा छोटा है, सुभद्रा माई का रथ सबसे छोटा है। जगन्नाथ जी का रथ में 16 पहिया लगता है, बलभद्र जी का रथ में 14 पहिया लगता है और सुभद्रा माई का रथ में 12 पहिया लगता है। इस तीनों रथ ऐसे बना जाता है और कोई जगह में इसी तरह रथ नहीं बना जाता है।
0: श्रीक्षेत्र धाम में भक्त के साथ भगवान के अपूर्व मिलन की 2 मुख्य यात्राएं होती हैं।
4: पहला स्नान यात्रा, दूसरा गुंडीचा यात्रा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मंदिर के स्वर्ण कुएं से 108 घड़े जल से श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा, श्री जगन्नाथ और श्री सुदर्शन को स्नान कराया जाता है। इस दिन प्रभु श्री जगन्नाथ गजानन वेश धारण करते हैं। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा से तीनों ठाकुर अणसर घर में रहते हैं। इस समय अणसर घर की पट्टी में तीनों ठाकुरों की एक चित्रपट की पूजा की जाती है, इसे पट्टदिया कहते हैं। दैतापति सेवक हलधर दास महापात्र के अनुसार,
5: मैं हूँ हलधर दास महापात्र, बलभद्र जी का बाराग्रही दैतापति हूँ। प्रभु स्नान के बाद में अंदर जाते हैं, हमारा सेवा शुरू होता है, श्रृंगार करते हैं, वेश करते हैं, रात को समय भगवान अनसर पिंडी को चल जाते हैं। ये सेवा हमारा अमावस्या तक सेवा होता है, ये सेवा 15 दिन में चलते हैं। यहाँ अनसर का घर में शुक्ल वस्त्र परिधान होगा और शुक्ल फूल लगी होगा। एकादश का दिन महाप्रभु जी की रंगीन परिधान होगा। आयुर्वेदिक तो ये पथी पांचन होता है, आम, केला, पनस, सपुरी, सपटा, ये पांच प्रकार फल भोग होता है, पथी होता है, मुंह और नारियल का पूरा जल, लवंग, जायफल दे के, चंदन दे के इसको पानी खिलाते हैं और पान भी खिलाते हैं। जितना शब्द होता है कीर्तन का, भजन का, जो बाजा सब गाना होता है, मंदिर का अंदर में कुछ चलेगा। सुस्त होने के बाद में रथ यात्रा होगा, द्वितीय तिथि में रथ का ऊपर जाएगा।
4: अनसर खत्म होने के बाद प्रभु आरोग्य लाभ करते हैं। साधारण मनुष्य के जीवन में जो घटित होता है वही श्री मंदिर में भी होता है। अनसर के बाद नेत्रोत्सव, उसके बाद रथ यात्रा। ताल ध्वज, देव दलन और नंदी घोष तीनों रथ सुशोभित होकर सिंह द्वार के सम्मुख प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। धाड़ी पहंडी में कब आएंगी चतुर्धा मूर्ति?
1: रथखला से तीनों ही रथ सज धज करके तैयार करके लाए जाते हैं और श्री मंदिर के महाद्वार के ठीक सामने उत्तर दिशा की तरफ मोड़ करके खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ अपने रत्न वेदी का त्याग करके बाहर निकलते हैं और पहंडी विजय करते निश्वानंद सरस्वती महाराज अपने परिकरों के साथ तीनों ही रथों का वे अवलोकन करते हैं और रथों पर जाकर के अपना आत्मनिवेदन चतुर्धा देव विग्रहों को देते हैं। उनके वापस आने के बाद सीधे श्री नाहर से पुरी के गजपति महाराज भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक तीनों ही रथों पर वे सोने के मुठ वाले झाड़ू से छेरा पोरा करते हैं और इस तरह से भगवान जगन्नाथ जब जाते हैं अपने गुंडीचा घर में जाकर वहां 7 दिन तक विश्राम करते हैं, उसको गुंडीचा महोत्सव कहते हैं।

0: रथ यात्रा की समाप्ति बाहुड़ा यात्रा में होती है। यात्रा तो समाप्त हो जाती है पर प्रभु की अनंत लीला श्री मंदिर के रत्न सिंहासन में चलती रहती है। श्री मंदिर के शिखर पर पतित पावन की ध्वजा लहराती रहती है। उसी ध्वजा में सारे विश्वास का समन्वय होता है। ऐसा लगता है जैसे सबकी सांसें तरंगित हो रही है महोदधि में। और कवि इस दृश्य को शब्दवद करते हुए भाव विभोर होके गाने लगते हैं, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल।
1: ये था लघु रूपक नित्य नीलाचल। मूल उड़िया आलेख तरुण कांति राउत का था, जिसका हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर रश्मि रेखा जिना ने। वाचन और प्रस्तुति थी प्रज्ञा पारमिता साहू की। आकाशवाणी कटक से। भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक सुंदर पक्ष ये भी है कि यहाँ ऋतुएं केवल मौसम नहीं बदलती बल्कि अपने साथ स्वाद, रंग और उत्सव भी लेकर आती हैं। इसी स्वाद और विरासत की एक अनूठी झलक मिलती है दिल्ली में हर साल आयोजित आम महोत्सव में। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से लाई गई सैकड़ों किस्मों के आम न केवल प्रदर्शित किए जाते हैं बल्कि भारतीय बागवानी, कृषि अनुसंधान और फल संस्कृति की समृद्ध परंपरा का भी परिचय कराते हैं। पत्रिका में हमारी अगली प्रस्तुति है इसी आयोजन पर। ये आम कुछ खास है।
2: मैं डॉक्टर ए के सिंह, एक्स प्रिंसिपल साइंटिस्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और मैंगो के विषय में आपको ये बताना चाहूंगा कि आम महोत्सव जो हमारा करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हम पूरे कंट्री से सभी जगहों पे एक दूसरे को एक मिठास के रूप में परिचित करा सके। और चूंकि एक आम ऐसा फसल है जो कि ट्रॉपिकल से लेके सब ट्रॉपिकल रीजन माने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर जगह उगाया जाता है। केवल अंतर ये होता है कि हर जगह की जलवायु में प्रजाति विशेष का विशेष महत्व होता है और उस सूक्ष्म जलवायु में जो क्षेत्र विशेष का होता है उसमें आम का स्वाद अलग ही होता है। तो हमारा उद्देश्य होता है कि हर क्षेत्र के आम यहाँ पे आए और वो अपनी मिठास पूरी जनता के बीच में ले जाए और जनता सभी प्रजातियों के बारे में जान सके कि उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कौन सी प्रजातियां उगाई जाती है। इस बार देखिए वैसे तो आए थे 20 पार्टिसिपेंट्स ऐसे आए थे जो ग्रोवर्स थे और 6 पार्टिसिपेंट्स ऐसे आए थे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे। और वो हमने कवर किया था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तो 5-6 स्टेट ही हमने पूरा कंप्लीट कवर किया।
3: डॉक्टर नितिन विक्रम सिंह प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से। हमारे पास हमारे संस्थान से विगत 15 वर्षों में लगभग 10 संकर किस्में विकसित की गई है आम की। उषा सूर्या है, उषा अरुणिमा, उषा सूर्या एक सिलेक्शन है, बाकी सारी संकर किस्में है। अरुणिमा है, आपका प्रतिभा है, श्रेष्ठ है, पीताम्बर है, लालिमा है, अभी रिसेंटली हमने दीपशिखा भी रिलीज की है। मोस्टली अम्रपाली और संचेशन के संकरण से बना है पर कुछ किस्में उसमें दशहरी और लाल सिंदूरी भी सम्मिलित। जैसा आप सभी देखते हैं ऐसे आम महोत्सव यहाँ चल रहा है और आम के नाम पे देखे दिल्ली की जगह में कितने लोग, कितनी भीड़ यहाँ उमड़ी। आम केवल एक फल नहीं है, आम एक इमोशनल कनेक्शन है लोग। जैसे आप यूपी की बात कर लें तो वहाँ दशहरी है, आप वेस्ट बंगाल की बात कर लें वहाँ मालदा बहुत फेमस है, बिहार में जरदालू है, किशनभोग है, आप साउथ में चले जाए, आंध्रा में चले जाए तो वहाँ बैगना पल्ली है, महाराष्ट्र में चले जाए तो अल्फांसो है, गुजरात में केसर है। तो ऐसे ही विभिन्न किस्में हैं जो मिठास अपने स्वाद से लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है।
4: मेरा नाम भरतराज सिंह यादव है, मैं एमपी कठियाड़ा से आया हूँ। ऊर्जा ये साइज में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा आम है और ये हमारे कठियाड़ा में होता है, हमारे गांव में। और भी बहुत सारी वैरायटीज है लेकिन हमारे सीजन अभी खत्म हो चुका है तो हम लोग इतनी लेके आए।
5: मेरा नाम राम किशोर महोदय है, मैं मलिहाबाद लखनऊ से हूँ। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की प्रजातियों के आम पाए जाते हैं जिनको लोग जानते नहीं, इसलिए दिखाने के लिए कि लोग जाने पहचाने। हम अकेले 250 वैरायटी यहाँ आम की वैरायटी प्रस्तुत किए जिसमें खट्टे मीठे हैं और कुछ चूस कर खाने वाले हैं, कुछ काट के खाने वाले हैं, कुछ अचार की वैरायटियाँ विशेषकर जो कि सभी प्रजातियों का अपना एक अनूठा स्वाद है, ताकि इन लोगों को मार्केट में जहाँ भी दिखे उनका स्वाद ले और खाए, तभी उसके बाद हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी। जो हमारी पुरानी हमारे पैतृक वैरायटियां है वो जीवित रहने अन्यथा विलुप्त हो जाएंगी।
6: मैं कदीम चंदन नर्सरी मलिहाबाद लखनऊ से आया हुआ हूँ। मेरा नाम शेख शादाब अली है। मेरा पुरखों से काम चला आ रहा है नर्सरी का, जो अलग अलग वैरायटी को डेवलपमेंट करते हैं, तैयार करते हैं, पौधे नए नए निकालते हैं। हमारे पास तमाम सी वैरायटी हैं, सुरखा बर्मा है, गुलाब खास है, हुसनारा है, दशहरी है, राम केला है, जन्नत पसंद है, साजिद पसंद है, बनारसी है, रस कपूर है, तमाम सी वैरायटी। इतनी वैरायटी है कि यहाँ पे आपको हम गिनाते हुए थक जाएंगे। अदर की तमाम सी ऐसी वैरायटी है जो आप एक दूसरे को मिलाती है, उसकी मिठास इतनी मिठास होती है जो दिल को खुश कर देती है और दिलों में मोहब्बत पैदा कर देती है। जो भी आम खाते हैं और दिल से हमको दुआएं देके जाती हैं।
1: ये आम कुछ खास हैं। दिल्ली के वार्षिक आम महोत्सव के बहाने भारत की फल समृद्धि, कृषि परंपरा और विविधता की रोचक यात्रा अभी आपने सुनी। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। भारत की सांस्कृतिक धरोहर केवल परंपराओं से नहीं, उन कलाकारों से भी समृद्ध होती है जो अपनी साधना से लोक और शास्त्र के बीच एक सेतु बन जाते हैं और देह के परे जाकर समय पर अपने हस्ताक्षर अंकित कर देते हैं। दुख की बात यह है कि बीते कुछ समय में ऐसी ही दो विशिष्ट विभूतियों ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। सबसे पहले बात लोक गाथा की विश्व यात्री पद्म विभूषण तीजन बाई की। छत्तीसगढ़ की लोक गाथा पंडवानी को गांव की चौपाल से अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने वाली तीजन बाई ने अपने सशक्त गायन, प्रभावशाली अभिनय और अद्भुत कथन शैली से लोक कला को नई पहचान दिलाई। उन्होंने परंपरागत सीमाओं को तोड़ते हुए पंडवानी की कपालिक शैली को अपनाया और अपनी अनूठी प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय लोक नाट्य को विश्वव्यापी सम्मान दिलाया। उनके स्वरों में लोक जीवन की मिट्टी, महाभारत की कथा और भारतीय लोक संस्कृति की आत्मा एक साथ सुनाई देती है। सुनते हैं तीजन बाई से आकाशवाणी रायपुर के लिए रिकॉर्ड किया गया उनका एक पुराना साक्षात्कार।

पाटा नटारी ये थे हमारा ध्रुव वहे के जन्म में मोर कुछ दिन हमन अटारी में रहे फिर हमला छोटपन में पकड़ के गनियारी मिले इस वहाँ हमार लालन पालन हुई हमार माँ के नाम सुखबती और पिताजी के नाम छनुकलाल रही से छह भाई बहनी रहे हैं दो भाई चार बहनी गरीब होने के नाता ऐसे गुजारा बहुत दिन ले चलत रही से अब जब मैं बड़े लड़की हूँ तो संज्ञान हो गए तो लोग लेके आला छोड़ के चल देवे भाई बहनी मन के पूरा देखभाल ला मैं करूँ हमन छह भाई बहनी में कोनो पढ़े लिखे नहीं हैं हमार दाई है बांस गीत गावे और हमार बाबू बांस बजावे माँ के साथ गुनगुनाए के जो आदत पड़ीस तो ऐसे पड़ीस कि वो एकदम लट लगे तो मैं कर्मा ददरिया सुआ पड़की बांस गीत गा लेते रहे हूँ माँ गावे आरू

0: या जनकारे राम राम अहो लाला सोला चेली के झूमी जाए हो।
1: बाटी भौरा भी अब्बड़ खेलत रहे हूँ, कबड्डी खेलत रहे हूँ, सुर खेलत रहे हूँ, खो खो खेलत रहे हूँ। तो रास्ता में मोर नाना के घर पड़त रही से, छोटे नाना के गनियारी गांव में, तो छोटे से नौकर झोपड़ा रही से, तेमे भीतर में बैठ के पंडवानी के गायन गात रही से। बिजलाल पारधी मोर नाना जी के नाम, और वो हम ऐसे टेर लगाई द्रौपदी बन के श्री कृष्ण जिला, तो वो आवाज सुने के बाद तो मोर रोम रोम एकदम खड़ा हो गए। अरे बाप रे, हाथ कतेक सुंदर एक आवाज, और कतेक बढ़िया भगवान ल पुकारा थे। अब ये लोग मन हा बिजलाल नाम रही से, पर भगवान के नाम जपे ना तो जपरी कहा भी। 11-13 के लगभग में रही हूँ मैं, तो ये बच्चा कतेक सुंदर एक दिल में लगाओ है। तो सुने पर आते कि के वो छोटे से चटाई निकाली, सो कथे में बैठ बेटा, इमे बैठ। आ कतका कन सुने ऐसे कि कही, तो एक हफ्ता के जतका कहानी सुनाई रही से नहीं, तेला 5-10 मिनट में खत्म कर दियो। तो नाना के आंखी में आंसू आ गए। उसी समय वो बोली कि बेटा, मोर घर में हीरा है हे प्रभु, और मैं नहीं परखे सकी हूँ इसी की। आज भी गुंजा थे टेर के आधार पे ही मैं टेर लगा था जब पंडवानी गाता हूँ। तो

वो गदगद कर दी थी। ऐसे लग जाते कि हम धरती में नहीं कि स्वर्ग में हनका ऐसे लागते मोर मन लागते भाई। जब अच्छा कथा में हम डूब के उन मन ला सुनाथन और उन मन कोई कोई जगह रोए धोए की बात है उन मन रोना शुरू कर देते। हम उतका सम्मान पाके अपन आप ला हम पूरा उकरे ऊपर अर्पण कर देते ते हमला कई कौन सी मिट्टी में बना के हमला भेजी घर से हमला सब लोग ले सम्मान और प्यार मिला थे। ये में अब बड़ा आनंद आते आज भी वही है अब आगे बार मालिक के हाथ।

0: मैं तो एक तो नारी हूँ है ना, और नारी के पात्र कहे माँ मोला कोई कष्ट नहीं पड़े और आनंद आते ज्यादा, पर जब भीम के रोल करता हूँ तो दो गुना आनंद आते। मैं अपन आप लग, मैं भीम समझे लग जाता हूँ कि मैं ही भीम हूँ, कि वो की जोशीला गदा पकड़ के रिंग था, तेकर कारण वही है कि मैं सचमुच में वो समय मैं भीम की रोल नहीं करके मैं खुद भीम हूँ, ऐसे अनुभव लागते। चाहते हैं तो मैं पंडवानी ला आजकल के आधुनिक युग में आधुनिक रूप से काम कर सकत रहे हूँ, ओला एती तेती बहका सकत रहे हूँ, वो मैं अच्छा अच्छा रोचक डाल सकत रहे हूँ, पर वो रोचक डाले में वो चीज नहीं दिखती, वो तो बर्बाद हो जातीस ना, फिर नाम कहाँ होतीस। तो ये चीज बचाए के खातिर हमला सब जने जुल मिल के अपन संस्कृति ला अच्छा सजा के रखे माँ, हमन ला फायदा है, हमारे आने वाले पीढ़ी मन ला फायदा है, सिखाए में जो आनंद आते मैं अब कुछ मुला अच्छा नहीं लगे। कतको लेकर रोते रोवत रोवत गाते आ तो बोले भूर यारो बोल चुचकारो ये गाडर ही ते गाडर भी बेटा बहुत सुंदर गाले था, बोले बढ़ावा भी दो, तो ये में बड़ा आनंद आते मने गुरु बन के काम करो। तो आपके समय में मुला बहुत अच्छा लागते, लेका मल्ला सिखा के दे दो।
1: तपी करत मैं धुरुला भेटेउ और नरसिंहला भेटेउ खंभा मां, भुईर बिनत सौरीला भेटेउ क्योंटल भेटेउ गंगा मां।
2: और अब स्मरण करते हैं भारतीय रंगमंच की एक महान विभूति विजया मेहता का। विजया मेहता आधुनिक भारतीय रंगमंच की उन अग्रणी निर्देशकों में थी जिन्होंने मराठी रंगभूमि को नई सौंदर्य दृष्टि, प्रयोगशीलता और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने शास्त्रीय और आधुनिक रंग भाषा के बीच एक सशक्त सेतु बनाया। अभिनय, निर्देशन, रंग प्रशिक्षण और नाट्य चिंतन, हर क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उनके व्यक्तित्व और योगदान पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर।
3: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। एक छोटी सी बात मैं कह दूं कि विजया जी के बाद जितनी भी अभिनेत्रियां मराठी स्टेज पे आई और बड़ी अच्छी अभिनेत्री, उन सब पे और जिन्होंने विजया जी के साथ काम किया था उन सब पे विजया जी के अभिनय की छाप इतनी जबरदस्त थी कि ये कौन से स्कूल से आई है ये बताने की जरूरत नहीं रहती थी। मतलब उनके करियर के शुरुआत से आखिर तक उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ दी मराठी रंगमंच पर कि जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया और अलग अलग प्रायोगिक नाटक उन्होंने पेश करना शुरू किया। उन्होंने एक अपना प्रेक्षक वर्ग बनाया जो बढ़ते गया। और विजया जी के बारे में एक बात कहना बहुत जरूरी है और समझना, विजया जी ने उनकी शुरुआत प्रायोगिक रंगमंच से की लेकिन वहां से वो मेन स्ट्रीम रंगमंच पर चली गई और मेन स्ट्रीम रंगमंच पर उन्होंने अभिनय भी किया और निर्देशन बहुत ज्यादा किया। सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
2: भारतीय लोक कला और रंगमंच की ये दोनों विलक्षण साधिकाएं अपने अपने क्षेत्र में सृजन, समर्पण और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता की ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। भारतीय संस्कृति की शक्ति उसकी निरंतरता में है। प्रकृति के संरक्षण से लेकर लोक आस्था तक, कृषि परंपरा से लेकर सृजनशील कलाकारों की विरासत तक, हर धारा एक ही सांस्कृतिक प्रवाह का विस्तार है। इसी विश्वास के साथ आज की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती यहीं संपन्न होती है। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अधिक ब्यौरा हमारी विशेष संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक दो दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक

0: वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री
1: of the prominent composers since Annamacharya. She has performed extensively in respected platforms all over the globe. And felicitations. Her music has been appreciated for expounding the rasa and bhava aspects of melody, manodharma and her command over laya. She also has a number of compositions to her credit.
2: आज के कार्यक्रम में डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडकोंडलु और घट
1: इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी इज अकंपनीड बाय श्री महादासु येडकोंडलु ऑन द मृदंगम एंड श्री मावडूरु सूर्यप्रसाद ऑन द घटम।
2: डॉक्टर आर माधुरी देवी, आज के कार्यक्रम का आरंभ नाटराग में मुत्तैया भागवतार की रचना ताल में निबद्ध है।
1: डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी बिगिन्स हर कॉन्सर्ट विथ शक्ति गणपति, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तैया भागवत।

0: डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है रीति गौड़ राग में संत त्यागराज की रचना नन्नु विड़चि कदलकुरा जो कि त्रिपुट ताल में निबद्ध है.
1: She next presents a composition of Saint Tyagaraja in Rita.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम। कापी राग में वनमालीय जियार स्वामी की रचना जानकी रमणा, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ वीणा रिसाइटल इन कर्नाटक नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। शी इज अकंपनीड बाय श्री महादासु इरुकोंडलु ऑन द मृदंगम एंड श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद ऑन द घटम। कंटिन्यूइंग हर प्रेजेंटेशन, डॉक्टर माधुरी देवी विल नाउ प्रेजेंट जानकी रमणा, a composition of Vanamaliya A.R. Swami in Kapi Ragam Aditalam.

0: यह था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री महादासु येडुकोंडलु ने और घटम पर श्री मावडूरु सूर्यप्रसाद ने। डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी आज के कार्यक्रम का समापन बेहाग राग में डॉक्टर मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्णाकृत तिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Tanyavartanam on the Mridangam by Sri Mahadasu Erukondalu and on the Ghatam by Sri Mavuduru Suryaprasad. Dr. Ramavarapu Madhuri Devi concludes her performance this evening with a Tillana of Dr. Mangalampalli Balamurali Krishna. It is in Behagragam Aditalam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही सम्पन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi. She was accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the mridangam and Sri Mavuduru Surya Prasad on the ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 11:10 पर समय होगा आपकी फरमाइश कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारे विशेष संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फु कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम में से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले जा रहे 5 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 193 रन बना लिए हैं। फीफा के क्वार्टर फाइनल का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic two-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Mr. Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations. Referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister, he said the next visit would not take so long. Defence Minister Rajnath Singh today said that India is building a strong, self-reliant and future-ready defence force by strengthening both conventional defence capabilities and advanced technologies. Mr. Rajnath Singh said this while addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the 6th Project 17A Indigenous Stealth Frigate, into the Eastern Fleet at Visakhapatnam. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous defence capability. 15 Indian tourists were killed after a boat capsized near Vietnam's Phu Quoc Island today. The Embassy of India in Vietnam confirmed that the deceased include 13 men and 2 women. According to the embassy, 10 of the deceased were from Tamil Nadu, 3 from Andhra Pradesh and 2 from Kerala. The boat was carrying 36 people, including 32 Indian tourists, 3 crew members and 1 attendant. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed condolence at the tragic accident. The West Bengal government has formed the 9-member committee to examine the draft bill of Uniform Civil Code for the state. A notification has already been published in this regard. Justice retired Ranjana Prakash Desai will be the chairperson. Former Meghalaya Governor Tathagat Roy is one of the members of the committee. Union Railways and IT Minister Ashwini Vaishnav today announced plans to develop Hyderabad as a major high-speed rail hub, with proposed bullet train corridors linking the city to Pune, Chennai and Bengaluru. Speaking at an industry event in Hyderabad, he said the high-speed rail network will significantly reduce travel time and strengthen connectivity among South India's major economic centres. Legendary playback singer S. Janaki, fondly known as the Nightingale of the South, passed away at the age of 88 today in Mysuru, Karnataka, after battling age-related health issues. Spanning over 6 decades, her career saw her singing in nearly 48,000 songs in multiple languages, including Kannada, Tamil, Telugu, Malayalam and Hindi. She is conferred with 33 state film awards. She was chosen for Padma Bhushan in 2013. Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, has issued 9 notices to Swiggy Instamart following multiple consumer complaints alleging violations under the Food Safety and Standards Act 2006. In a social media post, FSSAI said that the food business operator has been directed to submit a detailed explanation and compliance report, failing which appropriate legal action will be initiated. In the FIFA World Cup, Norway will take on England, while defending champions Argentina will clash with Switzerland in the quarterfinals to determine the remaining semi-finalists. The third quarterfinal match between Norway and England will be played at Miami Stadium, with kickoff scheduled at 2:30 a.m. Indian Standard Time. Later, Argentina will face Switzerland at Kansas City Stadium at 6:30 a.m. Indian Standard Time. The Indian women's compound team of Jyoti Surekha Vennam, Pritika Pradeep and Chikita Taniparthi clinched the silver medal at the Archery World Cup Stage 4 in Madrid, Spain today. Meanwhile, in women individual compound event, teenage archer Pritika Pradeep produced a stunning turnaround to beat world number 11 Hazal Barun of Turkey, clinching her maiden World Cup bronze. And that is the end of this news bulletin.
0: वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:10 हो चुके हैं। संपन्न होती है मीडियम वेव पर हमारी आज की सभा, पर एफएम सभा जारी रहेगी। हम अपने प्रातःकालीन प्रसारण के साथ कल सुबह 5:55 पर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक हम लेते हैं आपसे इजाजत। शुभ रात्रि, जय हिंद।